0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बता

आए हैं, बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल जाते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए।
जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति

जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता।

वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं, अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना, यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है, और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये
आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5-10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि। सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है।
दूसरा समय सारणी में आता है कपाल भाती, यानी कपाल भाती प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में एक बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आइए करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नौसिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपाल भाती प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपाल भाती के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ

नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र। सुबह की पहली किरण के साथ आज हम बात करेंगे उस संगीत की जो शब्द नहीं जहां श्रद्धा बोलती है, जो सुर नहीं जहां समर्पण का भाव रहता है। आज पहली किरण में पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे चीजों पर मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ और जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति कैसे एक ही धड़कन मन के धड़कती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और शो की शुरुआत हो चुकी है पहली किरण के साथ। जी हाँ, शो है आपका पहली किरण और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज इस भक्तिमय कार्यक्रम में बात करेंगे उस भक्ति रस पान की जो हम सभी सुबह सुबह बिल्कुल करते हैं। जी हाँ, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, भाव वही होता है, बस नाम अलग होते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, पचरा ये सिर्फ गीत नहीं, माँ दुर्गा को पुकारने की लोक परंपरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल या फिर अवध क्षेत्र में जब नवरात्रि आती है तो गांव की चौपाल, मंदिर की सीढ़ियाँ ढोलक और मंजीरों के साथ गूंज उठती है। आइए आनंद उठाते हैं इस देवी गीत का, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पचरा कहते हैं। पचरा में माँ को बेटी की तरह बुलाया जाता है, माँ की महिमा भी होती है और संतान का अपनापन। बिल्कुल, आइए इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो पहली किरण में।

दोस्तों, देवी गीत शास्त्रीय और लोक दोनों रूप में मिलते हैं। इनमें शक्ति, करुणा और संरक्षण का भाव होता है। देवी गीत हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, ममता में भी होती है। इसके अलावा भजन, भजन मन की चुप्पी से निकलती हुई प्रार्थना है। तुलसी, मीरा, कबीर से लेकर आज के सरल भजन तक, भजन हमें ईश्वर के करीब नहीं बल्कि अपने भीतर ले जाता है, उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है जो हमारे ही अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इस भजन की ओर। भजन वो दीप है जो बाहर नहीं भीतर की ऊर्जा को ऊर्जावान करता है, उजाला फैलाता है और प्रकाशित करता है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे कीर्तन की। आखिर कीर्तन क्या है? कीर्तन संगीत का ही एक भाव है, एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसके द्वारा हम भक्तिमय होकर अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और कहा भी जाता है, जब पूजा पाठ की बात होती है, जब इबादत की बात होती है, जब प्रभु की बात होती है, तो वहाँ पे भाव ही सबसे ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना, प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और जब वो प्रार्थना, वो शक्ति, वो भाव सुर और ताल से बंध जाए, फिर पूछना ही क्या, फिर कौन नहीं मोहित होगा, कौन नहीं आपसे जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल इस कीर्तन की तरह, कीर्तन सामूहिक भक्ति है। नाम का उच्चारण, ताल में डूबना और डूबा हुआ मन और लय में झूमता हुआ विश्वास, इन सभी का मिश्रण होता है कीर्तन में। जहाँ एक स्वर नहीं, सैकड़ों दिल एक साथ हरि नाम लेते हैं, वही कीर्तन है। कीर्तन यानी उसकी रटन। आइए लेते हैं एक बार फिर से उन्हीं का नाम।

अब जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति संगीत का महत्व क्या है। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म में जो भक्ति संगीत होती है उसको हम हम्द या नात कहते हैं। हम्द यानी अल्लाह की प्रशंसा। जिन संगीतों में अल्लाह की प्रशंसा हो रही होती है उन्हें हम हम्द के नाम से जानते हैं। और नात, नात यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गाया जाने वाला संगीत। यहाँ सुर नहीं सजदा होता है, किसके लिए? उस ऊपर वाले के लिए।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म यानी हिम्स। यहाँ पे हम भजन को हिम्स के नाम से जानते हैं। चर्च में गाए जाने वाले गीत ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी प्रार्थना के लिए होते हैं, और इन गीतों के माध्यम से हम प्रभु यानी यीशु से संवाद करते हैं।

अब बात करते हैं सिख धर्म की, जहाँ पे इस कीर्तन, इस भजन को शब्द नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों को रागों में गाया जाता है और इसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द ही गुरु है और संगीत उसकी राह है, ऐसा माना जाता है।

बौद्ध धर्म में इसी को चैंटिंग कहते हैं। किसको? भजन को, कीर्तन को, ईश्वर में जुड़ जाने को, भक्ति में धुन पिरोने को चैंटिंग के नाम से जानते हैं हम बौद्ध धर्म में। मंत्रों का सामूहिक जाप मन को शांत करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में चैंटिंग कहते हैं और इसीलिए इसका नाम चैंटिंग पड़ा।

आइए अब बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में मंदिर, मस्जिद और चर्च पास पास थे। एक दिन बिजली चली गई, अंधेरा घिर आया। तभी मंदिर से भजन, मस्जिद से नात और चर्च से प्रार्थना की आवाज आई। अंधेरा वही था, वही अंधेरा, पर डर चला गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर का नाम अलग हो सकता है, पर आवाज एक ही होती है, वो भी श्रद्धा की। आइए चलते हैं हम भी इस श्रद्धा को और रंग देते हैं, और रूप देते हैं, और उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गुरु की इबादत में सजदा करते हैं।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, चैंटिंग जैसे अन्य शब्दों की, जो कि एक संगीत होता है और ये संगीत होता है उस ईश्वर से जुड़ने का माध्यम, यानी भक्तिमय माध्यम, जिसमें हम अपने भावों को शब्दों से जोड़ते हुए सुर लय तान से जोड़ देते हैं। पचरा एक देवी गीत है जो कि भोजपुरी, मैथिली और बंगाल की लोकप्रिय परंपरा में गाया जाने वाला देवी दुर्गा और अन्य देवियों को समर्पित भक्ति गीत है, जिसमें भक्त सीधे माँ से संवाद करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। ये गीत अक्सर नीम के पेड़ के नीचे और ढोल मंजीरे के साथ गाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव दिखाते हैं। पचरा शब्द का अर्थ है देवी के लिए गाए जाने वाले पांच या अधिक पद या छंद। ये देवी दुर्गा, शीतला माता और अन्य देवियों की स्तुति, महिमा, शक्ति का वर्णन करता है, जैसे उन्हें घर पर बुलाना या रोकना। इसमें भक्त और देवी के बीच सीधा संवाद यानी बातचीत होता है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा और इच्छाएं बताते हुए मां को मनाता है। भक्त सीधे मैया भवानी कहकर संबोधित करता है और उनसे बातचीत करता है। ये गीत लोक परंपरा का हिस्सा है, जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य राज्यों का भी हिस्सा माना जाता है। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ऐसे गीतों में, और तालियां भी बजाई जाती हैं, जिनसे इस गीत संगीत में और भाव उत्पन्न होता है और भक्त भाव भजन से भाव विभोर होकर इस संगीत में रम जाया करते हैं।

श्रोताओं, अब मैं पचरा गीत से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करती हूँ। पचरा गीत मुख्य रूप से नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी दुर्गा की स्तुति और वंदना के लिए गाए जाते हैं, जिनमें भक्त देवी को घर बुलाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये गीत अक्सर विवाह समारोहों और लोक अनुष्ठानों में भी गाए जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां इन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गायन की विशेषताएं होती हैं, ये गीत देवी और भक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जहां भक्त देवी को घर आने का निमंत्रण देते हैं और उन्हें रोकने की मिन्नतें करते हैं। महिलाएं अक्सर मिलकर इन गीतों को गाती हैं, जिससे एक सामूहिक भक्ति और आनंद का वातावरण बनता है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है और प्रचलित भी है, जो स्थानीय संस्कृति और आस्था को दर्शाती है। तो आइए हम भी चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

तो दोस्तों, पचरा हो या कीर्तन, भजन हो या नाट, अगर मन सच्चा है तो हर सुर हर शब्द ईश्वर तक पहुंचता है। इसी विश्वास के साथ मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह भक्ति से शुरू होती है। और जब घर में गूंजते हैं भक्ति के स्वर, कभी ध्यान दीजिए, जिस घर में सुबह सुबह कोई भक्ति गीत बज रहा हो, वहाँ दीवारें भी शांत लगती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। भक्ति संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे घर के माहौल में उतरता है।

ऐसे संगीत जो कि भक्ति से जुड़ाव रखते हैं, घर में सहनशीलता बढ़ाते हैं, आपसी बातचीत में मिठास लाते हैं, गुस्सा अपने आप ही आपको धीमा होता महसूस होगा। भजन सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति इंसानियत से शुरू होती है। बौद्ध धर्म में जिसे चैंटिंग कहते हैं, उसका मतलब है उच्चारण करते रहना। कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, अगर हम उसका लगातार उच्चारण करते हैं या वो हमारे कान में गूंजता है, जिससे हमारे जहन पे एक अलग सा ही प्रभाव होता हमें महसूस होता है। उसके बाद मानसिक तनाव कम हो जाता है, घर का वातावरण स्थिर और शांत हो जाता है, नींद और एकाग्रता बेहतर होती है। जब शिव का नाम चलता है तो घर की हवा में भी ठहराव आ जाता है। कोई भी मंत्र हो, अगर उसका उच्चारण निरंतर होगा तो पॉजिटिविटी तो आनी बनती है।

0: अब आप नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलती हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जहां रोज सुबह टीवी की आवाज तेज होती थी, बहस, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन। एक दिन किसी ने टीवी की जगह हल्का सा भजन चला दिया। कुछ नहीं बदला सिवाय माहौल के, और जब माहौल बदला तो लोग खुद ही बदल गए। चलिए हम भी बदलते हैं अपने स्वभाव को, मन को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत करते हैं।

शांति ही साधन है एक सुखी जीवन की, और इसीलिए हम ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी मंत्र को सामूहिक तौर पर चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। दोस्तों, भक्ति संगीत घर की दीवारों को नहीं, दिलों को सजाता है। अगर घर में रोज कुछ मिनट भी ईश्वर का नाम गूंजे तो समझिए घर खुद एक दुआ बन जाता है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर स्वर सुकून बनकर उतरता है। अब मुझे इजाजत दें और अपने दिन को बेहतर बनाएं, एक ऊर्जावान विचार को जन्म दें और पूरे दिन सकारात्मक रहने का प्रयास करें। राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

क्या बात है भाई, सॉन्ग माय गॉड वाइब, ओ माय गॉड, एंड मंडे। सो मंडे का शो है और मंडे वाली बातें होने वाली है। इस पूरे वीक की शुरुआत हो जाएगी और आज देखते ही देखते पता भी नहीं चला कि जून कब बीत गया और जुलाई की आज 6 तारीख आ गई, यानी 6th डे ऑफ जुलाई स्टार्ट हो गया है। सो काफ़ी कुछ तो अभी तक आपने हासिल कर लिया होगा, जो कुछ भी सोचा होगा कि भाई अब ये सब करना है आपको और ऐसे चीज़ों को मिल जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो आपने सोचा होगा उसकी आपने कोशिश एटलीस्ट की होगी और वो कोशिश ज़रूर मिल जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा जहां जानता है इस बात को। यस, सो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। एंड इसी के साथ में, चूँकि अब वक्त है सुबह की बेहतरीन शुरुआत का, और आपको पता है कि सुबह की बेहतरीन शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है भाई? सुबह उठ कर के होती है, और जिस तरह की शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, बहुत हद तक डिपेंड करता है कि बाकी का जो जर्नी है, बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का जो टाइम है, वो कैसे जाएगा, है ना? सो यस, ऑफ कोर्स ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का मॉर्निंग थॉट आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले इस सॉन्ग को मुकम्मल तौर पर सुन लेते हैं।

0: क्या बात है। और इस तरह से इस लाइन को गुनगुनाना बहुत अपना शानदार लगता है, स्पेशली जब हवाएं थोड़ा सा तेज है और आप कहीं निकल कर जा रहे हो। नहीं किया, ओ माय गॉड क्या मिस कर दिया आपने, करके देखिएगा बहुत मजा आएगा। चलिए फिलहाल वक्त हो गया ये बताने का कि आज का मॉर्निंग मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपके डे को और भी ज़्यादा अलग और भी ज़्यादा खास बनाने वाला है। सो आपको भी इंतज़ार होगा और इवन मुझे भी इंतज़ार है कि आप तक ये जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए। सो बिना किसी ज़्यादा इंतज़ार के चलिए हम पहुंचा देते हैं ये थॉट आप तक।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

क्या बात है, आज का थॉट बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आज का थॉट कहता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि हम हार जाते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये नहीं कि हम हार जाते हैं, बल्कि ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हासिल करना चाहते थे। यह है आज का थॉट ऑफ द डे। थॉट कह रहा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको लगता है ना कि हम हार जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, अगर इरादा भी बनाया और उसको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो जो हार है उसको लेकर के हर कोई कहता है, बड़े से बड़े स्पीकर से लेके और कोई भी ऐसा होता आम शख्स यही एड्रेस करता है कि यार हारना नहीं, हारना नहीं। बट एक्चुअल में ये आज का थॉट उस कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा चेंज करता है। आज का थॉट कहता है कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मुश्किल ये नहीं कि हम हार जाते हैं, बल्कि ये कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हासिल करना चाहते थे। सच देखिए तो हम बस बोल देते हैं कि हमको ये चाहिए, एंड उसके आसपास की खुद भी चीज़ें हमको नहीं पता होती है। और कैसे बोलते हैं, क्योंकि शायद कई सारे लोगों ने बोला, अब कई सारे लोगों ने बोला तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ऑथेंटिक है, सही है, इसीलिए कई सारे लोगों ने बोला। अरे कोई ये दुकान कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि कोई उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बोला हाँ ये बढ़िया है। लाइफ तो सबकी अपनी है। प्रोडक्ट्स और कंपनी के मामले में तो आप ट्रस्ट कर लो, जहाँ पे ज़्यादा लोग ले रहे हैं उनको सही लग रहा है, लेकिन आप लाइफ के बारे में तो पूरी तरह श्योर ऐसे नहीं हो सकते हो ना। लाइफ में तो सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग महत्वाकांक्षाएँ हैं और न जाने कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी अपनी। सो फिर ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम हासिल क्या करना चाहते थे, क्योंकि हम भाग तो रहे हैं, हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन क्या? ये आज भी एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ऐसी गुत्थी है जो सुलझी नहीं रही है कि एक्चुअल में हम हासिल क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब लाइफ में काफ़ी आगे वक्त निकल जाता है, उसके बाद था हो जाता है कि हम क्या हासिल करना चाहते थे। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि हम हार जाते हैं, प्रॉब्लम ये कि हम जान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। तो शायद अगर इस थॉट को देखें और पूरी मुकम्मल बात समझे तो हमको जानना हमारा पहली प्रायोरिटी है। एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं ये जाननी हमको पहली हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हासिल करना है जब उसको ही नहीं पता कि क्या है इसमें और क्यों आखिर हम हासिल करना चाहते हैं, तब तक उसको हासिल करने का जुनून वो भी नहीं उस तरह हो पाएगा। और अगर जुनून होगा भी तो मिल जाने के बाद कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसका कुछ अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए आज का थॉट बहुत अहम है कि हम हार जाने से ना घबराएं, बल्कि हम चाहते क्यों हैं इस बात की हमको समझ आ जाए। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को समझ पाएंगे अपनी लाइफ की कि हम आखिर ये क्यों चाह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, और जब क्लियर होंगी तो फिर डेफिनेटली अपने आप चीज़ें बेहतर होंगी ही होंगी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और इसीलिए इस थॉट ने बहुत ही महीन सी चीज़ को पकड़ करके हमारे सामने खोल करके रख दिया कि बात ये नहीं कि हम हार जाते हैं, बात ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमको चाहिए क्या था और क्यों था। ये कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बेहतरीन बात कि हमको यही नहीं पता होता कि हम चाहते क्या है। तो भाई आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लग रहा है, और क्या आप अभी भी इसी डायलेमा में हैं कि आपको क्या चाहिए, आप भी नहीं समझ पाए? तो शायद अब वक्त है थोड़ा सा समझने का, क्योंकि आज मंडे है और मंडे से बेहतर ये दिन थोड़ी ना हो सकता है कि आज समझ लिया जाए और कोशिश शुरू की जाए। तो आगे के दिनों को उसी समझ के साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगर आप इसको करने वाले हैं। वैसे सॉन्ग्स आपको क्लासी मिलने वाले हैं आपके मॉर्निंग शो पर, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम का मॉर्निंग लाइव शो गुड मॉर्निंग गुंडा अपने आरजू अदनान के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, क्या बात है भाई, गाने में तो वाइब है। फिलहाल आ गए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। क्या कुछ लिखा है आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आपका जी हैं श्रावस्ती से। गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू। और यस मुकेश, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। प्रीति जी बहराइच से, थैंक यू सो मच, लिखा है आपने सत्य वचन, ऑसम थॉट, बहुत शुक्रिया कि आपको ये आज का थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत बढ़िया थॉट, सच में लाजवाब थॉट ने इतनी महीन इतनी प्यारी बात को ऐसे ओपन करके रखा कि भाई जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई ये नहीं है कि हम हार जाते हैं, बल्कि ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम हासिल क्या करना चाहते थे। सो हासिल क्या करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए इसी बात पे गीता श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं चैट बॉक्स पर, और आपने भी लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। ऑफ कोर्स इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है अपनी फ्रिक्वेंसी से, ड्राइव करते हुए, खेतों में काम करते हुए, कहीं जाते हुए, बैठे हुए, या फिर नाश्ते को बनाते हुए, आप सबका स्वागत करते हैं। इसके अलावा आप जुड़े हुए हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से रेडियो गार्डन के ज़रिए, आपका भी वेलकम करते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भाई सीधे लाइव शोज़ में आ जाते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं और अनइंटरप्टेडली कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर लेते हैं, वो हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के एप्लीकेशन पर आने वाले हमारे श्रोता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आई होप कि भाई आपको आज के मॉर्निंग शो में काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि आज हम पूरे इंतज़ाम से आए हैं, गठरी भरी हुई है, मंडे का दिन था ना, इसलिए मुझे पता था कि भाई काफ़ी कुछ है और पूरे हफ्ते का इंतज़ाम होना ही चाहिए। सो क्या है हफ्ते के इंतज़ाम में, ये तो वन बाय वन करके आप जानते रहेंगे। बस आपको बने रहना है और अपना जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए, प्रॉमिस हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हाँ आपके दिन को अच्छा ज़रूर बना देंगे।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सो आपको पता है या नहीं है क्या हम भी कटहल की कॉफी पीते हैं? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि भाई हम कटहल की कॉफी पीने लग जाएंगे? चलिए अगर आपको नहीं पता क्या तो हम बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सवाल बहुत ही सिंपल सा, कभी कटहल की कॉफ़ी पी है क्या आपने? बाप सोचेंगे अजीब वाहियात बात है, अब कटहल की कॉफ़ी कौन पीता है यार? यही सवाल आ रहा ना। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं, कटहल के बीजों को फेंक देते हैं लोग। भाई कटहल बनता है तो उसके जो बड़े बड़े बीज निकलते हैं उसको तो फेंक देते हैं ना। बट एक क्या हुआ, महिला ने उन बीजों से, जो कटहल के फेंके गए बीज थे, उससे कैफीन फ्री कॉफ़ी तैयार कर दी। कैन यू इमेजिन कि जिस कैफीन से बचने की हम बात करते हैं कॉफ़ी में, वो उन्होंने कटहल के बीज से बना करके उसको कैफीन फ्री कर दिया। और ये किया है केरल की जैमी साजी ने। जी हाँ, जैमी साजी एक महिला हैं और उन्होंने कटहल के बीजों से जो कॉफ़ी तैयार की है वो है कैफीन फ्री। सो कटहल के इन बीजों की अगर हम बात करें तो इनमें कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसमें कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले, राइट? और ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके अलावा आपको बता दें, जैमी जो हैं, चूँकि हमने बताया कि वो एक महिला हैं और उन्होंने इन्हीं से सुखाया हुआ जो बीज थे वो कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट से कहीं ना कहीं ये काम करने वाले बने। और इनको रोस्ट किया, फिर इसको, यानी कटहल के जो बीज थे उसको रोस्ट किया, फिर उसकी पिसाई की, फिर बन गई उससे कॉफ़ी। यस, कटहल के बीजों से। सो इस आइडिया ने जो किसान हैं हमारे, उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प की है, उनकी ज़िंदगी बदल दी है। और स्पेशली वो जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो इस तरह से इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैमी साजी की ये जो कहीं ना कहीं एक पहल है, वो इस बात की खुशी है उनको कि इस काम से जो उन्होंने किया है वो 20 महिलाओं को रोज़गार भी इससे दे रही हैं। यानी उनके पास 20 ऐसी महिलाएं हैं जो रोज़गार से जुड़ गई हैं। सो क्या आप ये कॉफ़ी ट्राई करना चाहेंगे? ज़रा सोचिए और बताइए। जैसा कि हमने बता दिया कि घर में जब कटहल कटता है तो चूंकि उसका गूदा हम सब खाते हैं, लेकिन बीज अक्सर क्या होता है ना कि कूड़े दान में चले जाते हैं। बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि बीज जो है वो किसी किसान की एक्स्ट्रा कमाई का ज़रिया भी बन सकते हैं। सो केरल के वायनाड ज़िले की रहने वाली जैमी साजी ने ये कर दिखाया है और उन्होंने कटहल के बीजों से ऐसी कॉफ़ी तैयार की है जिसका स्वाद तो कॉफ़ी जैसा है लेकिन उसमें कैफीन नहीं होती और इवन कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तभी मैंने आपसे पूछा ना कि क्या आपने कटहल की कॉफ़ी पी है। सो अब आपको समझ में आ गया है कि आखिर ये कटहल की कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए होता है ना, शुरुआत में हुआ कॉफ़ी और कॉफ़ी धीरे धीरे करते एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश में करते करते दुनिया के लगभग सभी देशों तक पहुंच गई कॉफ़ी। आज कॉफ़ी के बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं बड़ी बड़ी मार्केट्स में, जहां पे बैठ करके लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन उसी के साथ में एक ऐसा, अभी जो ये हमने आपको स्टोरी बताई, और ये स्टोरी जैमी साजी जी की है जो कि वायनाड केरल की रहने वाली हैं, एक महिला हैं और उन्होंने कद्दू के, तो हटाओ, ऐसे कई सारे बीज होते हैं जिसके हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कटहल के बीज इस तरह से काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। सो कटहल के बीज से उन्होंने क्या कर दिखाया कि कॉफ़ी बना डाला, वो भी कैफीन फ्री। अब ज़रा सोचिए कितना बड़ा इन्वेंशन है, छोटी सी अगर चीज़ किया जाए तो कितना बड़ा इसका असर हो सकता है। सो भाई हमारी जो जैमी साजी जी हैं वो किसी एंटरप्रेन्योर से तो कम है नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर उसे बोलते हैं जब कोई चीज़ नई की जाए, मार्केट में नई आए, नई तरीके से आए और उससे लोगों को फ़ायदा मिले, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। और फिलहाल जैमी साजी जी एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने उन लोगों के लिए आसान कर दिया कॉफ़ी जो कैफीन से बचना चाहते थे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कैफीन ही जो है वही नुकसान पहुँचाता है भारी कॉफ़ी में। सो फिलहाल इस बात को जानने के बाद अब आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या मानना है, ये आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो आप तक पहुंचा दी कटहल की कॉफ़ी।
अब उसका क्या करने वाले हैं आप, ये देख लिए। फिलहाल इस बार बीज निकलेगा तो क्या करने वाले हैं, जरा इस बात का, सवाल का जवाब तो दीजिए।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो यस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आज का दिन याद है कि भूल गए आप? वैसे कई बार मेरे तरह आप भी कई चीज़ों को भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, भूलना इतना बुरा भी नहीं होता, बस बशर्ते भूलना क्या है अगर ये पता हो तो भूलना थोड़ा सा ज़्यादा और भी आसान हो जाता है। फिलहाल हम आपको कुछ बताने वाले हैं जिसको जाने के बाद आप कहने वाले आओ ऐसा भी होता है। सो ऑफ कोर्स ऐसा वैसा हर जैसा होता ही रहता है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

अच्छा, हम कई चीजों को लेकर के कितना डिफाइन कर देते हैं कि ये वर्क है किसका। कोई कहता है मेल का है वर्क, कुछ और बताओ तो कोई कहता है ये फीमेल का है, यानी कोई कहता है महिला का है तो कोई कहता है पुरुषों का है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये अखबार बांटना किसका है, डेफिनेटली आपको ख्याल आएगा कि भाई ये तो आदमियों का है और क्या। और फिर आप सोचेंगे अच्छा लगता है कि इस बार किसी फीमेल ने किया है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। जी हाँ, इस बार फीमेल ने ही किया है अखबार बांटने का काम। कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये एक बात है। बात तो असल में ये है कि जब ऐसा कुछ देखते हैं जो आज तक नहीं देखा था, तो कहीं ना कहीं भले ही कई लोग कैसी भी बात करें, लेकिन एक बात तो है, ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक स्टेप तोड़ करके और आगे बढ़ गए हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है ये तो आप बताइए। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आकर के बता रहे हैं कि आखिर कौन बांट रहे हैं अखबार और वो क्यों ऐसा कर रही हैं, और अखबार बांटने से जो लोग देख रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है।

0: क्या बात है। सो भाई, जिस वादे के साथ गए थे आखिर उस वादे के साथ वापस से आ गए हैं, और आने के बाद अब बताने वाले हैं कि आखिर कौन बांट रहा है अखबार। जो पुरुष तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा करने की नौबत क्यों आई, चलिए आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Aajya Khan.

सुबह 60 घरों में अखबार बांटकर पढ़ाई कर रही हैं ये बेटी। जी हाँ, पिछले 4 साल से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 साल से हर सुबह ये लड़की सिर्फ अखबार नहीं बांटती है बल्कि अपने सपनों के लिए रोज़ एक लड़ाई लड़ती है। कैसे सपने? जब ज़्यादातर लोग नींद में होते हैं उसी वक्त 20 साल की अस्वथी एम, जो कि अल्पुझा केरल की रहने वाली हैं, ये निकल चलती हैं अखबार बांटने। जी हाँ, और ये अखबार एक नहीं, दो नहीं, 60 घरों पे जाता है, चाहे बारिश हो या सड़क पर पानी भरा हो या रास्ते में भौंकते कुत्ते हो, इनके लिए रुकना कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये काम सिर्फ कुछ रुपए कमाने की बात नहीं है कि इससे कुछ रुपए कमा लेती हैं, बल्कि ये काम इनकी पढ़ाई का सहारा है। और सबसे ज़्यादा बढ़कर बताएं तो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए उम्मीद भी है। और अस्वथी के पिता चूँकि एक दिहाड़ी मज़दूर हैं, मजदूरी करते हैं, और घर की आर्थिक स्थिति इतनी मज़बूत नहीं थी कि इस तरह से हर ज़रूरत आसानी से पूरी हो सके, ऐसे में अस्वथी ने इंतज़ार नहीं करना समझा सही। जी हाँ, सो ऐसे में कोई इंतज़ार नहीं किया कि कोई उनकी मदद करे, इन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी उठाई। और अब पढ़ाई के साथ कोई और रास्ता जब नहीं दिखा तब इनको लगा कि इन्होंने सुबह अखबार बांटने का फ़ैसला करना होगा, और ये फैसला किया भी। सो इनके फादर को चूँकि फिक्र थी, जैसा कि होता है कि भाई सुबह अंधेरे में एक लड़की ये काम कैसे करेगी, इतनी सुबह सुबह जाना है, लेकिन माँ ने अपनी बेटी पर चूँकि भरोसा जताया, और वही भरोसा अस्वथी की हिम्मत को जो है वो बन गया। आज ये हर रोज़ अखबार बांटने के बाद में घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती हैं, और फिर कॉलेज पहुँच जाती हैं अस्वथी। आज अपनी किताबों और पढ़ाई का जो खर्च है वो इसी काम से उठा रही हैं, और थोड़ा बहुत माँ की दवाइयों पर भी अस्वथी का खर्च हो जाता है। सो कमी, अगर हम कमाई की बात करें तो भले ही ये काफ़ी कम होगी, लेकिन इनकी मेहनत पर इनके पेरेंट्स जो हैं उन दोनों को गर्व है। अस्वथी जैसे मेहनत कश जो बेटियां हैं वो पूरे परिवार का हौसला होती हैं, और कभी कभी एक साधारण सी साइकिल पर हिम्मत की मिसाल भी बन जाती हैं। सो ये सिर्फ अस्वथी की कहानी नहीं है बल्कि इनके सपनों को पूरा करने की एक ललक, एक जो सपना है वो दिखता है, एक साइकिल पर चलती हुई उम्मीद दिखती है, और कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप टूटता है कि ये काम तो सिर्फ पुरुषों का है। एक तरफ और अगर देखें तो इस बात का सेंस निकालना, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर के, किसी को ब्लेम ना करते हुए खुद की चीज़ों का आपको जिम्मेदारी उठाना अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, खुद से जुड़े हुए अपने परिवार या अपनों के लिए करने के लिए आप शुरुआत कर दें, और शुरुआत जब आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको रास्ते मिलते ही जाते हैं। सो फिलहाल अस्वथी की ये कहानी आपको कैसी लगी, जो कि इस वक्त हमारे भारत के ही केरल राज्य में ये चल रही है, और शायद आपको भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखी होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जब सच में इंसान करने पे आता है तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं। फिलहाल अस्वथी की ये कहानी सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुश्किल होता है ऐसे डिसीजंस ले पाना, लेकिन इस बीच में भी अस्वथी ने जिस तरह का कर दिखाया है ये सच में एक मिसाल ही है। और अस्वथी को रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की तरफ से उनके भविष्य को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे हर वो शख्स जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज, प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 9840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
5: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखो आए हाय चोर कैसे। अरे भाई वैकेंसी को बताने आए हैं। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। सो चलिए अब आपको ले चलते हैं बिहार की तरफ। अब आप सोचेंगे बिहार की तरफ, जी हाँ बिहार की तरफ, सरकारी कॉलेजेस में जहाँ निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, और किसी ने ये बताया है कि भैया नियुक्ति जो हो रही है वो जल्दी हो रही है। सो क्या है पूरी अपडेट, आइए आप तक पहुँचाए देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बता दें कि बिहार के कुछ कॉलेजेस में निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। है क्या, सरकारी कॉलेज में फैकल्टी के लिए एक वैकेंसी आई है। सो बिहार के विश्वविद्यालयों और राजकीय डिग्री कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 3,687 वैकेंसीज़ है। सो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना यानी BSUSC की तरफ से इस फैकल्टी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए शुरू भी हो चुके हैं। सो इसकी नियुक्ति भी फौरन की जाएगी, इसलिए अगस्त तक का वक्त जो है इसमें रखा गया है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसीज़ हैं ये संविदात्मक बेस्ड पर फिल की जाएंगी, जिसमें हिंदी, इतिहास, इंग्लिश समेत कुल 6 विषयों के लिए भर्ती आई है। इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो कॉलेज फैकल्टी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो वो लास्ट डेट या उससे पहले समर्थ पोर्टल पर ऑफ कोर्स जा सकते हैं और यहीं पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई है। और इससे पहले आपको समर्थ पोर्टल पर किस तरह से जाना है, जी हाँ, HEDBIHARREC यानी कहीं ना कहीं HEDBIHARREC.samarth.edu.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉलेज फैकल्टी की इस भर्ती में सबसे ज़्यादा पद जो है वो इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आए हैं। इसके बाद हिस्ट्री और हिंदी विषय में वैकेंसीज़ है। सबकी डिटेल्स जो हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता क्या चाहिए। सो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% नंबर्स के साथ में मास्टर की डिग्री पूरी की हो। नंबर्स जो हैं उसमें प्रतिशत में SC ST BC नॉन यानी क्रीमी लेयर, EBC नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी। यानी अगर इन उम्मीदवारों ने 50% मार्क्स हासिल किया है मास्टर की डिग्रीज तो ये भी आवेदन के योग्य होंगे। UGC CSIR नेट अभ्यर्थी ने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी आयोजित UGC या CSIR के ज़रिए आयोजित UGC नेट की क्वालिफाई किया हो यानी नेट क्वालिफाइड हो। नेट से छूट में जिन कैंडिडेट्स ने UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत PhD हासिल की है उन्हें नेट सेट इन सबसे छुट्टी मिलेगी। 2009 से पहले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD के 2 बाहर के परीक्षकों ने जांचा हो और ओपन वाइवा या 2 रिसर्च उनके पेपर पब्लिश हुए हों उन्हें भी छूट मिलेगी। वहीं जिन कैंडिडेट्स ने दुनिया के टॉप 100 QS रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय से PhD पूरी की हो उन्हें भी इससे छूट मिलेगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2026 के बेस पर देखी जाएगी। वहीं जिन एप्लीकेंट्स को यानी जिनकी रिजर्व कैटेगरी से होंगे उन्हें उनकी ऊपरी सीमा में नियम के हिसाब से छूट भी दी जाएगी। सो जैसा कि हमने आपको डिटेल्स बता दिया है, अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती के सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। सिलेक्शन के लिए आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है और आपके इंटरव्यू को प्रमुखता दी जाएगी, दोनों को मिला करके 100 नंबर तय किए गए हैं। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो 88 में, रिसर्च PhD JRF नेट पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स, ग्रेजुएशन में मार्क्स 12th 10th के नंबर्स पर स्कोर दिया जाएगा। वहीं इंटरव्यू में 6 मार्क्स टीचिंग स्किल्स और 6 इंटरव्यू के होंगे। इन्हीं दोनों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसका कोई आवेदन शुल्क नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं है। सभी वर्ग के उम्मीदवार बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का जो लिंक है वो तय तारीख पर खुलेगा, तब तक के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म पर जा करके इसको ऑफ कोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक करें, देखें, इसके बारे में पता करें। अगर आप भी एलिजिबल हैं या आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा है जो इन मापदंडों को, इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, तो उनको भी ये बता सकते हैं और उन तक भी ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकें। सो चलिए, फ़िलहाल वक्त है आपको जीनियस से मिलाने का।
अब जीनियस कौन है यहाँ पे? जीनियस दरअसल इस मूवी का नाम है जिसका आप सॉन्ग सुनने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई सेड जीनियस.

0: ओ यार एक गल दस।
1: हाँ पूछो पाजी।
0: ये लोगा साड़ी पत्नी नू धर्म पत्नी कहंदे सी, तो साड़े साले नू धर्म साला क्यों नहीं कहंदे? पूछता है भारत।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: चढ़ गए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: कैन यू इमेजिन कि 6 महीने की जिंदगी और 257 देशों का टूर, यकीन करेंगे आप? नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा यकीन कर पाना, लेकिन कोई बात नहीं, यकीन आप तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ये हकीकत है और ये हकीकत बना कैसे है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Aajya Khan.

डॉक्टर्स ने कहा था तुम सिर्फ 6 महीने और जी पाओगे, लेकिन 16 पासपोर्ट के साथ 257 कंट्रीज घूम करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो चलिए आपको मिलाते हैं गिटारिस्ट बेनी प्रसाद से। अब ये बेनी प्रसाद हैं कौन, आपको बता दें कि जिनको 2 साल की उम्र में बहुत गंभीर अस्थमा हो गया था और सालों तक इनकी हाई डोजेस चलती रही। ऑफ कोर्स आपको पता है कि भाई हाई डोज चलना कितना ज़्यादा रिस्की होता है, 60% फेफड़ों को ख़राब कर दिया, साथ ही रिमेटाइड ऑर्थराइटिस भी इनको दे दिया। असर पढ़ाई में पिछड़ने लगे और हुआ ये कि भाई स्कूल से फाइनली इनको निकाल दिया गया। लोगों ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, इन्हें लगा कि वो अपने पिता की हर उम्मीद को तोड़ चुके हैं। फिर 16 साल की उम्र में टूट करके आत्महत्या की कोशिश की। बस इस अंधेर जिंदगी में इनका जो साथी बना वो था गिटार, जो इनकी जिंदगी की नई धुन बना। दौर आया 1998 का, जब श्रीलंका में परफॉर्म करने का मौका मिला और यहीं से जन्मा एक सपना दुनिया के हर देश तक अपने संगीत को पहुंचाने, और कभी वीज़ा कभी फ्लाइट्स रद्द हो जाती, इन सारी चीज़ों को कई बार लेकर के रास्ता बदलना पड़ता, लेकिन जो नहीं बदला था वो था इनका सपना। नॉर्थ कोरिया, अंटार्कटिका और दूर बसे पिक्टेरियन आइसलैंड तक इन्होंने दुनिया के हर कोने में गिटार की धुन अपनी कहानी से लोगों को उम्मीद दी। साल 2010 में इन्होंने दुनिया के सभी सॉवरेन कंट्रीज और डिपेंडेंट टेरिटरीज तक पहुंच गए। जी हाँ, सबसे तेज पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन अपने देश से प्रेम इन्हें वापस ले आया, क्योंकि उनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं एक पूरी दुनिया है। जिस लड़के ने कभी जीने की उम्मीद तक खो दी थी वो आज अपने संगीत से दुनिया भर में उम्मीद बांट रहा है, और शायद इसलिए अपनी किताब का इन्होंने नाम भी रखा है अनथिंकेबल। सपने नामुमकिन नहीं होते हैं, उन्हें बस सच करने का हौसला चाहिए। सो ये रही स्टोरी, और इस स्टोरी को आपने सुना और कहीं ना कहीं शायद ख्याल आया होगा कि भाई ऐसा भी कोई शख्स होता है क्या जो 257 कंट्रीज घूम सके इतने कम वक्त में, जब डॉक्टर्स कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास अब वक्त नहीं बचा है, ऐसे वक्त में इस तरह का डिसीजन ले पा रहा, इस तरह से बढ़ पाना कितना आसान होता है और कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़रा सोचिए और बताइए। क्योंकि देखिए, जो नामुमकिन से लगते हैं कई काम वो भी हो जाते हैं। सो फिलहाल ये कारनामा हमारे इन रियल सुपर हीरो ने कर दिखाया, जिनका नाम है बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद की इस स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि भाई लाइफ सच में क्या है, जिस लाइफ को लेकर के हम बहुत अलग अलग तरह की डेफिनेशंस बनाते रहते हैं, आपको क्या लगता है ये लाइफ एक्चुअल में है क्या?

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हौले हौले, इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम निकलते हैं, हम कुछ भी ऐसा करते हैं, सो हमको हमारी जर्नल चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए ताकि हम उसको बेहतर कर पाए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो करना क्या है, करना ये है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे ख़रीदारी से पहले की तैयारी क्या होती है। सो ख़रीदारी से पहले की तैयारी होती है कि भाई हम लिस्टिंग कर लें कि घर में क्या क्या है, ये चेक कर लें। देखिए, कुछ ऐसी बातें हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी टेंशन, आपकी समय की बचत और इवन कई जगह तो आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी और आपका मूड भी अच्छा अच्छा रहेगा। सो घर में क्या क्या चीज़ें हैं चेक कर लें, ये हम सब बातें बता रहे हैं ख़रीदारी से पहले की। इसके अलावा लिस्ट बनाएं और उसी पर टिक करें। और ये एक काम जो अक्सर हम नहीं करते हैं वो ये है कि खर्च की सीमा तय करें कि आखिर कितना आपको खर्च करना है जो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। और कभी भी भूखे पेट शॉपिंग ना करें। ये बहुत छोटा सा लग सकता है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने भूखे जाते हैं तो इतना हचक के खा लेते हैं और न जाने क्या कुछ खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए। उनसे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि भाई हम अपने आप कुछ खा के ही पहले से आराम से दिन जाएं। इसके अलावा ज़रूरत की चीज़ें सोच समझ कर ही ख़रीदें, मनमानी की नहीं। अक्सर होता है कि अच्छा लाओ ये दिख रहा है बढ़िया, लाओ ये भी ले ले, अरे ये तो बड़ा सुंदर सा है, अरे ये तो बड़ा काम का भैया। इस तरह से जो काम फ़िलहाल नहीं होता उसको भी हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ले लेते हैं और जो हमारा प्रायोरिटी में होता है वो चला जाता है। तो इसका ख्याल होना चाहिए कि हमको क्या लेना है और कौन सी चीज़ें मनमानी हैं जिसको फ़िलहाल छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा क्या होता है कि सामान चीज़ों के साथ में मील प्लान भी आपको बनाना होता है। जी हाँ, आप मील प्लान जब बनाते हैं तो आपको पता होता है कि कितना क्या बचा है, कैसे क्या है, कितना ख़त्म हो रहा है खाने की चीज़ें, ये सब कुछ आपको पता चलता रहता है। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएं उससे पहले आप मील प्लान ज़रूर बना लें। ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी आसान बनाती हैं उसमें क्या है, जैसे चावल, दालें, अंडे, पास्ता, सब्जियां, आसान तैयार खाना, ब्रेड है, प्रोटीन पाउडर है अगर ज़रूरत है जितनी उसके हिसाब से, ओट्स, दही, टमाटर सॉस, पनीर, बेसिक मसाले, ये आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। ये इजी टू फिट होते हैं, इजी टू मेक होते हैं, यानी कुछ भी बनाने में इनका जो है सहयोग लिया जाता है। इसलिए अगर ऐसी चीज़ें आपके किचन में, आपके घर में हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ईजी करने वाला है। स्टोर से जो है वो समझदारी से ही ख़रीदारी करना होता है। जी हाँ, सो हमेशा बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करना होता है। वज़न या पैकिंग के हिसाब से दाम का आप कंपैरिजन जो है वो करें। इसके अलावा स्नैक्स वाले जो है वो स्नैक्स पर तभी जाए जब आपको ज़रूरत हो, यानी वो रेक जहाँ पर स्नैक्स के सामान लगे हैं आप तभी जाइए जब आपको सच में लेना हो, अदरवाइज़ आप वैसे ही जा करके आप बिला वजह स्नैक्स ले लेंगे। सिर्फ सेल वाली चीज़ों के चक्कर में कुछ बिला वजह की चीज़ें ना खरीदें। कई बार ऐसा होता है कि भाई सेल है, सेल बताते हैं इतने परसेंट, और इंसान अक्सर वही ले लेता है जिसकी कोई भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। सो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना होता है। सस्ती और पौष्टिक चीज़ें चुनना होता है, जैसे दाल, चावल और मौसमी सब्जियां। इसके अलावा जो बहुत सारे इस्तेमालों का सामान होता है जो कई चीज़ों में काम आ जाता है उनको चुनना होता है। इस तरह से आप जो है वो मार्केटिंग जब कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं जो अननेसेसरी फ़िलहाल के लिए होता है। सो भाई चलिए, मुझे लगता है कि इन बातों का आप ख्याल ज़रूर रखने वाले हैं और रखना भी चाहिए। फ़िलहाल हम आपको ले चलते हैं कहाँ, आज के कंटेंट की तरफ, क्योंकि आज का कंटेंट आ चुका है और साथ ही साथ कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं। सो चलिए आपका वेलकम कर लेते हैं, मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो गीता जी का मैसेज था, उसके बाद मुकेश ने पूछा कुछ खाने पीने का भी है आज के झूलों में। आज जी बिल्कुल, क्या खाएंगे आप, हम तो शॉपिंग मार्ट ही सीधे ले आए। और धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं, अदनान सर मंडे की मॉर्निंग, मंडे की गुड मॉर्निंग आपको भी। प्रीति जी ने लिखा है वाओ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कटहल के बीज वाली कॉफ़ी ज़रूर पीने की कोशिश करूँगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंश जी हैं भट्टा परेड सरकार से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू अंश, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी ने बोला सर जी कम करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा दिखो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार जी हैं, शैलेंद्र जी हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से, हेलो सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, और सभी को आपने सुप्रभात बोला है।
रेखा कुशवाहा जी हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू कायनात, गुड मॉर्निंग। उदालक शर्मा जी हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। इरफान शाह भी मौजूद हैं एंड साथ ही साथ इम्तियाज़ अहमद मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, वंडरफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। कमल नयन जी भी आ गए हैं आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग सर, कल सोया हुआ आज उठे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे लगा कि आज भी आप छुट्टी मार देने वाले, खैर आपको मौका तो मिल ही गया था, है ना। ऑल राइट, सुप्रीति जी ने बहराइच से क्या लिख करके भेजा है बताते हैं। अब खुद की ओर जाना है, न झूठे रिश्तों की कतार चाहिए, न दिखावे वाला प्यार चाहिए, मन में जो अहंकार बढ़ा दे, न दौलत ऐसी बेशुमार चाहिए, मुझको तो अब हर इच्छा से मुक्त होने का सार चाहिए, जो खुद को खुद से मिला दे, ऐसा सब सुखों का आधार चाहिए, बाहरी जगत से ध्यान हटाकर अब खुद की ओर जाना है, जीते जी मरने के बजाय संसार से उस परमानंद को पाना है। क्या बात है, बहुत ही गहराई से सोची गई बात है, लिखी गई बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हम लोगों से साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यूं ही लिखती रहिए और ऑफकोर्स हेल्दी रहिए। और साथ ही साथ हमारी आशु जी का भी लखनऊ से मैसेज है और उन्होंने भी लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, जो रेडियो गार्डन से जुड़े हैं, जो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से जुड़े हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए अपने बैक टू बैक शोज़ गोंडा एफएम पर और फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, गुड मॉर्निंग गोंडा से, स्टे ट्यून्ड।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद में हम सभी मिलकर एक फिर से नया एपिसोड ला रहे हैं, जिसके अंदर मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की आवाज में, और उनका साथ देने आ रही हैं श्वेता जी, जिमी जी। और आज की हमारी नए एपिसोड की जो थीम है वो है श्रावस्ती। तो आइए हम सभी मिलकर के एक नए एपिसोड की ओर चलते हैं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकला है, सब हमें लेने आ गए हैं, और देखो कितने खुश हैं सब।
6: हाँ समता मैम, हम सब श्रावस्ती घूमने चल रहे हैं।
7: मौसम कितना प्यारा है और बदली छाई हुई है, हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है।
8: हाँ, पिकनिक के लिए बिल्कुल मस्त मौसम है। लो, हम दाल भरे पराठे लाए हैं तुम सब के लिए।
2: मम्मी ने कॉफी भेजी है गर्मा गर्म, भैया बैंगलोर गए थे तो वहाँ से फिल्टर कॉफी लाए हैं।
6: काले बादल हम लोगों के साथ चल रहे हैं। अरे लगता है आज तो पानी जोर से बरसेगा।
7: अरे नहीं श्वेता मैम, दादी ने बचपन में बताया था, काला बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे।
8: ड्राइवर भैया AC धीरे रखिएगा, श्वेता अभी भी खांस रही है। श्वेता शाल ओढ़ लो।
2: आप बरसात पर गाना सुना दीजिए, श्वेता ठीक हो जाएगी।

0: हम लोग रज्जो बुआ से भी मिलेंगे। अरे किरण दीदी, उनकी दोस्त कहाँ है?
1: रज्जो बुआ कौन है और उनकी कौन दोस्त?
2: रज्जो बुआ, कम्मो बुआ, मुन्नी बुआ और कुक्कू बुआ, ये चार बहुत अच्छी दोस्त हैं।
3: राधा कुंड में जो सफेद घर है ना, उससे थोड़ा आगे इन चारों का घर है।
0: अरे किस्मत तो देखो, चारों की शादी कटरा श्रावस्ती में ही हुई है।
2: जब इनकी शादी तय हुई तो सब लोग गुइयां गाना गाकर खूब चिढ़ाते थे।
1: कौन सा गाना, हमें भी सुनाइए ना।

0: इटिया थोक आ रहा है, कौन कौन शुक्ला के दही बड़े खाएगा?
1: हम भी खाएंगे।
2: बुआ लोगों के लिए भी ले चले क्या? अरे ये तो बहुत टेस्टी है,
3: लौटते समय हम भी पैक करवा लेंगे, बहुत ही यमी है ये।
4: केवल रज्जो बुआ मिलेंगी तुम सबको, कम्मो बुआ बेटे के पास रहती हैं और मुन्नी बुआ फैजाबाद में रहती हैं और कुक्कू बुआ टीचर हैं, तो उनकी पोस्टिंग बहराइच में है।
0: जल्दी गाड़ी में बैठो, बहुत तेज पानी बरसने वाला है।
2: अरे बच गए सब, नहीं तो बहुत ज्यादा भीग जाते सभी लोग। हाँ हाँ भैया सुनो, धीरे धीरे गाड़ी चलाना,
4: बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है।
3: किरण दीदी और बातें बताइए ना रज्जू बुआ की।
4: कुक्कू बुआ जब शादी हुई तब जॉब कर रही थी, अरे स्कूल टीचर थी तो बहुत बिजी थी।
0: हम भी उनको जानते हैं, सबको डांट लगाती थी, ये करो ये मत करो।
2: फिर तो उनके पति देव को भी डांट पड़ती होगी।

0: उनकी शादी में कितना मजा आया होगा। मम्मी बताती है कि पहले जब किसी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला तैयारी करवाता था।
1: सही कह रही हो जिम्मी, मुन्नी बुआ के हस्बैंड थोड़े डार्क थे।
2: अरे DTH, टॉल डार्क एंड हैंडसम, सच में बहुत हैंडसम।
3: तो क्या वह कहती थी कि

0: बिल्कुल सही कहा श्वेता मैम, रज्जो बुआ के बारे में और भी बताइए ना।
1: रज्जो बुआ बिल्कुल टॉम बॉय है। मम्मी दादी चाची सब नाच रहे थे उनकी शादी की तैयारी में।
2: उन्होंने कभी भारी साड़ी गहने कुछ पहने ही नहीं थे, तो कुछ भी पहना दो सब में नखरे करती थी।
3: सब कैसे पहन लेते हैं, अरे आजकल की दुल्हन के लहंगे ही देखो कितने भारी होते हैं।

0: जिम्मी को कितना मजा आ रहा है। उन चारों की शादी में हमको बहुत मजा आया था।
1: हमें थोड़ा थोड़ा याद है, एक महीने के अंदर सबकी शादी हुई थी।
0: एक गाना और था जिसे हम लोग खूब गाते थे।

0: हे भगवान, कितनी तेज पानी बरस रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरा श्रावस्ती घूम पाएंगे।
1: कोई बात नहीं, एक दिन फिर आएंगे श्रावस्ती घूमने हम लोग। आज तो चारू बुआ की कहानी सुनकर लग रहा था कि कोई पिक्चर देख रहे हैं।
2: नदिया के पार जैसी ना जिमी। लो, हम लोग पहुंच गए।
3: ये है रज्जो बुआ, फूफा जी, आजी और बाबा। ये बुआ की बेटी है डिम्पी।
2: अरे डिम्पी, तुम श्रावस्ती में रहती हो? हम लोग योगा कैंप में मिले थे।
0: समता मैम, आपने बताया था कि ये लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं।
1: बाबा बता रहे हैं कि भारी बारिश के कारण अंगुलीमार की गुफा, सहेट महेट, थाई टेंपल, ये सब बंद है। तो कम्मो बुआ के बारे में बताइए ना।
3: कम्मो बुआ के ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जो लाल घर देख रही हो ना, वो उन्हीं का है।
2: पहले खाना खा लेते हैं, फिर बताइएगा। बहुत भूख लग रही है।
0: चलो चलो, पहले कम्मो से गाना सुनते हैं।

0: आज तो गाना गाइए, बरसते पानी में मैं तो ना जाऊंगी।
1: वाह भाई वाह।
2: आजकल के बच्चे ना बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। अरे कम्मो बुआ की शादी में सबने गाना गाया, सैया बड़े कठोर हैं।

0: याद आया, उनकी बुआ सास बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने बोला था बारात वापस लेकर चलो।
1: अरे फिर क्या हुआ? उन लोगों ने तो बुआ को बहुत परेशान किया होगा।
2: कम बुआ भी कम शैतान नहीं है। अभी के बाद जब उससे गाना सुनाने को कहा गया तो उन्होंने गाया, रह ना सकोगे हम बिन सजन पछताओ।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

गुड आफ्टरनून एवरीवन भाई, वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानस्थी लाइव का, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा और एनर्जेटिक सॉन्ग जो है मल्हारी फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी। जी हाँ, ये एक ऐसी मूवी जिसमें हमारे रणवीर सिंह एक अलग ही अवतार में नजर आए और ऐसा सभी को लगा कि जैसे बाजीराव खुद ही आ चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आज आरजे आयुषी आते ही कहाँ रणवीर सिंह की बात करने लग गई, तो कहीं आज कुछ स्पेशल तो नहीं है। जी हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आइए चैट बॉक्स में अपना हाल चाल बताइए, क्योंकि भैया गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है गोंडा में और लोगों की हालत एकदम ख़राब हो रखी है। जी हाँ, इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पानी की कमी आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा सकती है। चलते हैं हमारे शो की तरफ, जो कि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है एक बहुत बड़े एनर्जी बॉम्ब का बर्थडे। जी हाँ, एनर्जी बॉम्ब स्टाइल के बादशाह हमारे प्यारे रणवीर सिंह का बर्थडे। सबसे पहले भाई, उनको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। भाई बंदा असली एनर्जी का किंग है ये। जी हाँ, रणवीर सिंह एकदम एनर्जी के किंग है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन छोटी पड़ने लग जाती है। बैंड बाजा बारात हो या बिट्टू शर्मा, उससे लेकर के पद्मावत, खिलजी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी तक, इनका हर एक एक रोल इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा है, इतना स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहा है कि अभी भी कोई भी उनका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। वो सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही नहीं करते, बल्कि वो जो भी किरदार करते हैं उसे बिल्कुल जीने लगते हैं। अभी हाल ही में इनकी बहुत ही फेमस मूवी रिलीज़ हुई है, जिसके हम सभी फैन है भाई, धुरंधर। धुरंधर आई फिर धुरंधर रिवेंज आई, और उसमें पता चला कि भाई हमारे रणवीर सिंह क्या कर सकते हैं। लोग अक्सर उनके फैशन सेंस और रंगीन कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भाई वही तो उनका कॉन्फिडेंस। हमें सीखना चाहिए कि हम कुछ भी पहने, कितने भी अतरंगी कपड़े पहन ले, पर कॉन्फिडेंस हमारा कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज सिर्फ पार्टी और गाने ही नहीं चलेंगे, बल्कि आज का दिन एक और वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो है वर्ल्ड जूनूज डे। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है भला। भाई मैं बता दूं, ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों में से इंसानों में फैलती है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भाई हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समझदारी ही बचाव है। आज जब पूरी दुनिया में हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे और जानवरों के बीच का जो कनेक्शन है वो कितना गहरा और कभी कभी कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रणवीर सिंह की फिल्म जैसे हीरो हमेशा एक विलेन से लड़कर जीतता था ना, वैसे ही हमें अपनी हेल्थ को हेल्थ का हीरो बनाना होगा, और इन ज़ूनोटिक डिसीज का नाम जो एक बहुत बड़ा विलेन है हमारी लाइफ में, उसको मार भगाना होगा। आज का शो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। एक तरफ भाई एक स्टार का स्वैग, उनकी बातें, दूसरी तरफ सेफ्टी का ज्ञान। तो भाई अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है आपके अपने शो में, जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इस बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दे पर, और इन्जॉय करेंगे आज रणवीर सिंह स्पेशल प्लेलिस्ट, क्योंकि आज है उनका बर्थडे। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बड़े ही अतरंगी चीज़ों की। जी हाँ, जहाँ हमारे एनर्जेटिक डैशिंग किंग रणबीर सिंह का बर्थडे है, वहीं आज जूनोटिक डिजीज़ पे भी हम बात करें। जी हाँ, वही बीमारियाँ जो कि जानवरों से इंसानों में फैल रही हैं। वेलकम बैक मेरे सभी प्यारे लिस्टर भाई। आज हम बात करेंगे अब जो है वो है जूनोसिस की। जी हाँ, देखिए जैसे रणबीर सिंह का हर फिल्म एक नया अवतार लेकर आता है, वैसे ही ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स भी अलग अलग तरीकों से हम तक पहुंचते हैं। जी हाँ, इन्हें हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं और इनके ट्रांसमिशन के कुछ तरीके होते हैं जो कि बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हम इसी में कन्फ्यूज़ होकर रह जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे पहले आता है, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये तब होता है जब आप किसी इन्फेक्टेड जानवर को छूते हैं या उनके फ्लूइड्स जैसे सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, उसके कांटेक्ट में आते हैं। बच के रहना है बाबा इन सभी चीज़ों से। जो भी एनिमल लवर है ना, उनको मैं बता दूं कि भाई जानवर से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अगर कोई दूसरा चीज़ आती है तो वो होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये तब होता है जब आप उन जगहों को छूते हैं जहाँ पे वो जानवर रहते हैं, या उनके उनका कोई रहने की जगह है, उनका पिंजड़ा है, या उनके पानी पीने का बर्तन है, या उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ रखी हो। फिर आता है वेक्टर ब्रोन। जी हाँ, इसमें मच्छर, टिक्स या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमको लगता है कि भाई ये कहाँ इतना नुकसान पहुँचाएगा, पर एक्चुअल में वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। वो पहले जानवरों को काटते हैं, फिर वो इन्फेक्शन लेकर के, यानी जो जानवर होता है वो इन्फेक्शन लेकर के आप तक फैल जाता है। जी हाँ, और लास्ट में आता है फूड एंड वाटर ब्रोन। कुछ भी ऐसा खाना या पानी जो कंटेमिनेटेड हो। अब बात करते हैं रेबीज़ की। अब रेबीज़ के बारे में तो आप सभी जानते हैं भाई, ये डॉग, कैट और मंकी के काटने से फैलता है, यानी कि बंदर, कुत्ता और बिल्लियों के काटने से फैलता है। ये जो रेबीज़ का वायरस है ना, ये इतना ख़तरनाक है कि अगर समय से इसका ट्रीटमेंट ना मिले तो भाई जानलेवा भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो लोग अक्सर देसी इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं भाई, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम चीज़ों को सीरियस लेने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सीरियस चीज़ों को तभी लेते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुँच जाती है, और फिर वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी स्ट्रे डॉग काट ले तो हीरो बनने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी है भाई। सीधा डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ होंगी, कुछ इंजेक्शन होंगे जो आपको लगाए जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये एकलौता तरीका है जो आपको बचा सकता है, आपकी जान बचा सकता है। इसीलिए हीरोगिरी भाई बिल्कुल नहीं। सबसे पहले डॉक्टर। और हाँ, अब बात करते हैं प्लेग की। हाँ, वही जो चूहों यानी कि रैट से फैलता है। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है दोस्तों, लेकिन आज भी हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर के आसपास सफाई रखिए। जैसे रणबीर सिंह अपनी हर फिल्म में परफेक्शन ढूंढता है ना, वैसे ही आपको भी क्लेनलीनेस, परफेक्शन अपने घर में ढूंढनी है, यानी भाई साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी ना तो पेट्स आएंगे और उनके साथ कई सारी बीमारियाँ भी आएंगी। स्वच्छता, वही बिल्कुल भाई, स्वच्छता रखनी है, बीमारी को एकदम कह सकते हैं कि एकदम उसकी छुट्टी कर देनी है। अब भाई, अब हम बात करेंगे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की जो आपने शायद नहीं सुना होगा, पर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक बार हम इसके चपेट में आ चुके हैं। आपको याद होगा कि एक टाइम आया था जब हमारे भारत में बर्ड से यानी कि चिड़ियाओं से बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी। इतनी बीमारी कि जो भी जो है चिकन खाता था उसे बीमारी हो जाती थी। लोगों ने तो महीनों तक चिकन खाना छोड़ दिया था। कौन सी बीमारी थी शायद आप भूल गए होंगे। जी हाँ, मुझे पता है कि भाई हम इंडियंस भूल जाते हैं, एक बार चीज़ें गई और हम भूल गए। जैसे कोविड गया ना तो हमने साफ़ सफाई को बिल्कुल छोड़ दिया कि अरे साफ़ सफाई क्या होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई साफ़ सफाई हमें कोविड के बाद छोड़नी नहीं थी। कोविड हमें सिखाने आया था कि आपको साफ सफाई कैसे

अपनी आदतों में लाना है और उन चीज़ों को छोड़ने से बहुत बेहतर है कि आप उन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की आदतों में शामिल कर लें। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि भाई आपके जो आसपास बीमारियां हैं, वायरस है, इन्फेक्शन है, वो आप पर अटैक नहीं कर पाएगा और आपके अपने दोनों ही सेफ रहेंगे। जी हाँ, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे बर्ड फ्लू और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जिसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। देखिए ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ अपने रेडियो स्टेशन 89.6 FM में और इन्जॉय करना है अपना आज का प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज सुन रहे हैं रणवीर सिंह स्पेशल प्लेलिस्ट। स्टे ट्यून्ड।

0: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

हाँ जी दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम एंजॉय कर रहे हैं आज भाई सुपर डुपर हिट सॉन्ग। जी हाँ, जो कि अभी आप सुन रहे थे ततर ततर दो की एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग है और हर एक एक शादी पार्टी की शान बन चुका है भाई। जैसे ये गाना प्ले होता है ना, हम सभी के पैर ऑटोमेटिकली थिरकने लग जाते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस बहुत ही एनर्जेटिक और प्यारी सी प्लेलिस्ट को। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज हम रणबीर सिंह का बर्थडे के मूड में हैं, तो थोड़ा सा वाइल्ड, थोड़ा सा थ्रिलिंग, थोड़ा सा एनर्जी और थोड़ा सा रोमांटिक गाने भी सुन रहे हैं। जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में सस्पेंस होता है ना, वैसे ही कई सारी बीमारियों में भी सस्पेंस होता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और ज़्यादा सीरियस, जिसके बारे में हम शायद इतने ज़्यादा अवेयर ना हो। जी हाँ, अब हम बात करेंगे जूनोसिस की। दुनिया में कुछ ऐसे नाम जो सुनकर डर लगता है, पर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उससे बच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्ड फ्लू की। जी हाँ, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर मुर्गे के जो है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, या मुर्गा होता है, चिकन होता है, उससे आता है। इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे भारत में ये बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था। इसका बेसिक रूल ये है कि अच्छे से पका हुआ ही आपको चिकन खाना है। अगर चिकन ज़रा सा भी कच्चा है तो उससे आपको कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें से बर्ड फ्लू एक है। रॉ मीट हैंडल करने के बाद हाथ धोना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, मतलब आपको धोना है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते। जैसे रणबीर सिंह के लिए उसके फ़ैन के लिए पोज देना मैंडेटरी है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना भी हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। एक अच्छा फ़ैन वही है जो उनकी क्वालिटी अपने अंदर लाए। जी हाँ, आज हम सारी चीज़ों को रणबीर सिंह से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस पर्सन ने ओन किया है इतनी सारी चीज़ें। जी हाँ, अगर आप उनको देखें और गौर से कभी उनके एक्शंस को देखें, तो आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि वो उन्हें अगर कहीं मीडिया कहीं भी घेर लेती है, या जो है उनकी पिक्चर्स के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करती है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड देख के भाई मुँह घुमा के चले गए। वो आते हैं, प्रॉपर पोज देते हैं, जैसे वो उनका कर्तव्य है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई बस हाथ साफ तो है, हाथ में थोड़ी ना चिकन पकड़ के लाएँ, पन्नी में तो था या तो किसी थैले में तो था। लेकिन भाई, जब भी आप कैरी करें चिकन को, अपने आप को ज़रूर से साफ करें, नहीं तो आप भी फ्लू के शिकार हो सकते हैं। हाई हीट पर कुकिंग वायरस को ख़त्म कर देती है, इसीलिए आपको उसको सही से पकाना है और पूरी तरह से पकाना है। तो टेंशन लेने का नहीं है भाई, बस सेफ्टी को फॉलो करते रहना है और अपने आप ये सारी बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। फिर आता है निफा वायरस। अब आपको लग रहा होगा, अरे भाई निफा बोल रही है, एक बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत वाला नाम है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वायरस है। लेकिन बता दूँ, ये कोई सॉफ्ट वायरस नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। ये चमगादड़ से फैलता है। जी हाँ, निफा का केस स्टडी सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ये चमगादड़ों के जूठे फल, जो कि फ्रूट्स होते हैं, उसको खाने के बाद हो जाता है। अगर ऐसा कोई पानी है जिसको कभी चमगादड़ ने पिया है, जैसे आपके छत के जो पानी होता है उसको अगर चमगादड़ ने पिया है और आप भी जाके उसको छू लेते हैं, अपना हाथ वाथ धोना भूल जाते हैं, तो आपको भी ये वायरस हो सकता है। या फिर अगर आपने कुछ फल या कुछ सब्जियाँ, कोई भी चीज़ छत पे बाहर खुले में रख दी और फिर आपने बिना धुले खा ली हो, तो भी आपको ये वायरस हो सकता है, अगर उसे चमगादड़ ने छुआ या फिर खाया हो। अब सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए कच्चे फल खाने से पहले उन्हें अच्छे से धोना ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा कॉमन वायरस और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस के बारे में, वो है एंथ्रैक्स। अब लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ है। हाँ भाई, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हम इससे बच सकते हैं। ये अक्सर गाय और भैंसों से होता है, यानी कि काउज एंड बफेलो से होता है। अगर हम इनके कॉन्टैक्ट में रहने वालों से, ये जो है कुछ ज़्यादा ही फैलता है। ये एक बैक्टीरिया से होता है जो मिलती है या मर चुके हुए जानवर, जो मिट्टी होती है या फिर जो मर चुके जानवर होते हैं, उनके टच में आने से फैलता है। जी हाँ, जो लोग फार्मिंग या लाइव स्टॉक में काम करते हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा कॉशन रखना चाहिए कि अगर आप जानवरों के आसपास हैं या ऐसी मिट्टी में हैं जो मिट्टी आपको छू रही, यानी आपके स्किन पे लग रही है, और आपने अपना हाथ पैर नहीं धोया है साफ तरीके से,
तो फिर आपको ये हो सकता है। प्रोटेक्टिव, आपको प्रोटेक्शन हमेशा अपने लिए ज़रूर रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे, और क्योंकि देखिए हमारे गांव में आज भी जो है ये जो फार्मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हम गाय भैंसों के आसपास रहते हैं, इवन हमारे हर घर में एक ना एक एक दो गाय भैंस तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का ये चलन हो चुका है गाय भैंसों को रखने का। इसीलिए अगर आपके भी गाँव में होता है तो अपने दादा दादी नाना नानी मामा मामी सबको ये बता दें कि भाई अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो एंथ्रेक्स जैसा वायरस भी आपको फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये सारी बीमारियां मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है। साइलेंट का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको चुप कर देती है, ये बहुत चुपचाप आती है और आपको अंदर तक खोखला करके चली जाती है। जी हाँ, पर अवेयर रहने से आपकी अपनी लाइफ बच सकती है और लाइफ के आप हीरो भी बन सकते हो, क्योंकि भाई देखिए टेंशन तो आती रहती है, ऐसे हमारी मूवी भी तो भाई बिल्कुल फिल्मों की तरह है, बहुत सारे विलन्स आते रहते हैं, पर हमें हीरो बनके उन सारे विलन्स को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाना है। इसी तरीके से इन बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, बस हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपनों की सेहत का खासकर ध्यान रखना है जो आप पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि आपके घर के छोटे बच्चे और आपके घर के बड़े बुजुर्ग। हम अक्सर सोचते हैं ना दोस्तों कि हमें तो नहीं होगा, हम तो ठीक है, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, आपको कुछ क्यों नहीं हो सकता, कि आप इंसान नहीं है, आप भी हैं और आपको भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको हो जाता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या उसके लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक पे आपको कहीं नहीं जाना है, आपको भाई बस सचेत होकर बैठना है, तो उसे दिमाग फ्रेश करिए, क्योंकि ये जो जानकारी है ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के।

0: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आपकी आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं रणबीर सिंह पे और साथ ही साथ जूनॉटिक डिजीज पे। अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे पेट से फैलती हैं, कौन कौन से जानवर से कौन कौन सी बीमारी होती है और वो कैसे कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, अब समय हमें इजाज़त दे रहा है, यानी कि भाई जानने का वक्त आ रहा है, तो हमें शो को तो रैप करना ही होगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो भी गया। एक तरफ रणवीर सिंह का बर्थडे और दूसरी तरफ वर्ल्ड जूनोसिस डे। जी हाँ, हमने समझा कि कैसे जो है नेचर, जानवर और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, रणबीर सिंह की फिल्म हमें सिखाती है कि लाइफ को फुल इंटेंसिटी के साथ कैसे जीना है, सपने कैसे देखने हैं और मेहनत करके उसे पूरा कैसे करना है। वहीं जूनोस डे हमें सिखाता है कि जानवरों के साथ सेफ डिस्टेंस, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। हम उन्हें प्यार तो करते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, पर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें हम समझ जाएं कि आखिर में हमें करना क्या है। देखिए, अपने पेट्स को रेगुलर वैक्सीन हमें ज़रूर लगवानी है, वो आपके फैमिली का ही हिस्सा है, इसीलिए उन्हें बस ऐसे मत छोड़ दे, अरे जानवर है, इसे कौन सी बीमारी होगी। क्योंकि भाई अगर जानवर को बीमारी हो गई ना, तो पूरे चांसेस हैं कि वो बीमारी के जो वायरस है वो आप तक भी फैल जाए। इसीलिए उनको भी वैक्सीन की ज़रूरत होती है, उनका भी वैक्सीनेशन कराएं, उन्हें भी हेल्दी रखें और ये भी आपकी एक जिम्मेदारी का हिस्सा होनी चाहिए। उसके बाद वाइल्ड एनिमल से आपको बिल्कुल दूर रहना है। भाई देखिए, अभी फ़िलहाल तो मौसम ऐसा हो रहा है कि लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, स्पेशली जंगल में, पहाड़ों पे, और वहाँ कोई जानवर दिख रहा है तो जाके उनके साथ सेल्फी लेना भाई बिल्कुल भी नहीं भूलते। लेकिन याद रहे भाई, जंगल तो उनका घर है, आप अपने घर में वापस आएंगे तो उनके साथ सेल्फी लेने के चक्कर में इन्फेक्शन घर मत लेकर आइएगा, क्योंकि आपसे कई लोग जुड़े भी हुए हैं, जैसे आपके घर के बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग और आपके पार्टनर। तो भाई थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज़रूर मेंटेन करनी है, साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करना है, जैसे कि हाथ धोना, घर की सफाई का खास ख्याल रखना, कि घर का साफ़ सफाई तो, और घर की साफ़ सफाई क्यों, हमें खाने पीने की चीज़ों को भी सही से वॉश करके रखना चाहिए, खाना चाहिए, और साथ ही साथ जो चीज़ें कच्ची हैं, जैसे अभी हमने चिकन की बात की, मीट की बात की, इनको पूरी तरीके से पका के खाना है। अगर कभी भी स्ट्रे जानवर जो होते हैं वो आपको काट लें तो हीरोबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन लेंगे, डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीट करेंगे और उसी से आपकी जान बच सकती है। अगर आप सोचेंगे अरे जानवर नहीं तो काटा है, जानवर में कहाँ दम है हमें मारने का, लेकिन मैं बता दूँ भाई, जानवर में भले दम ना हो लेकिन जानवर से भी एक बहुत छोटा वायरस है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, रणबीर सिंह के तरह रॉकस्टार तो बनना है, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको स्टंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। ज़िंदगी एक ही है और उसे हमें सेफ रखना ही ज़्यादा स्मार्टनेस है। अगर हमें स्मार्ट बनना है तो अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने बॉलीवुड पे बात की, अवेयरनेस पे बात की, एक बहुत ही यूनिक सा मिक्स रहा। लेकिन भाई आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, स्पेशली गोंडा वासियों को, कि जो जैसे हम लोग ये जानते हैं ना कि भाई हमारे गोंडा में गंदगी कुछ ज़्यादा ही फैली हुई है, अब बारिश भी आने वाली है और गंदगी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो भाई गंदगी से हमें मलेरिया, डेंगू और कई सारी बीमारियाँ जिसमें फाइलेरिया आती है वो तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो आसपास के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो है जो बीमारियाँ होती हैं उससे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमने आज इतनी सारी जूनॉटिक डिजीज़ की बात की, इन सभी से बचने के लिए ना आपको सिर्फ एक काम करना है, साफ़ सफाई रखना है और अपना खास ख्याल रखना है। कहते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमसे ये कहते थे कि बेटा कभी ना कभी आपको सेल्फिश बनना चाहिए। अब सेल्फिश बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि किसी का घाटा करना चाहिए, बल्कि अपने लिए सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप किसी जानवर को प्यार करें, उनकी केयर करें, तो उसके बाद अपने हाथ पैर को अच्छे से धोएं, अगर वो जानवर आपसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। क्योंकि भाई देखिए, जिसके घर में पेट है वो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो वो आपकी गोद में आके बैठ जाएंगे, आपसे डायरेक्ट टच में रहेंगे। इसीलिए अपने कपड़ों को भी चेंज करिए, और अगर आपने पेट अपने घर के अंदर रखा हुआ है तो उसकी जगह को भी टाइमली क्लीन करते रहिए। फिलहाल इन्हीं सब चीज़ों के साथ लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा और आगे इसको फॉलो भी करेंगे एक अच्छे भविष्य के लिए। लेते हैं आपसे विदा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपने इस फेवरेट रेडियो ज्ञानस 89.6 FM को एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 सालों में पड़ती है। इस दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चे का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना है। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टीकन भाभी। भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। भाभी हमको ये बताइए कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में इसका सही तरीका क्या है ये जरा हमको बताइए और हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता रहता है।
0: अच्छा मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है क्या?
2: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना दिया जाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा तो भाभी बच्चे को खाने में वैसे क्या क्या देना चाहिए?
2: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दाल। ये बच्चे को ताकत देंगे और उसका शरीर स्वस्थ बनाएंगे। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा भी मिलता है। या फिर मूंग के दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे के हड्डियों को मजबूत करती है। अब सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी, के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और एनीमिया से भी बचाते हैं और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चों को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहार नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दूध और दूध से बने पदार्थों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस सब को मसल कर बच्चों को दिया जाता है।
0: तो भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या कुछ और खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा इसके बारे में भी बताइए।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त व दुरुस्त होता है।
0: तो भाभी, लोग तो ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितना खिलाएं और कितनी बार खिलाएं। मुझे तो यही लगता है, आपका क्या मानना है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार देना चाहिए और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको जरा विस्तार से समझाइए हमारे श्रोताओं को।
2: देखिए भैया, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन भर में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ ही 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: सीधी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बार बार खिलाने का तरीका भी बढ़ाना चाहिए।
2: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं, तो कुछ उसके खेलते वक्त मुंह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
2: बिल्कुल नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर ही होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिरा सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
0: ये बात तो सही कहा आपने, बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
2: ये भी ठीक नहीं है, बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
0: तो भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट्स, चिप्स या बिस्किट्स दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा, क्या ये तरीका सही है?
2: यही तो सबसे बड़ी गलती है भैया, ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुँचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसी चीजों से भर गई तो असली पोषक खाना वो खा ही नहीं पाएगा, इसलिए बच्चे को इनसे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी, एक बात मुझे और बताइए, क्या 6 से 23 माह के बच्चों के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
2: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का खाना खाने लगता है तो माँ के दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही जरूरी होता है। माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: तो भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का ही काम है?
2: अरे नहीं भैया, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है, खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पलता है।
0: तो यहाँ पर पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
2: देखिए, पिता की पहली जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषक वाला सामान जरूर हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्तों वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा या मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी। और दादी की क्या होती है भूमिका?
2: दादी को चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करें। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर दें तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है, उसे दुलार कर सकती है ताकि माँ थोड़ी सी राहत पा सके।
0: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
2: हाँ बिल्कुल, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वे अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उन्हें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसी बातें बार बार याद दिलाते रहते हैं।
0: तो श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 महीने यानी 180 दिन का हो जाए, अभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताजा आहार देना शुरू कर दें और ये क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताजा बनाकर नरम और अच्छी तरह से मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह से पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल कर दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
2: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चों को खिलाइएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सौंच जाने के बाद, खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें। इसे शेयर ना करें, इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक से बनती है। और सबसे जरूरी बात ये है कि परिवार के हर सदस्य, माँ, पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग करें, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी। तो दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ ले करके जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
3: साफ सफाई और स्वच्छता का
0: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
0: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले

0: अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
1: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर

0: का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? एक लंबी छुट्टी के बाद हम दोनों लोग आ गए हैं। लंबी छुट्टी का कहने का जो तात्पर्य है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। वो मैंने इसलिए बोला लंबी छुट्टी क्योंकि सैटरडे हम आपसे मिलके गए थे और टाटा बाबाई कह के गए थे। तो सैटरडे दोपहर के बाद में शाम आई, रात आई, फिर दूसरे दिन सुबह आई, फिर दोपहर हुई, रात हुई, शाम हुई और रात हुई, फिर आज सुबह हुई और दोपहर में, तो कितने परहान के बाद हम लोग मिले हैं। काफी ना?
4: काफी
3: है ना, दोपहर मतलब 2-3 दोपहर तो बीती गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि लंबे समय के बाद आज फिर से हम एक हुए हैं, यानी कि अंशिका और मैं फिर से आ गए हैं आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली
3: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं क्या बता दूं कि मौसम बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे अब सबकी तबीयत भी अपने स्तर पे आ रही है। मतलब तबीयत सबकी, सबका स्वास्थ्य जो था वो मई जून में सभी का बिगड़ा हुआ था, कभी कुछ था कभी कुछ था, बट अब लग रहा है कि हाँ वो जो पटरी पे जो ट्रेन है वो डायरेक्टली वो धीरे धीरे ठीक हो रही है ना
4: जी मैम।
3: और खान पान की बात करें तो खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि गर्मियाँ अभी हैं और अक्टूबर तक गर्मियाँ रहती हैं, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही बाहर की चीज़ें कुछ खाएं, अदरवाइज हाँ आप अपने घर में ही जो भी बन रहा है उसी से आप अपना काम चलाएं, क्योंकि ये जो गर्मियाँ है ना, ये गर्मियाँ बहुत जल्दी सबका पेट खराब करना, उल्टी आना या फिर पेट में दर्द होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि गर्मी अगर बाहर से हमें लग रही है तो हमारे इंटरनल पार्ट्स को भी तो गर्म कर रही है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो भाई ऐसी हम हरकतें क्यों ही करें, बाहर का बना हुआ क्यों ही खाएं, तला भुना क्यों ही खाएं। ठीक है, खान पान से याद आया कि आज है हमारा और आपका फेवरेट डे, यानी कि आज है खाना खजाना मंडे। तो आइए एक साथ एक ही साथ फ्रेम में विश करते हैं हम दोनों लोग
4: शुभ दोपहरिया।
5: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आगाज है जबरदस्त क्योंकि हम आ गए। भाई जब हम होता है ना, देखिए जब मैं होता है तो अकेले अकेले होता है, बट जब हम होता है तो दो लोग मिलके होते हैं और हम भी, यानी कि आपकी सहेलियां, दोनों लोग आ गए हैं दुगनी पावर के साथ। आज दुगनी पावर का राज है और वो राज ये है कि आज है खाना खजाना।
3: खाना खजाना,
5: और जहाँ खाने की बात आती है वहाँ दुगनी शक्ति आ जाती है।
3: बिल्कुल,
5: मुझे
3: खास करके तो अंशिका तो देखा, हंसी देखो, मतलब खाने की बात पे अंशिका अगर ना वो मौजूद वहाँ पर अंशिका मुझे लग रहा है अब मैं भी वैसी होती जा रही हूँ। मुझे भी लगता है
5: तो अच्छी बात है।
3: मुझे लगता है कि खाने की बू अगर जहाँ से आ रही है ना, एक स्मेल आ रही है ना अच्छी सी, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तो नहीं खाती हूँ, पर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा।
5: मैं भी टेस्ट ही करती हूँ।
3: नहीं, तुम टेस्ट नहीं करती, तुम खाना खाती हो, जो बात सच्चाई है उसको हम दोहरा उसको बदल नहीं सकते है ना। तो कोई बात नहीं, चलो और खिला देते हैं एक पोयम के माध्यम से फिलहाल, और उसके बाद तो डिशेस का आज दौर है ही, और डिशेस भी एक से एक डिशेस हैं क्योंकि मास्टर शेफ की डिशेस हैं आपकी और हमारी, तो बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं। तो मैं तो आज आपको बहुत ही अच्छी और मौसमी चीज़ों को आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो अंशिका क्या बताएंगी आज?
5: बताते हैं तो भाई
3: अभी सोचा नहीं है?
5: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ के हाथों से नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, सही आते हैं, माँ के बनाए हुए खाने में मिलती है उनकी ममता। और आज पोएम सुनाएंगी आरजे समता।
3: तो मैं तो हमेशा ही सुनाती हूँ,
5: लेकिन लेकिन लेकिन कुछ खास है,
3: कुछ खास है,
5: और खास ये है कि प्यारी सी मुस्कुराहट में राज होता है। प्यारी सी मुस्कुराहट में राज होता है, और वो जब मुस्कुराए तो पक्का कोई ना कोई साज होता है। तो चलिए जानते हैं आज क्या है साज, खोलते हैं राज और जानते हैं क्या कहने वाली हैं ये पंक्तियाँ।
3: जी, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पोयम थी, बहुत ही अच्छी राइमिंग की आपने, अच्छी कोशिश थी। पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस पे आपने जवाब नहीं दिया कि आज आप क्या खिलाने वाली हैं।
5: ओ, मैं क्या खिलाने वाली हूँ? तो भाई आज मैं जो खिलाने वाली हूँ ये है,
3: पहले मैं बताऊँ?
5: ओके,
3: पहले मैं बताती हूँ। देखो, अभी आजकल अगर आप मार्केट में जाओगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग मिलती हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल रहा है? जामुन, हाँ? अमरूद और भुट्टा, यानी कि कौन मिल रहा है?
5: भुट्टे से कुछ बहुत अच्छा याद आ गया मुझे।
3: बारिश हो रही है, बाइक पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अपने पसंदीदा इंसान के साथ में भुट्टा खा रहे हैं, यही ना? मुझे पता था।
5: और भुट्टा भी पता है देसी तरीके से खाने में,
3: मुंह से ना, मुंह से ही खाते हैं फिलहाल, मतलब। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, उसके दाने हाथ से निकाल लेते हैं, इसीलिए हम जब कभी जाते हैं ना, तो मेरे घर के बच्चे कहते हैं कि सुनो मुंह से खाना, तो हमने कहा क्या मुंह से तो खाते हैं? बोले नहीं, तुम ऐसे दाने वाने निकाल के खाती हो, क्योंकि ना अगर मुंह से खाओ, दांत से खाओ, तो वो उसकी जो जब उसको पकाओ तो वो काले काले जो उसमें होता है ना, वो दांतों में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ऐसे हाथ से दाने निकाल लो, पर एग्जैक्टली देसी खाने में ही मजा रहता है, भुट्टा उसके ऊपर चटनी लगी हो। तो आज मैं आपको स्वीट कॉर्न बताऊंगी, और वो भी आपको जैसे मैरिनेट करके जो बनाएंगे घर पे, काफी ज्यादा महंगी। जब आप किसी अच्छे होटल्स में जा रहे हैं, कि हाइपर होटल्स में जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि अगर आप उसमें ये बोल देंगे ना कि मैरिनेट करके आपने कॉर्न चाहिए, तो कम से कम 250-300 रुपए का वो एक प्लेट आती है, जिसमें चार छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। मैंने खाए हैं तो मुझे पता है, 350 या 450 का था अंशिका, और भुट्टे की कीमत कितनी होती है? 3-4 रुपए की होती है। और अगर आप बंच में ले रहे हैं तो वो तो बहुत ही कम में होता है, मतलब होटल्स में क्या 2-3 थोड़े लेते होंगे, वो तो बोरे आते होंगे,
5: बोरे लेते हैं बिल्कुल।
3: लेकिन इतने महंगे की वो बड़ी सी प्लेट थी, और मैरिनेट हुआ था उसमें, और उसमें क्या क्या था वो हम बाद में बताएंगे, बट उसकी प्लेटिंग की जो चार्ज था वो था 450 में केवल एक, जैसे एक भुट्टा होता है
5: जी,
3: उसमें से चार टुकड़े कर दो बस। और वो इतना ज्यादा बट टेस्टी तो था ही, पर मैंने उसकी रेसिपी सूंघ के खाई, और मैंने उसको निकाला, और मैंने कल बनाए थे। मैं अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी उसकी, मैंने पिक्चर ले ली थी अपने मोबाइल में कि मैं अंशिका को बताऊंगी जाकर के कि मैं यही खा के आई थी, और मैंने अपने घर में बनाया, और उससे लाख गुना टेस्टी बना, और बहुत अच्छा बना, और सब लोगों ने एंजॉय किया घर में। और मात्र पता है आपको कितने रुपए में?
5: कितने में?
3: 20 रुपए में।
5: अरे,
3: मतलब चार भुट्टे लिए हम लोगों ने, चार भुट्टे से बनाया, पूरी फैमिली ने खाया, और जो ऊपर से इंग्रेडिएंट्स लगा जिसमें सॉस वगैरह लगी है, वो तो घर में होता ही होता है,
5: वो तो रहता है।
3: तो मतलब 20 रुपए में हम लोगों ने पूरा घर में सब लोगों ने भरपेट खाया, और उसको एक अपने हाथ से बना करके खाने में भी एक अलग स्वाद आता है। तो मैं तो आज बनाऊंगी मौसमी भुट्टे से आपको बहुत ही कुछ अच्छा सा, लजीज सा, और एंड क्या होगा कि मास्टर शेफ की बनाई हुई रेसिपीज आपको सुनाएंगे, एंड देन अंशिका बताएगी क्या
5: आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, जो खिलाने वाली हूँ, वो भाई बहुत ही टेस्टी सा होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है ये बताएंगे हम, पर उससे पहले नहीं, ब्रेक नहीं,
3: हाँ,
5: आपकी पोयम।
3: अच्छा, मेरी पोयम? नहीं नहीं, पोयम तो मैं बोलूंगी, और उसके बाद रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ,
5: हाँ,
3: एंड देन ब्रेक,
5: और देन हम बताएंगे कि क्या है।
3: तो मैंने कहा ना, ब्रेक के बाद बताएंगी। ये सोच के नहीं आई है, मुझे पता है, ये इंस्टेंट बताती है ना, इसके दिमाग में कोई डिश आ जाती है ना, ये बहुत बड़ी वाली मास्टर शेफ है, उसके दिमाग
5: नहीं,
3: में बस आ जाती है।
5: ऐसा बिल्कुल नहीं,
3: मुझे क्या कहते हैं, जामुन की चटनी बना लेनी है, मुझे खाली प्याज की चटनी बना लेनी है, पता नहीं क्या क्या, ये
5: नहीं नहीं
3: अतरंगी लेकर के आती है डिशेस। तो चलिए कोई नहीं, जब तक अंशिका की डिशेस को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी आज की पोयम।
5: बताइए।
3: स्वाद का राजा खुशियों की चाबी, स्वाद का राजा खुशियों की चाबी, खाने की दुनिया है सबसे निराली, थाली में सजते जब गरम पकवान, चेहरे पर आ जाती है मुस्कान, गोल गोल रोटियां घी की खुशबू, दाल तड़के का जादू है हर सू, बिरयानी की महक जब घर में आए, भूख और भी ज्यादा बढ़ जाए, तीखा समोसा और मीठी जलेबी, ओफो, पानी पूरी की तो बात ही अलग थी। हर निवाले में छुपा है एक प्यार, खाना ही तो है जीवन का आधार। भरे पेट भरे तो मन को मिले चैन, खाने की तारीफ करें सब दिन रैन। तंदुरुस्ती और स्वाद का यह मेल है दुनिया का सबसे सुंदर खेल।
5: वाह वाह वाह वाह वाह, मतलब उसमें इतनी अच्छी पोयम थी और सबसे अच्छी वो जलेबी वाली,
3: जलेबी लाइन ना, समोसा एंड जलेबी,
5: समोसा एंड जलेबी। तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी लगी ना।
3: अच्छी लगी ना,
5: बहुत अच्छी।
3: पर उसमें से एक भी चीज तुमको खाने को मिलेगी नहीं, जितने पकवानों के नाम लिए गए हैं ना, तो तुम्हें उसमें से एक भी पकवान मिलेगा नहीं, तो सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं।
5: मैंने नाम से संतुष्टि कर ली सुनकर।
3: तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आए।
5: यस,
3: ओके,
5: तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताते हैं। और आज का हमारा जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है वो ये कहता है कि हमेशा हमेशा सोच समझ कर कहना, सुनना पहले और कहना बाद। सोच समझ कर कहने से बातें जो होती हैं ना, वो ज्यादा जल्दी सामने वाले को भी समझ में आती हैं और आपको भी। क्योंकि कई बार शब्द जब जल्दी निकलते हैं तो उनका अर्थ हम कुछ और कहना चाहते हैं पर सामने वाला कुछ और समझ लेता है। इसलिए पहले सुने, सोचें, समझें और फिर जवाब दें।
3: अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक कुछ सीखने को मिला, अच्छी बात है सीखने को मिला। तो चलिए अंशिका, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आएंगे सीधे। सबसे पहले हम अपनी डिश को बताएंगे आज, एंड देन मास्टर शेफ की, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट अंशिका बताएंगी। ठीक है,
5: बिल्कुल।
3: तो अब चलते हैं ब्रेक की ओर। भाई समय हो चला है आपको गाने सुनाने का, तो आइए यूं ही बने, हम आपको खिलाते रहेंगे आज बहुत ही प्यारा प्यारा प्यारे प्यारे खाने। लेकिन उसी के पहले मैं सुना देती हूँ आज आपको बहुत बेहतरीन से गाने।
5: वाह, इसे कहते हैं असर।
3: सीट का असर है?
5: नहीं, ये सीट का असर नहीं है,
3: ये सीट का असर है।
5: ना ना,
3: आज सीट चेंज हुई है ना, तो ये सीट का असर है,
5: ये कुछ और असर है।
3: हो सकता है
5: ये सीट का नहीं है मैम,
3: मे बी हो सकता है।
5: मैं जानती हूँ ना क्या है,
3: कौन सा असर है। चलिए,
5: है अच्छा वाला है और ऐसे पॉजिटिव असर होते रहने चाहिए।
3: जी, तो चलिए सुना देते हैं आपको गाने, बस यू गए और अभी यू आए स्टे ट्यून।
6: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज जी अंशिका। तो चलिए भाई फटाफट शुरू कर देते हैं आज की पहली रेसिपी जो कि है आज समता के अकॉर्डिंग।
3: बिल्कुल, तो भाई पूरी हो जाती है हर एक विश। और चलिए सुनते हैं प्यारी सी डिश।
2: तो पहली सी जो डिश है वो है भाई, देखिए मौसमी आजकल भुट्टे जो हैं जिसको कॉर्न कहते हैं वो हर एक सिटीज़ में मिल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि हर एक मौसमी फलों को अपने मतलब शरीर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, मतलब ज़रूर खाना चाहिए। जैसे जिसमें जामुन हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, भुट्टे हो गए, तो हर मौसम के अलग अलग फल अलग अलग सब्जियाँ आती हैं जिसे लेना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग जब हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, कि जैसे बहुत गर्मी लगती है तो गर्मियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी में गर्मी लगती है, सर्दियाँ होती हैं तो क्या होता है कि
3: सर्दी लगती है,
2: है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो फल फ्रूट्स आते हैं ना मौसम के अकॉर्डिंग, तो हमें उनका भी सेवन करना चाहिए क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी तासीर होती है।
3: बिल्कुल।
2: तो भुट्टे के लिए तो मैं बता दूं कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, तो उन्हें तो भुट्टा जरूर खाना चाहिए।
3: ओके।
2: लेकिन इसका एक प्रिकॉशन है अंशिका कि अगर आप भुट्टा खा रहे हैं तो अगर आपको प्यास लगी है तो आपने पहले पानी पी लेना है 1 से 1.5 गिलास, ठीक है, और आधा घंटे के बाद ही आपने भुट्टा खाना है। एंड भुट्टा खाने के बाद आपको बहुत प्यास लगेगी
3: जी।
2: ये एक मतलब नेचुरल है कि भुट्टा खाएंगे तो आपको प्यास लगने ही लगनी है।
3: ओके।
2: लेकिन आपको उसके बाद पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। अगर आपने भुट्टा खाने के बाद पानी पिया तो आपको तुरंत तुरंत आपका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, ये आजमाया हुआ है। तो इसीलिए भुट्टा खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, अदरवाइज आप भुट्टे के किसी भी रूप में उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, महंगे महंगे होटल्स में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं कि स्वीट कॉर्न, और जैसे कि उसमें आता है मैगनेट कॉर्न आता है, एंड क्या कहते हैं उसको, टेस्टी कॉर्न आता है, मतलब अलग अलग
3: अलग अलग
2: वैरायटीज होती हैं। तो हम लोगों ने, जब मैंने भी एक बार ऑर्डर किया था कि हनी कॉर्न बनाया था मैंने, तो क्या हुआ कि अब बच्चे थे साथ में तो सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग तो वही खाएंगे, स्वीट कॉर्न तो हमेशा खाते रहते हैं और क्या होता है वो बॉईल करके मसाला डाल के दे देते हैं, लेकिन हनी कॉर्न हम लोगों ने नहीं खाया है। तो टेस्टी एंड हनी कॉर्न को मिक्स करके मंगवाया था। अब हम लोगों को अंदाजा तो था ही कि ये थोड़ा सा स्वीट करके ही आएगा, मीठा ही करके, क्योंकि हनी है तो मीठा होगा ही होगा। हम लोगों ने अपने दिमाग में ये पिक्चर बना ली थी कि ये मीठा ही भुट्टा बनके आएगा कुछ। लेकिन जब आया तो हम लोगों ने जब खाया तो बहुत ही टेस्टी था, मतलब क्या बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा तो था। वो पैसे की कोई वो नहीं थी, बट पैसे तो लिए उन्होंने, बट अच्छा था, मतलब काफी टेस्टी था। बट मैंने एक एक दाने को, एक एक उसको बहुत ही सूंघ सूंघ के खाया। मैंने कहा इसको मैं बनाऊंगी घर पे जरूर। तो मैंने कल बनाए थे, मैंने अंशिका आपको पिक्चर दिखाई ना अभी,
3: जी मैम,
2: तो मैंने कल बनाए थे और मेरे साथ तो मेरे घर के जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा एक्सपर्ट है, उन्होंने हेल्प करी। तो क्या किया कि हम लोगों ने 2-3 भुट्टे रखे थे तो उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ठीक है
3: जी।
2: और हम लोगों ने कुकर में पानी डाला और उसमें क्या किया कि हल्का सा जो ऑयल आता है, मतलब जैसे ये रिफाइंड ऑयल आता है
3: जी,
2: 2-3 चम्मच वो डाल दिए पानी में ही, और हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल करके इसको बॉईल कर लिया। कुकर में बॉईल करने का फायदा ये होता है कि जल्दी 3-4 विसल में आप फटाफट इसको बॉईल कर सकते हैं। अगर आपने खुले हुए बर्तन में बॉईल करेंगे तो गैस की खपत भी ज्यादा होती है और जल्दी से वो,
3: ये भी डर रहता है कि कहीं कच्चे ना रह जाए
2: और जल्दी नहीं होता है बॉईल, क्योंकि वो बहुत कड़ा तो होता ही है। तो हम लोग ने उसको कुकर में किया, 3-4 विसल के अंदर वो आराम से उसके जो ऊपर के जो दाने वो बहुत ही बढ़िया से पक गए। अब क्या हुआ कि उसको ठंडा करने के लिए हम लोगों ने निकाल के रखा, तब तक उसका पानी पूरा गाद लिया
3: जी।
2: अब इधर हम लोगों ने एक सॉस बनाई, सॉस के लिए जिसको वही बोल रही हूँ ना मैं कि उसको मैरिनेट करना है
3: जी मैम।
2: क्या करना है कि आपने कढ़ाई रखी, उसमें 3 से 4 चम्मच आपने बटर डाल देना है। बटर कोई भी हो सकता है, आपने डिलीशियस लेना है, अमूल लेना है, कोई भी ले लेना है, लेकिन बटर ही लेना है। तो बटर ले लेना है और आपने भुट्टों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने जो सूखी लहसुन आती है ना वो ले लेना है।
3: जी मैम,
2: सूखी लहसुन जो सफेद वाली लहसुन होती है,
3: कली जो
2: होती है,
3: कली
2: कम
3: होती
2: से कम अगर आपके आपने भुट्टे बनाने हैं 8 से 10 पीसेस, तो आपने 2 से 2.5 चम्मच अच्छी खासी मतलब वो लहसुन होनी चाहिए।
3: जी
2: ठीक है, उसको हल्का सा आप पीस लीजिए और उसमें जो आपने बटर उसमें डाला है कढ़ाई में उसमें ये डाल देना है। ठीक है, हल्का सा बस भून जाए, मतलब हल्का सा कलर ले ले। अब आपने रेड टमाटो सॉस लेनी है और अच्छे से आपने 1 कटोरी पूरा उसमें डाल देना है।
3: जी
2: ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपने हल्का सा नमक डाल देना है, हल्की सी हल्दी डाल देनी है, हल्की सी काली मिर्च का पाउडर डाल देना है वो टेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद में आपने हल्का सा गरम मसाला, अगर आप बच्चों को लगे कि यहाँ बहुत ज्यादा टेस्टी चाहिए मिर्च वाला चाहिए तो हल्का सा गरम मसाला भी डाल देना है। अब वो अच्छी सी जैसे आपको लगेगा कि वो एक सॉस बन गई है बढ़िया सी।
3: जी मैम,
2: जिसको हम लोग मार्केट में अगर आप जाएंगे तो सिजवान सॉस आपने सुना होगा, तो सिजवान सॉस बनकर के ये घर वाली सिजवान सॉस बनकर रेडी हो गई। अब आपने जो बॉइल्ड उधर रखे थे भुट्टे इसको इसमें कढ़ाई में डाल देना और अच्छे से मिला देना है ताकि वो सॉस हर एक भुट्टे के दाने में जाकर के लग जाए। ठीक है
3: जी।
2: अब ऊपर से आप इसकी प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग करने के लिए आपने एक प्लेट उठानी है, अच्छी सी एक प्लेट उठानी है, मतलब गैस वगैरह है उसमें आपको रेड सॉस से किनारे किनारे से उसमें राउंड कर लेना है, मतलब एक उसमें से गोल उसको सर्कल कर लेना है।
3: जी,
2: उस सर्कल के बीच में आपको ये कॉर्न रख देना है। और जब हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेहंदी लगाते हैं तो एक डॉट लगा करके हाथ से उसको फैला देते हैं।
3: हाँ।
2: तो एक डिजाइन बन जाती है। मैंने मेरी प्रेजेंटेशन कल ऐसी थी कि वो सर्कल को हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी दूर पे फिंगर से ऐसे उसको फैलाते गए और बीच में वो कॉर्न रखे थे और येलो कलर के कॉर्न और येलो साथ में रेडिश, तो पता है वो सूरजमुखी का फूल लग रहा था पूरा प्लेट में। और ऊपर से हम लोगों ने उसको हरे धनिया से गार्निश कर दिया और जो टूथपिक्स आती है ना, जो स्टिक आती है,
3: जी जी,
2: वो साथ में लगा दिया। सब लोगों ने घर में एक एक स्टिक का, मतलब जब लग रहा था कि हम लोग यस एक अच्छे से होटल में बैठे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, और बड़े ही मजे से सब लोगों ने एक एक दो दो पीस खाए और मात्र 20 से 25 रुपए के अंदर हमारा ये जो मैगनेट जो ये
3: कॉर्न
2: तैयार हो गया और हनी कॉर्न तैयार हो गया, जिसको इतने बड़े बड़े नामों से बुलाया जाता है, अपने घर बैठे खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
3: वाह, मतलब मुझे तो उसकी प्लेटिंग सुनकर के मैं जब इमेजिन कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि वाह कितना प्रेजेंटेबल लग रहा होगा जब पूरा मतलब रेडी हुआ होगा।
2: एग्जैक्टली अंशिका, मैं खैर ला नहीं पाई यहाँ तक, पर मैं बता रही हूँ कि खाने में इतना ज्यादा टेस्ट है ना कि आप एक की जगह अगर आप 2 भी खा लोगे ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही बढ़िया था। और मतलब अभी मेरे पास और भुट्टे रखे हुए हैं घर पे, तो अगर कभी इन केस अगर आप मेरे घर पे आ रही हैं तो मुझे बता के आओगे ना तो मैं
3: जी जी
2: मिनटों, और वैसे भी बता के भी नहीं आओगे तो भी मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इसको एंजॉय करिए और आप भी इसको ट्राई जरूर करिएगा।
3: तो भाई ट्राई करिएगा और मुझे तो इनविटेशन भी मिल गया है और भुट्टे भी रखे हुए तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और वैसे भी मैम के हाथ से बना हुआ कुछ खाने का मजा अगर छोड़ दिया जाए तो फिर फायदा नहीं होता, तो मैं तो जरूर ट्राई करूंगी।
2: बिल्कुल, और आप भी अपने घर में खुद बनाएं और जरूर से इसको ट्राई करिएगा। लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कि हमारे चैट बॉक्स में कितने लिसनर्स हैं जो अभी आ गए हैं।
3: ओके, तो मैं चैट बॉक्स में अभी सिर्फ अनुष्का जी आई हैं
2: और मुझे कमल नयन भी दिख रहे हैं और मुझे आइडियल भी कोई है वो भी दिख रहे हैं। तो प्रीति जी जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अभी आशु जी जल्दी से आ जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी जो कि डिशेस हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगली डिश होगी हमारी मास्टर शेफ की, लेकिन उसके पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक गाना, उसके बाद आते हैं हम फिर से चलेंगे जिसकी ओर है बहुत ही बढ़िया वाला खाना।
3: ओ माय गुडनेस, वाह वाह वाह वाह,
2: ये क्या हो रहा है, ये
3: हो रहा है, हो रहा है, कुछ
2: हो रहा है, ये
3: अच्छी बात है, हो रहा है, होना चाहिए, जब मौसम बदलता है, जब मन बदलता है,
2: बात बदल गए, मन बदल गया,
3: और जब कुछ और बदलता है तो यही होता है।
2: जी,
3: वही वाली कहावत है कि शायराना
2: चले चले चले,
3: हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे,
2: चलो गाना सुनते हैं।
3: हाँ

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आपकी आज समता। तो चलिए भाई, टाइम हो चला है मास्टर शेफ के द्वारा बताई गई रेसिपीज को जानने का। तो चलिए फटाफट देर नहीं करेंगे, आइए सुनते हैं अपनी मास्टर शेफ की रेसिपी को।
5: नमस्कार मेरे सुनने वाले, गर्मी का समय चल रहा है और बच्चों को आइसक्रीम बहुत भाती है। कैसे भी हो उनको ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। आप चाहे सादे पानी में जमा करके चीनी सहित दे दीजिए। तो चलिए आज हम आपको बहुत सरल घर के सामान से ही आइसक्रीम बनाना बताते हैं, और बहुत सरल बताते हैं, इसको आप कभी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे और उसको कढ़ाई में डाल के हल्का गर्म होने रख देंगे मध्यम आँच पे। इसके बाद हम 4-5 टुकड़े उस बन के लेंगे, चाहे आप जो है वो उसमें ले लें, क्या कहते हैं, ब्रेड के ले लें, सफ़ेद ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। रस्क हो अगर आपके पास 5-6 टुकड़े रस्क ले, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। और उसको आप जब दूध जो है हल्का उबलने लगे उस समय आप इसको डाल दीजिए। फिर 1 प्याला मखाना, वो आप इसमें डाल दीजिए। 8-10 काजू डाल दीजिए, 8-10 बादाम डाल दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। 1/2 प्याला चीनी डाल दीजिए और 1 प्याला दूध पाउडर का डाल दीजिए इसमें। सबको एक सार कलछुल से खूब चला दीजिए, चला करके ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब मिक्सी में डाल के सबको एक सार पीस लीजिए। अगर ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है आपको तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए, लगभग 1/2 प्याला या 1/4 प्याला, ये आप अपने अंदाज से डाल लेंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में चला करके आप बैटर को एक बाउल में निकाल लीजिए जिसमें आप जमाना चाहती हैं, उसमें आप इसको बैटर को डाल दीजिए और इसको ढक के जमाने रख दीजिए। रात भर रखा रहने दीजिए इसको। दूसरे दिन सुबह आप 9-10 बजे बच्चों को या लंच के बाद आप बच्चों को काट करके सर्व करें, देखिएगा कितनी अच्छी आइसक्रीम जमती है। कोई भी इसमें बर्फ़ के चिप्स नहीं पड़ेंगे, दूसरे दूध पाउडर पड़े होने के कारण ये क्रीमी क्रीमी अपने आप लगेगी, अलग से आपको इसमें क्रीम नहीं डालनी पड़ेगी। तो खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। तो आज की डिश बस इतनी,

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: द शो सुन सहेली और वापस हाजिर हो गई हैं आपकी सहेलियां। तो वही अभी अभी आपने सुना हमारे मास्टर शेफ के द्वारा बहुत ही प्यारी सी आइसक्रीम। तो चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट हमारी मास्टर शेफ के पास हमारे लिए क्या है। तो नेक्स्ट वो हमें क्या खिलाने वाली हैं, फटाफट से जानते हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: आज मैं आप लोगों को, सब लोग के घर जैसे हम लोग जो है डोसा बनाते हैं, तो डोसे का बैटर अक्सर बच जाता है, आधा प्याला, एक प्याला या इडली का भी बच जाता है। तो आज हम उसको, उसी का आपको उपयोग बता रहे हैं जो हमारे घर के तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगी आप, 3 या 4 आलू उबाल लेंगी, उबाल करके उसको छील लेंगी, छील करके आप खूब अच्छे से मैश कर लेंगी चिकना चिकना। अब आप क्या करेंगी, कढ़ाई चढ़ाएंगी, कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच जो है कोई भी तेल डालिएगा, चाहे सरसों का, चाहे रिफाइंड, जो भी मर्जी हो आप यूज़ करती हैं वो डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। इसके बाद इसमें करी पत्ता खूब महीन महीन काट लीजिए, साबुत पत्ती मत डालिएगा, वो डाल दीजिए, बनारसी राई डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए और मध्यम आंच में आलू को भुनने दीजिए। अब इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, हल्का सा मिर्चा डाल दीजिए बस। और अब खूब अच्छे से धीमे धीमे भून करके इसको थाली में निकाल के ठंडा होने दें। ठंडा जब हो जाए अब आप क्या करेंगी कि आइसक्रीम की स्टिक जो बाज़ार में डंडियां बिकती हैं वो आप ले लीजिए, और इस आइसक्रीम की डंडी पर जो ये आलू आपने मैश करके रखा है इसको पतला पतला आधी दूरी तक उस पर चढ़ा दीजिए, डंडियों पे खूब घुमा घुमा दबा दबा करके आप लॉलीपॉप ऐसा इसको बना दीजिए। बनाने के बाद आप इसको एक किनारे रख लीजिए। अब क्या करेंगी आप, तवा चढ़ाएंगी, तवे पे 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ ऐसी बनाएंगी, आप एक ही एक डालिए, ज़रूरी नहीं है कि 2-3 एक संग डालिए, आप एक पट्टी डालिए 3 इंच चौड़ी। अब वो तुरंत हो जाएगी। अब उसमें क्या करेंगी, जो आपने ये लॉलीपॉप वाला आलू बनाया है उसके ऊपर वो चिल्ला आप लपेट देंगी, लपेट करके उसको आप अलग रखती जाएंगी। जब सब इस तरह से बन जाए तब आप गरी के चटनी के संग या सांभर के संग या बच्चे जैसे भी पसंद करते हैं आपके सॉस के संग, जिससे भी खाना पसंद करें, आप उनको ये लपेट लपेट कर दे दीजिए। तो इस तरह से बच्चों का फुल मील भी हो जाएगा, दाल चावल है, इडली मिल गई या उसका वो डोसा है वो मिल गया, आलू मिल गया, फिलिंग भर गई, तो बच्चों का बहुत जल्दी पेट भी भर जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप अपने मेहमानों को भी ये बनाकर खिला सकती हैं।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और अपने वादे के मुताबिक एक ही गाने पे हम आ गए हैं फिर से। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं रेसिपी बाय अंशिका।
10: तो आज मैं आपको बताऊंगी घुइया के पत्ते के पकौड़ी बनाना।
9: जो भी सीजनल है, मुझे पता था ये कुछ न कुछ ऐसा अतरंगी लाएगी। कल मैं रात में मार्केट गई, पत्ते मिल रहे थे मुझे बहुत, और इसको कहते हैं सेवड़ा शायद, आई थिंक सो।
10: सेड़ा,
9: सेड़ा, देखा मेरा एक शब्द ज्यादा ही होता है, सेवड़ा मैंने कह दिया। सेड़ा कहते हैं ना?
10: हाँ।
9: तुम्हारे यहाँ बनता है ना?
10: हाँ।
9: कब खिला रही हो?
10: जब बनेगा फिर।
9: नहीं, ये देखो, ये इनकी तमीज है, कहिए जब बनेगा तब।
10: आई मीन टू
9: तुम बोलती कि मैं आज ही पत्ते लेके आऊंगी मैम, और कल आपको मैं सेड़ा ला करके खा खिलाऊंगी खुद अपने हाथों से।
10: अगर मुझे बनाना,
9: क्योंकि मुझे नहीं आता है, मेरे घर में नहीं बनता है
10: जी, जी।
9: तो आप मम्मी से बनवाइए, खुद बनाओ।
10: मम्मी से बनवाऊंगी मैं, क्योंकि तो मुझे भी
9: मुझे खाना है
10: मुझे। sure, sure.
9: अगर कल नहीं तो परसों वेडनेसडे के दिन पक्का।
10: पक्का,
9: ठीक है, चलो अब बताओ।
10: अब बताते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 8 से 10 अरबी भी कहते हैं, वैसे तो गुइया भी बोलते हैं और अरबी भी बोलते हैं। तो 8 से 10 आपको गुइया के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है,
9: बड़े साइज वाले।
10: और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 कप बेसन ले लेना है, चावल का आटा ले लेना है 2 चम्मच।
9: चावल का आटा ना हो तो?
10: अगर चावल का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
9: पर मैंने अंशिका एक बार खाया था, मैं बताऊँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने किसी से बनवाया था। अब मैं वो क्या बताऊँ किसने मुझे ला के दिया था, तो उनके घर से जब आया तो कुछ लोगों ने तो मेरे घर में कहा, अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगी, वहाँ से आया ये वो दुनिया भर की चीजें। पर मैंने कहा देखो, एक तो फरा और एक ये जो सेड़ा होता है, ये किसी के घर से भी आएगा ना तो मुझे तो खाना ही खाना है। तो वो लेकर जब आए, मेरे बहुत प्यार से लेकर के आए और मैंने खाया, तो पता है उसमें वो दल भरी, उसको बोल रहे थे कि वो दाल भरी हुई थी
10: जी अंदर। जी जी,
9: जो काली दाल होती है, मसूर
10: चने की,
9: चने की दाल
10: तो
9: वो उससे भी शायद बनता है।
10: हाँ, चने की दाल, देखिए इसमें ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो चने की दाल को उस पे लगा सकते हैं पत्तों पे, और चाहें तो बेसन लगा सकते हैं।
9: हाँ।
10: लेकिन बेसन लगाना ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि बेसन लगाने से थोड़ा सा लाइट बनता है, और चने की दाल काफी हैवी हो जाती है, और जिन्हें भी गैस्ट्रिक हो जाता है उनके लिए थोड़ी सी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता
9: है। तो तुम बेसन वाले बनाना, हैवी नहीं करना है।
10: तो उसके बाद आपको ले लेना है चावल का आटा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा एक छोटा चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4, या अगर आप तीखा खाते हैं तो उससे भी ज्यादा। हल्दी पाउडर ले लीजिएगा 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर या नींबू का रस आपको ले लेना है 1 बड़ा चम्मच, ठीक है। अगर इससे आपको गले में खराश नहीं हो जाती है तो, अदरवाइज अगर गले में खराश हो जाती है नींबू से तो नहीं लेना है। अजवाइन ले लेना है 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार जैसा कि आप डालते हैं, हींग जरूर डालिएगा 1 चुटकी। हींग इसलिए क्योंकि घुइयां के पत्ते जो होते हैं ना, वो जैसे हम कभी कभी बैगन खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि बैगन बादी होता है, खालो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक उसी तरह घुइयां के पत्ते भी होते हैं, इसलिए हींग जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको लेना है तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, जो आपके घर में यूज होता है डेली में।
9: इसको बनाना कैसे होता है?
10: अब
9: हो सकता है मैं सुन के मैं ही बना लूं।
10: बिल्कुल,
9: फिर तुम्हें रिक्वेस्ट ना करनी पड़े मुझे खिला दो, मुझे खिला दो।
10: नहीं नहीं, वैसे भी मैं आपको खिलाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले घुइयां के पत्तों को 4 से 5 बार अच्छे से धो लेना है, जब तक कि वो पूरा जो है साफ साफ पानी नहीं हो जाए तब तक आपको उसे धुलना है।
9: ओके,
10: आप क्या करना है कि चक्कू की मदद से इसमें जो डंठल होते हैं
9: मोटी-मोटी डंठल होती
10: वो काट करके अलग कर देनी है। अब आपको एक बड़े कटोरी में बेसन, चावल का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, अजवाइन, हींग, नमक और अमचूर पाउडर और नींबू का रस, अगर जैसे मैंने भी बताया कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और ना चाहें तो ना डालें, को डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल एक गाढ़ा और स्मूथ इसका घोल बना लेना है, ठीक है। अब घोल तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है कि आपको एक बड़ा पत्ता लेना है, उसे सीधा फैलाइएगा, एक बड़ी सी घर में जो हम यूज करते हैं ना प्लेट, बड़ी प्लेट वो ले लीजिएगा, और उस पर एक बड़ा पत्ता आपको फैला के रखना है। आप इसके ऊपर हाथों की मदद से बेसन का घोल अच्छी तरह से लगाइए, फिर इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखिए, उल्टा रखिए, पहला पत्ता सीधा रहेगा, दूसरा पत्ता उल्टा रहेगा।
9: ओके,
10: और उस पे भी बेसन लगाएं, इसी तरह से 4-5 पत्तों के आपको
9: एक परत लेयर परत, लेयर बना लेनी है,
10: लेयर बना के रोल बना के तैयार कर लेना है। एक रोल 4-5 पत्तों का होगा, ऐसे ही आपके पास जितने भी पत्ते हैं उन सभी का हमें रोल बना के तैयार कर लेना है।
9: ओके,
10: अब रोल तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है कि जब ये रोल बन गया है उसके ऊपर, उसके बाद हम स्टीम देंगे।
9: अच्छा,
10: स्टीम देने के लिए क्या करना है कि आप एक बड़ा सा घर में जो हम यूज करते हैं ना भगोना, वो ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, आधा आधा भगोना पानी होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर बड़ी वाली वो रख दीजिए,
9: छलनी,
10: छलनी बड़ी वाली जो स्टील वाली होती है उसको रखना है, और थोड़ी देर के लिए उसको ढक देना है। जब उसमें भाप बनने लगे तब आपको ये रोल्स वहाँ पे
9: और छलनी पे लगा लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जब आप वो रखेंगे ये गुइया के पत्ते का रोल, तो उस पे चिपके ना। देखो ये होता है, टिप, टिप, टिप मैंने दिया
10: टिप, ठीक है। तो टिप मिल गई आपको, वो करना है, और उसके बाद गुइया के पत्तों को रख देना है। मेरे अंदाज से 10 मिनट लगेगा, या शायद उससे भी कम लगे, 10-15 मिनट लगे कि हो जाएगा। आपको जब आप उसको हटाएंगे प्लेट को, तो हल्का सा नाइफ को डाल के अंदर और देख लेना है कि अगर नाइफ पूरी जा रही है उसके अंदर,
9: क्यों फिक्स से करिएगा, नाइफ करेंगे तो वो फट सकता है रोल। और क्या कहते हैं कि क्यों फिक्स कर लीजिएगा, माचिस की तीली कर लीजिएगा, उससे आप उसको डिप करके देखिए कि वो अच्छे से वो अंदर, अगर वो सूखी निकली तो इट मींस कि वो अच्छे से पक चुका है। टिप ऑफ द डे यानी सेकंड टिप ऑफ,
10: यस। तो वो हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, रोल को
9: थोड़े सांस बन गए हैं,
10: रोल को निकाल करके उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपको उसको कट कर लेना है।
9: हाँ।
10: एक रोल आप कट करेंगे तो उसमें आराम से 5 से 6 वो
9: पीसेस
10: निकल आएंगे। अब आपको क्या करना है कि कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करिएगा।
9: अच्छा जी,
10: जो हम घर में यूज करते हैं। जब भी आप ये गुइया के पत्ते के पकौड़े बनाए तो हमेशा तलना है, जो प्रोसेस है वो हमेशा सरसों के तेल में ही होना चाहिए।
9: अच्छा, मैंने जब खाए थे ना, जब किसी के घर से आए थे, तो पता है अंशिका, वो तले हुए नहीं थे, वो नॉर्मल फ्राई किए हुए थे सबको एक साथ जैसे डाल
10: जी, जी, जी,
9: क्योंकि उसने भी मुझे बोला कि ये ज्यादा अगर हम लोग तल लेंगे ना तो वो ज्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो उसको खाली ना बस हल्के से घी में और तेल में और भी उसने मसाले वसाले डाले थे
10: जी, जी,
9: और बस
10: जी.
9: उसको खाली हल्का सा फ्राई कर लिया था, बट वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था।
10: हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
9: बट आप बता रहे हैं कि इसमें आपको तलना है।
10: तलना है
9: जी,
10: ये और अच्छा लगता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको पीसेस जब आपने उसके कर लिए, उसके बाद आपने जो घोल रखा था वो आपके पास बेसन का घोल अभी भी
9: बाकी है,
10: हाँ वो बच जाता है, मतलब उसी हिसाब से आप उसको लीजिएगा, तो उसमें जो बचा है उसको बिल्कुल पतला कर लेना,
9: पतला करके,
10: और जब बिल्कुल पतला करके आप उसमें डिप करके फिर उसको फ्राई करेंगे।
9: अच्छा, मतलब जैसे बॉईल के बाद में फिर से उसको डिप करना है,
10: फिर उसमें डिप करना है और फिर उसमें डिप करके फ्राई करना है। लेकिन बेसन का घोल पतला होना चाहिए, पतला इट मींस कि बहुत पतला। तो जब आप उसमें लेयरिंग करके और उसको फ्राई करेंगे तो वो जो बेसन की परत उस पर चढ़ेगी ना वो इतनी हल्की होगी कि वो कहीं आपको ज्यादा
9: नुकसान नहीं करेगा, ज्यादा ऑयली नहीं लगेगा,
10: ऑयली नहीं लगेगा।
9: ओके।
10: उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे फ्राई कर लेना है, लेकिन सरसों के तेल में फ्राई करके निकाल लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल हटाना है तो उसके लिए आप इसको टिश्यू पेपर पे रख दीजिए,
9: निकाल के जैसे आपने उसमें से निकालना है तल करके, आप सारे टिश्यूज में रख दीजिए, सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके बाद आप प्लेटिंग करिए।
10: इसके बाद आपको प्लेटिंग करनी है, और प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपने पकौड़ी ली है उसको रखिएगा, हार्ट शेप में रखिएगा, और उसके बीच में सॉस रख दीजिएगा, बहुत क्यूट लगता है। और इसके बाद आप इसको खाइए, टमाटो सॉस से खा सकते हैं, चटनी चाहे चटनी से खा सकते हैं, जैसे
9: हरी चटनी बना लीजिए घर में, मोमोज चटनी बना सकते हैं।
10: और इसको आप खाएं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बच गए हैं, मतलब जब मेरे यहाँ बनते हैं तो अक्सर बच जाते हैं थोड़े, तो आपको क्या करना है कि बढ़िया सी ग्रेवी तैयार,
9: इस बार बचेंगे नहीं क्योंकि वो मेरे पास आएंगे।
10: श्योर मैम, बढ़िया सी ग्रेवी तैयार करिए। सब जो हम जब कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हम ग्रेवी तैयार करते हैं ना, मसाले वगैरह, बढ़िया सी ग्रेवी तैयार करिए और ग्रेवी में इसको डाल दीजिए, बढ़िया सी एक रसेदार सब्जी की तरह बन के निकल आता है। चावल से खाइए, ओ माय गुडनेस, जब आप इसको ग्रेवी में डाल के चावल से खाएंगे ना तो आपको यही लगेगा कि डेली यही मिलना चाहिए, और मतलब चावल से बहुत टेस्टी लगता है, जरूर खाएं और एंजॉय।
9: अब बताओ, मुझे भूख नहीं लग रही थी इतने दिनों से, अब मुझे भूख लगी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मुझे यही सब्जी चाहिए और चावल चाहिए,
10: बहुत टेस्टी लगता है, तो आप जरूर बनाएं। और मैं तो जब भी बनाऊंगी तो मैम को दूंगी, क्योंकि दोनों ही उसमें, मतलब हम सूखा बनाते हैं तब भी बहुत टेस्टी लगता है, और जब सब्जी में बनाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो भाई हम तो खाने वाले हैं।
9: तो भाई आज की रेसिपीज जो बनाई है हम लोगों ने, मास्टर शेफ ने भी जो बताई वो भी मौसमी बताई थी आइसक्रीम को लेकर के, क्योंकि मौसम चल रहा है, तो आप इसे जरूर से बनाइए, खाइए और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम यू गए यू आए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो टिप ऑफ द डे ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर से आएंगे। मेरी तरफ से टिप ऑफ द डे हो चुका है और अंशिका की तरफ से बाकी है, तो वो भी देंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: चलो चलते चलते ही सुनेंगे, लेकिन अच्छा सा सुन के जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अच्छी यादें लेकर के जाते हैं कहीं, और अच्छी यादें ही फिर बना के आते भी हैं। चलिए हम दोनों को दें इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: अरे सुन,

हाँ जी श्रोताओं, वक्त हो गया है आपके अपने फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, लेके हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम। और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। वैसे धड़कन तो हमें लग रहा है धड़कने को पूरी तरह से बेताब है, क्योंकि आपकी कॉल्स आना शुरू हो गई है और जिनके दिल की धड़कन अभी थोड़ी सी मतलब सोच में पड़ी हुई है कि आज कौन से सॉन्ग की डिमांड की जाए, तो उनसे भी बता दें कि अगर आपको कॉल करना है तो कॉलिंग नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429। वैसे बोलते हैं कि अगर आपको अपनी डिमांड किसी के सामने रखनी होती तो या तो मम्मा पापा होते हैं या फिर होता है ऊपर वाला यानी ईश्वर भगवान। पर एक जगह और है जहां आप अपनी डिमांड रखते हैं, वो है आपका अपना शो। जी हाँ, यही आपका अपना शो कॉलर ट्यून गुंडा। फिलहाल मेरे पास में काफी सारी डिमांड्स आई हुई हैं, लेकिन उन डिमांड की ओर आगे बढ़ने से पहले भाई जो आपकी अपनी आरजे आकांक्षा अपनी प्लेलिस्ट से एक गाना आप सभी के लिए स्पेशल वाला बजाती है भाई, वो बजाएंगे। लेकिन उससे पहले भाई मौसम भी बता दें कि गोंडा का मौसम कैसा हो रखा है। तो भैया मौसम वैसे ही हो रखा है जैसा हम इंसान का भी होता है, बदलता रहता है ना समय समय पर, ऐसा ही कुछ हो रखा है इस मौसम के साथ भी। हाँ, मौसम बदल रहा है, कभी बदली हो रही है, कभी धूप हो रहा है और काफी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हवाएं पूरी रफ्तार से चल रही है, बड़ा अच्छा वाला फील दे रही है। तो भाई जो जहां जैसे भी काम में हो, मूड में हो, बने रहिए। और अगर डेडिकेशन का सॉन्ग है या आपकी पसंदीदा कोई नगमे है, प्लीज कॉल करिए 6393316429 पर। लेकिन उन सभी चीजों से पहले आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के प्लेलिस्ट से उनका फेवरेट वाला सॉन्ग किसी खास के नाम। भाई वो खास है कौन ये तो हम बताएंगे नहीं, आप अगर गेस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज खुद को ही समझ लीजिएगा। हाँ जी, बता दिया ना हमने, हमारे तो यही अदा है भाई, हम बातों बातों में कह जाते हैं वो जो हमें कहना होता है। तो चलिए आप सभी के लिए ये प्यारा सा सॉन्ग हमारी प्लेलिस्ट से। आज थोड़ा ओल्ड सॉन्ग सुनने का मन है तो हमने कहा आप तक भी पहुंचा देते हैं अपनी पसंद को।

वैसे ये सोना सोने वाला नहीं है, मतलब मेटल और डायमंड की बात मैं नहीं कर रही, वो वाला सोना नहीं, और ना ही नींद की सोने की बात करी भैया। ये तो वो सोना है जो आपको सुकून दे जाता है। अगर आपके घर में भी कोई प्यारा सा सोना सोना सोना हो, सोना कितना सोना है, वो वाला सोना नहीं भाई। सोना कई तरीके का होता है, वैसे आप बता सकते हैं कौन सा सोना आपको पसंद है। मुझे तो मेरा सोना पसंद है। हाँ, मैं जहाँ भी पड़ जाती हूँ सो जाती ना, मेरी मम्मी कहती है ऐसा।

बताइए आपको कौन सा सोना पसंद है भाई, जेवर जेवरात वाला या सोने वाला यानी निद्रा वाला, या फिर जो पंजाबी में बोलते हैं भाई सोना सोना, मतलब बड़ी सोनी कुनी है, तो वो सोना सुंदरता वाला सोना या कोई और सोना, आप बता सकते हैं। फिलहाल ये गाने को एंजॉय करते रहिए, इस गाने को पूरा कंप्लीट होने देंगे, देन आएंगे आज की फर्स्ट डिमांड लेके जो की होगी हमारी नीना जी की, और फिर सुनते हैं ना।

हाँ जी, सोना सोना सोना। तो देखते हैं किसको कौन सा सोना पसंद आता है। लेकिन उससे पहले भाई, आज की पहली डिमांड हम तक पहुंच गई है नीना जी की। चलिए चंगू जी की डिमांड पे ये प्यारा प्यारा प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के लिए। कहते हैं ना, अक्सर इस दुनिया में कुछ मिलते हैं और मिलके बिछड़ जाते हैं, कुछ सफर में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि भाई ऐसा लगता है सात जन्मों का रिश्ता है। फिलहाल देखते हैं इस गाने के माध्यम से नीना जी कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं। एंजॉय द ट्रैक। 3 से 4 के सफर में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आपका शो चल रहा है कॉल अट्यून गोंडा। कॉलिंग नंबर वही है 6393131469। कॉल करें और अपनी डिमांड हम तक पहुंचाएं। एंजॉय द ट्रैक।

जी हाँ कमल जी, बिल्कुल सोना जैसा हमारा भतीजा है, बेशक बहुत क्यूट है और आप लोगों की आशीर्वाद से स्वस्थ भी है। फिलहाल मैं बता दूं, उसको जब मैं डांटती हूँ ना तो वो हंसने लगता है। मतलब आप सोच सकते हैं ना, अगर आप किसी को डांट रहे हो तो वो हंस दे तो आपको भी हंसी आ जाएगी।

हाँ जी भाई, नीना जी ने तो बता भी दिया भैया इस दुनिया में कौन कब कैसे मिलता है और किसके लिए गाना है, आप समझ जाइए। तो भाई हम तो बहुत ज्यादा समझदार है, भगवान हमको जब धरती पे अवतरित किए थे तो बोल दिए थे दुनिया का सबसे समझदार प्राणी अगर कोई है तो आरजे आकांक्षा है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हम तक आई हुई है हमारी प्यारी सबीहा जी की ओर से। गाना बेहद खूबसूरत, ओ माई गॉड, ओ एम जी, एंजॉय द ट्रैक दोस्तों विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ।

बाय गॉड, अगर आपका मन कभी उदास हो इसको प्ले कर लीजिए और बस उसके बाद में सुनिए, इतना मज़ा आता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख जानते हैं दोस्तों क्या है, मैं कभी दुखी ही नहीं हो पाती। वॉट मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मैं कभी कभी ऐसा मन करता है काश मेरे को कोई दुख दे दे, लेकिन दे ही नहीं पाता है क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो मुझे कभी उदास होने ही नहीं देते। आई एम सो लकी। एंजॉय द ट्रैक।

हाँ जी, सभी हाजी की प्यारी सी डिमांड। और भाई हम भी हो गए थोड़े से उसी वाले फेज में जिसमें ये गाना बज रहा था। अभी चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हम तक पहुंचा है भाई हथियागढ़ से मंगाया एक सॉन्ग। हमने आप सभी समझ गए होंगे दीपक जी की डिमांड है भाई। और चलिए चलते हैं सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को। और इसी में ऐड करेंगे हम अपने प्यारे देवी प्रसाद जी को। देवी प्रसाद जी, आपका गाना मेरे को समझ नहीं आया इसलिए मैंने आपको ऐड कर लिया है।

जी हाँ, उड़ के गगन को छूने की बात की जा रही है और बिन साजन के झूला नहीं झूलना होता है भैया, झूले के साथ झूला झूलना होता है। इतनी सिंपल सी बात है, हीरोइन को समझ नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और हीरोइन जी और हीरो जी से समझती रहेंगी। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट डिमांड है वो हमारे देव प्रसाद जी की है। भाई इन्होंने कॉल करके हमारे एडिटर साहिबा से कह दिया है कि क्या हुआ, मेरे गाने को आपने बजवाया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो एडिटर साहिबा ने आके हमसे बता दिया। तो भैया अब चलिए प्ले कर देते हैं इनके इस वाले डिमांड को और आप भी एंजॉय करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने प्यारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी को। और उसके बाद प्रमुख जी आपका नंबर है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, आज लग रहा है बहुत सारी डिमांड आने वाली है और बहुत सारी छूटने वाली है। तो जिसकी ट्रेन छूटेगी भाई, ट्रेन ही छूटेगी, लेकिन कल फिर से आप वो ट्रेन पकड़ सकेंगे आपके अपने इसी शो के साथ में। फिलहाल देव प्रसाद जी की डिमांड का ये सॉन्ग।

जी हाँ, और अब धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश, आई एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, 90s हिट्स में से एक, और उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग के साथ आएंगे जो होगा हमारे प्रमुख जी का, और भैया काफी लोगों को इन्होंने डेडिकेट किया। लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है तो मैं कॉल लेती हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

जी हाँ, ये डिमांड थी हमारे आवाज विकास से सुनने वाले प्यारे लिसनर धर्मेंद्र मोहन भारती जी की, और आवाज विकास से सुनने वाले सभी लिसनर्स का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। भाई प्रमुख जी जुड़ गए हैं लुधियाना से, और लुधियाना से सुनने वाले सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जो जहां से सुनना सभी का वैसे वेलकम है। और ये जो सॉन्ग नेक्स्ट मैं प्ले करने वाली हूँ, यानी प्रमुख जी की डिमांड को, वो इन्होंने डेडिकेशन में भेजा है। भैया बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है, कई सारे नाम है, चलिए बता देते हैं कौन कौन है। दरक्षा अंसारी जी हैं, रोशनी रावत जी हैं, साथ ही में हमारी रूहानी जी हैं, और नेहा बिटिया जो हमें बहराइच से सुनती हैं, उनके लिए भी। भैया जब आपने नेहा को ऐड ही किया था तो नीना जी को भी ऐड कर लेते, आप बताइए चंगू मंगू में लड़ाई हो गई तो उसको सुलटाएगा कौन? फिलहाल ही आप सोचते रहिए, तब तक हम सुना देते अपने सभी लिसनर्स को ये प्यारा सा गाना। 3 से 4 के सफर में आप शो सुन रहे हैं आपका अपना, जी हाँ, कॉलर ट्यून गुंडा, एंजॉय द ट्रैक। गाना बड़ा प्यारा है क्योंकि मौसम सच में औसम वाला आया है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, मना लीजिए ऊपर वाले को, क्योंकि भाई उज्जैन में और मध्य प्रदेश में विगत 3-4 दिनों से काफ़ी भारी मतलब मात्रा में बारिश हुई है, तो हमारा यूपी क्यों पीछे रह जाए। थोड़ी सी बारिश इधर भी पहुंचा दीजिए हमारे प्यारे एमपी वालों, थोड़े से कृपा करिए। फिलहाल ये गाना

0: अरे मौसम तो ऑसम वाला आया है, उम्मीद है कि शाम तक बारिश भी हो जाए, दो चार बूंदे धरती को सींच जाए, उसकी भी प्यास को बुझा जाए। फिलहाल अभी बुझाएंगे हम, नहीं बुझाएंगे नहीं, फायर मचाएंगे भाई, गाना ही ऐसा है पंडित जी की डिमांड पे। भाई सुनते हैं प्यारा सा गाना, और ये डिमांड हम तक आई हुई है लखनऊ से, आज पंडित जी हमारे लखनऊ है। एंजॉय द ट्रैक, गाना बड़ा प्यारा है, फ्रॉम द मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन। और मुझे मेरे भाई साहब याद आ गए, कुमार साहब का है भाई आज एमपी रीवा वाले, थोड़े से पानी इधर पहुंचा देते तो अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं।
1: धीरे धीरे चढ़े खुमारी,
0: सुनील यादव जी जो हमें दिल्ली से सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट सर आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर आपको मेंशन कर दिया गया चैट बॉक्स में। एंजॉय द ट्रैक। तेरा वार, क्या बात है।

भाई अगर दो धारी तलवार कोई है ना तो आप बड़े मजे में हैं और मजे काटते रहिए, क्योंकि भाई प्रमुख जी का कहना है पंडित जी लखनऊ में आम महोत्सव का मजा ले रहे हैं, तो आप मुझे लग रहा है उसी तलवार से आमों की कटाई कर रहे हैं। एंजॉय करते रहिए आप अपने आमों को, हम एंजॉय करते हैं इस गाने को। बहुत प्यारी सी डिमांड है, थैंक यू सो मच।

0: चाइल्डहुड फ्रेंड है लंदन से।
1: जी हाँ, और लंदन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई लखनऊ से बड़ी प्यारी सी डिमांड आई थी, माहौल बन गया, क्षमा बांध दिया, वेरी वेरी वेरी थैंक यू सो मच आपको। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। डिमांड बड़ी खास आई हुई है आरजे अमन जी, मैं सुन रहे हैं भाई बिहार से, तो भाई बिहार वाले बाबू के लिए उनकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा आप सभी तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, आपके अपने पसंदीदा फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा में। और आज इनकी डिमांड हम तक पहली दफा आई है, तो भाई बजाते हैं और आपको भी सुनाते हैं, खुद भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनका जो सॉन्ग सिलेक्शन होता है काफी उम्दा होता है। एंजॉय द ट्रैक दोस्तों।

हाँ जी श्रोताओं, तो भाई डिमांड तो बड़ी प्यारी थी और तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, भाई उससे पहले महसूस नहीं होता था। कहा इतना जवाब हमको खाली चाहिए आपसे, आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे आप लोगों के मैसेजेस की ओर। भाई पैगामात भी तो आए हुए हैं, हम भूल नहीं सकते, हमको सब याद रहता है। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आज सबसे पहला मैसेज हम तक किसने पहुँचाया है और क्या पहुँचाया है। तो भाई अगर हम चैटबॉक्स में जा रहे हैं तो हमको सबसे पहला मैसेज हमारे सुरेंद्र यादव जी का दिख रहा है, गौरा चौकी से, नीले वाले लिंक के साथ। भैया अच्छा है, नीला ड्रम नहीं है, सॉरी थोड़ा मजाकिया हूँ मैं। और नीना जी हैं, वो भी अपने नीले लिंक के साथ में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं क्या बोलूँ, मेरे दिमाग खुराफाती चल जाता है। हाँ, आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से। भाई ये एक खुद ही एक स्टार हैं और ये हमें सुनते हैं बिहार से। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है भाई, इन्होंने हमारा स्वागत कर लिया है। लिखते हैं वेलकम आकांक्षा जी, ओहो हो थोड़ी तारीफ कर दी है, थैंक यू सो मच। और कमल नैन जी हैं, आकांक्षा मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। और इसके अलावा प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी हैं। भाई पंडित जी, हमने आपसे 2 से 3 दफ़ा कह दिया है, आज फिर से एक शिकायत है, आप प्लीज़ राधे राधे कहा लिखा करिए, उसी बहाने हम अपने राधे रानी को याद कर लेते हैं। चलिए अपनी तरफ से आपको बोल देते हैं राधे राधे। हाँ जी, और नेक्स्ट मैसेज में है कुमार टेलर साहब। भाई हमने एक सवाल किया था जो हमें गौरा चौकी से सुन रहे हैं कि किसको कौन सा सोना पसंद है, तो इन्होंने बोला कि मुझे रात में सोना पसंद है। वैसे मैं मम्मी कहती हूँ मुझे हर जगह सोना पसंद, मैं जहाँ भी लेट जाती हूँ वहीं सो जाती हूँ। तो आपका और मेरा कुछ कुछ मिलता है लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता है, उम्मीद है पूरी तरह ना ही मिले, वरना आप भी सौकड़ों की उपाधियों से फिर नवाजे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ओके, तो फिलहाल आप तक नंबर पहुंच गया था और आपने कॉल भी कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गाना भी हमने प्ले कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे, ये मैंने अमन जी के लिए बोला था। और नेक्स्ट है हमारी प्यारी दरक्षा अंसारी जी फ्रॉम सीतापुर, गुड आफ्टरनून डियर गुलाब, वो कैसे हो आप, बिल्कुल आपके हार्ट्स और फ्लावर की तरह बहुत ही प्यारी हो, थैंक यू सो मच। और रामकृष्ण नंदन जी हैं हमें जो सुनते हैं इलाहाबाद से, गुड आफ्टरनून आरजे मैम जी, हाँ आपको भी बहुत प्यारी वाली शुभ दोपहरिया। इसके बाद आप लोग के फीडबैक्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे सबलू सावंत जी सांता क्रूज से जो हमें सुनते हैं मुंबई से। भाई सांता क्लॉज अगर आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा हमें आप सांता क्रूज से हमें सुन रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से, गुड आफ्टरनून आकांक्षा दीदी, ढेर सारा आशीर्वाद। और ये ज़रूर बताइएगा कि नेहा कैसी हैं। भाई हमारी नेह की देवी नेहा जी कैसी हैं, उनका हालचाल हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, मैं बाद में ज़रूर चेक करना चाहूँगी। इसके बाद में नेक्स्ट, आप लोगों को गाना काफ़ी पसंद आया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक्स दिख रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज में है हमारे सुनील यादव जी जो हमें सुन रहे हैं दिल्ली से, और इनके गाने की डिमांड आई है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तो जनाब आपने हमारी आवाज़ की भी तारीफ की है, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक्स, लेकिन सर रूल है कि ये फ़ोनी फरमाइशी कार्यक्रम है, आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको कॉलिंग नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर और नेक्स्ट मैसेज में आप सभी के मैसेज हैं आपस में काफ़ी खुराफाती हो गए आप लोग, कोई बात नहीं, क्लास ले रहे हैं ना अच्छे टीचर की, आज आकांक्षा की टाइप्स, तो भाई थोड़ा बहुत खुराफाती होना बनता है। दीपक जी ने भाई फीडबैक भेजा है, दो धारी तलवार, वाह क्या ज़बरदस्त गाना है, बेशक बहुत ज़बरदस्त गाना था, पूरा समय बन गई थी। अब्दुल मुजीम साहब हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, कफन में लिपटी एक खामोशी गूंजती रही, करबला की जमी पर हुसैन की सच्चाई बोलती रही। बिल्कुल, सच्चाई हमेशा बोलती है, उसको कितना भी आप दफन करना चाहो दफन नहीं होती, एक सच्चाई हजार झूठ को भी छोटा कर देती है। ओहो बहुत प्यारा सा कुछ आया हुआ मजाक, पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मन कर रहा चलो पढ़ ही देते क्योंकि आम का मौसम चल रहा है। सबलू सावंत जी लिखते हैं, यानी हमारे सांवरी बलम जी लिखते हैं, दो औरतें आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी, तभी अचानक पेड़ से एक पका हुआ आम नीचे गिरा, इससे पहले कि कोई कुछ बोलता आम खुद हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मैं इतनी देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा था, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। ओ माय गॉड, ये क्या था सबलू जी, खैर कोई बात नहीं मजाक था। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण नंदन जी हैं, लिखते हैं आरजे अमन की डिमांड पहली बार आई, फिर इनका सॉन्ग सिलेक्शन उम्दा होता है, आपको कैसे पता है, क्योंकि इन्होंने जब आरजे मनु के शो में सॉन्ग सुनाया था उस टाइम शायद आपने नहीं सुना था बहारे गज़ल में, तब मैंने इनके सॉन्ग को सुना था तो मुझे मालूम है इसी वजह से। अभी आप समझ गए ना रामकृष्ण नंदन जी। अभी आगे बढ़ते हैं और पायल की आवाज़ सबको बहुत अच्छी लगती है, अगर वही पायल की आवाज रात को 12 बजे सुनाई दे तो तो माँ कसम एक साथ सारे देवता याद आ जाते हैं। हाँ ये मंत्र आप ही दे सकते थे पंडित जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और इसके बाद में
नेक्स्ट मैसेज में है जी श्री राधे राधे आपको भी, और हमारे प्यारे मुकेश जी आ गए भाई। ये मुकेश जी नहीं, मुकेश अंबानी जी हैं, और ये चूंकि हमें दिल से सुनते हैं इसलिए हमने अंबानी अपनी साइड से ऐड कर दिया है। जो दिल का अमीर हो वो जाहिर सी बात है अंबानी से कम नहीं होता है। गुड आफ्टरनून डियर मैम जी। हाँ जी ओके, हाँ जी आप हमें आज लग रहा है थोड़ा जल्दी में आपने मैसेज टाइप किया है, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे लिसनर्स मैसेज के थ्रू बहुत कुछ कह जाते हैं। बिहार के बाद अमेरिका में प्यार का इजहार करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली रील काफ़ी वायरल भी हुई और सजा के तौर पे दोनों अंदर भी हो गए हैं। वैसे भारत में होता तो बोला गया है कि अगर इस दफ़ा कोई चढ़ता तो फिर से ढकेल दिया जाता, पर फिलहाल ये मिमिक्री और मीम्स में बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबलू जी। और प्रमुख जी लिखते हैं, आरजे आकांक्षा दीदिया आप बड़ी कंजूस कहलाती, ओहो थैंक यू, मुस्कानों का खजाना रख कर किस्तों में ही लुटाती हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम फुल टाइम हंसते रहें, शो कौन करेगा फिर? दो मीठे बोल सुनने में हम रोज तरस जाते, ओहो दो मीठे बोल सुनने को हम रोज तरस जाते हैं, रेडियो पर आते ही लेकिन सबके दिल मुस्कुराते हैं। थैंक यू सो मच, थोड़ी सी हंसी उधार दे दो, हम थोड़ी क्या आप आके हमसे पूरी ले जाओ भाई, हम कचा गए हैं सच के, हम थोड़ा दुखी होना चाहते हैं, हम दुख नहीं फील कर पाते, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वाला दुख है, थोड़ा सा अपनापन प्यार दे दो। ओके आपकी प्यारी आवाज से ही खिल जाता है हर संसार, ये कविता बस हंसी मजाक है, दिल पर मत लीजिएगा, हम जैसे श्रोताओं को यूं ही अपनी मुस्कान दीजिएगा। नेहा बिटिया भी नीक नीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही खुश रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा जी जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने हमें हाय भेजा है। हेलो सर, उम्मीद है कि आप भी कुशल मंगल होंगे के साथ होंगे, मतलब स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है अमित कुमार जी को, और अमित जी को सुनना है भाई 90s हिट से एक बहुत ही प्यारा सा गाना, बीवी नंबर 1 मूवी का, ये कौन सा म्यूजिक से पता ही चल गया ना, क्या ही बताएं, सुनिए एंजॉय करिए।

जी हाँ, और अमित जी की डिमांड के बाद अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है सब लोग सावन जी की मुंबई बोरीवली से, नहीं भाई सांता क्रूज से, और इस गाने को एंजॉय करेंगे। डिमांड अब बहुत सारी है, कुछ डिमांड छूटेगी बेशक छूटेगी, तो पहले से ही माफीनामा, मतलब मैं माफी मांग ले रही हूँ भाई, दिल मत छोटा करिएगा, कल फिर से डिमांड करिएगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, और इस गाने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपने प्यारे लिसनर राजेश मीना जी की। ओहो,

श्रोताओं, बाय स्टूडियो क्लॉक हो रहा है 9:39 यानी 11 मिनट शेष है और मैं चिंटू जी भी जुड़ चुके हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। भाई आप लोग के खुराफात चलते रहते, मेरे को मुस्कान आ जाती है। माय गॉड,

भाई हाई बीट के सॉन्ग चल रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है दो पल के लिए एक और हाई बीट ही प्ले कर देती हूँ, फिर आती हूँ। थोड़ा सैड वर्जन का सॉन्ग है उसको ले करके। भाई गाना बहुत ही प्यारा था, उम्दा था, सबलू सावंत जी, मजा आ गया। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है शहनवाज जी की ओर से, जो मैं सुनते हैं अहमदाबाद से। और गाना है हमारे प्यारे मुकेश अंबानी जी का, यानी हमारे प्यारे दिल से सुनने वाले लिसनर का सिग्नेचर सॉन्ग। एंजॉय द ट्रैक। भाई मूवी का तो पता नहीं, लेकिन गाना बहुत बढ़िया है। मूवी भी है भाई, दीवानी मूवी है, और गाना क्या है, कयामत कयामत कयामत, ओफ ये कयामत। 3 से 4 के सफर में एंजॉय करें आप अपने होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा के साथ में। आपका पसंदीदा प्रोग्राम फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

रुड़की उत्तराखंड से हमारे साथ में रीना शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं और मुझे उम्मीद है हमारे प्रेम मौर्य जी भी हमें सुन ही रहे होंगे। और हमारे पास में रोशनी जी का भी कॉल आ गया है जो हमें सुनती हैं लुधियाना से, लेकिन क्या करें भाई, वक्त की कमी के कारण हमने उनसे डिमांड ही नहीं पूछा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सो गई थी, मेरा गाना चला गया, कोई बात नहीं। फिलहाल और जिन जिनके गाने रह जाएंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है, शाम के शो गीत आपके नाम से मैं आप डिमांड कर सकते हैं। सुनील यादव जी प्लीज़ ये समझने की कोशिश करिए, रूल है हम बिना कॉल के सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। आई एम सो सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी।

और भाई एक पैगाम हम तक आया हुआ है, शहनवाज जी आपको अब्दुल मुजीन साहब ने सलाम भेजा है, तो उनका सलाम कबूल करिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। ये डिमांड हम तक आया हुआ है राजेश मीना जी की ओर से, चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और उसके बाद आएंगे नेक्स्ट ट्रैक लेकर के, जो कि आया हुआ है भाई किसी ने अपने दोस्त को याद किया है। मोहिनी तिवारी जी आपके लिए स्पेशली मेरा सबसे फेवरेट वाला सैड सॉन्ग मैं आपके लिए बजाऊंगी, और प्रिया जी के लिए इन्होंने, जो कि आज हमारे बीच शायद नहीं है, ये वही इनकी बेस्ट फ्रेंड है। आई एम सो सॉरी, ये मुझे अनाउंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ दोस्त को खोने का दर्द क्या होता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और इस ट्रैक के बाद जस्ट बाद मैं आपको एक प्यारा सा सैड सॉन्ग आप तक पहुँचाती हूँ। ओ माई गॉड, मैं खुद फील कर पा रही हूँ वो दर्द, पर प्ले तो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है आपके प्यारी फ्रेंड प्रिया के लिए। जी हाँ, वो डिमांड मैं लूँगी अपने अर्जुन वर्मा जी की जो हमें सुनते हैं, और सौम्या जी आपके लिए भी सेम सॉन्ग, क्योंकि आपने बोला था एनी सॉन्ग, मुझे लगता है सैड सॉन्ग भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो एंजॉय करते फिलहाल इस ट्रैक को।

0: राजेश मीना जी, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे मेरी प्रॉब्लम। मैं इसको और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज जो एक दोस्त के लिए एक दोस्त को की तरफ से गाना बजाना है मुझे, तो मैं ये गाना ज़रूर बजाना चाहूंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि आई हुई हमारे पास में मोहिनी तिवारी जी की ओर से उनकी फ्रेंड प्रिया के लिए, और ये गाना होगा हमारे अर्जुन वर्मा जी की पसंद का, और सौम्या जी आपके लिए भी सेम सॉन्ग। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो कि लास्ट डिमांड होगी। और माफीनामे में बता दे भाई, आज बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास में, आई एम सो सॉरी, और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माफीनामा में सबसे पहला नाम है निशा जी, मुमताज अंसारी जी, चांद बाबू जी का भाई गाना बहुत प्यारा होता है, उनके सिलेक्शन बहुत प्यारे होते हैं। कुमार टेलर साहब, आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, आपका भी गाना बहुत प्यारा था। और इमरान जी अहमदाबाद से मैं सुन रहे हैं, रईस साहब आप भी माफी दीजिएगा मैं। तो इतनी सारी डिमांड के बीच में हमारी रोशनी जी ने भी कॉल किया था, उनकी भी डिमांड आ जाएगी आज, कम से कम 8-9 गाने हैं जो छूट जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं इस प्यारी सी डिमांड की ओर, एंजॉय करते हैं। बाय बाय नहीं कहना है, अभी एक गाना और है। कुछ हमारे प्यारे लिसनर्स और जुड़ गए हैं, और कमल नैन जी आपसे भी माफी चाहूंगी मैं क्योंकि आपकी डिमांड भी मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। और रोशनी रावत जी जुड़ गई हैं, नमस्ते बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। चिंटू जी हैं और मनी शर्मा जी भी आ गए भटपुरवा से। मेरी भतीजी रिजा इरफान, आयत इरफान, आलिया फातिमा और अरीशा, और मेरी भांजी हानिया फिरोज, ये सब भी आपको सुन रहे हैं, इन सबका भी नाम मेंशन कर दीजिए। जी हमने कर दिया दरक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ओहो, ये आपका भी फेवरेट सॉन्ग है, रामकृष्ण जी का कहना भाई, ये इनका भी फेवरेट सॉन्ग है। फिलहाल मैं गुनगुनाना चाहूंगी,
1: उसने बुरा क्यों मानू।
2: आई मैं सिमरन बोल रही हूँ, अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू।
3: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। Simran, please pick up the phone. Please, Simran, please pick up the phone. Simran, please, meri baat samajhne ki koshish karo. Please, Simran, please.

और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं अशोक जी की डिमांड, और इसी के साथ लेती है आपकी आरजी आकांक्षा आप सभी से विदा। कल मिलेंगे आपके अपने इसी शो में, जी हाँ, कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में। ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और जिन जिन की डिमांड रह गई है कल फिर से आप डिमांड करिएगा, और अगर हो सका तो मैं आपकी डिमांड पहले लूंगी और आज जिनकी डिमांड हुई है उनको थोड़ा पीछे रख देंगे। हाँ भाई, हर दिन एक इंसान की डिमांड थोड़ी ले जाएगी, आपकी भी डिमांड जरूर कंप्लीट कीजिएगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कमरे की हो जाए कब तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल की हो।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके शाम वाले शो गोधूली में। और आप सभी को पता है कि गोधूली में जब भी हम आते हैं गोंडा की पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, और आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवानंद पांडे उर्फ नंदू, जो की प्रिंसिपल है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज उतरौला रोड गोंडा के। सर, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं, और दूसरी बात हम कहेंगे कि अपने बारे में आप एक संक्षिप्त सा विवरण हमारे श्रोताओं को दे दें।
4: मैं डॉक्टर शिवानंद पांडे, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मैं 1 अप्रैल 2024 से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हुआ हूँ। मैं मूल रूप से झारखंड राज्य के एक छोटे से स्थान है, पठारी प्रदेश है वो, नेतरहाट। बड़ी रमणीक स्थान है, प्राकृतिक दृश्य के लिए बहुत फेमस जगह है वो। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वही मेरा जन्म स्थान है, वहीं से हमारी स्कूलिंग शिक्षा शुरू हुई थी। इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आया था। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की डिग्री मैंने वहीं से लिया, BHU से, और उसके बाद PhD की डिग्री भी मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसी बीच मेरा सेलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, प्रवक्ता समाजशास्त्र के पद पर गोंडा में हो गया, और गोंडा आने के बाद फिर मैं यहीं कहा गया।
3: जी, तो आपने ये बहुत ही खूबसूरती से अपनी जो यात्रा है वो बताई। एक बार वापस से हम चलते हैं आपके पैदाइश की तरफ, क्योंकि आपने कहा कि आपका जो जन्म है वो हुआ था झारखंड में।
4: जी जी।
3: और अभी आप कई सालों से जो हैं वो गोंडा में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में सेवारत हैं।
4: जी।
3: इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली के बारे में, कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और पिताजी क्या करते थे।
4: मेरे बाबूजी वर्तमान में तो अब वो है नहीं, 2022-24 जनवरी गोंडा में ही उनका स्वर्गवास हो गया।
3: जी।
4: 90 साल की आयु में। वो ऑफिस स्टाफ थे वहाँ पर, नेत्रहाट में एक आवासीय विद्यालय है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय।
3: जी।
4: वो पुराने आश्रम पद्धति, जैसे पहले आश्रम पद्धति नाम सुना होगा आप लोगों
3: जी,
4: ने
3: जी, जी।
4: उसी तर्ज पर वो विद्यालय पर बच्चे रहते हैं, 7 हॉस्टल बने हुए हैं, जिसको वहाँ पर हॉस्टल को आश्रम कहा गया है।
3: जी।
4: 7 सीट है और 21 आश्रम वहाँ पर है। उसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। पहले वो बिहार राज्य में था, वहाँ पर उसका इंट्रेंस 2 एग्जाम होते थे, उसके बाद उसमें सिलेक्शन नाम लिखा जाता था।
3: जी।
4: बच्चे वहीं हॉस्टल में रह करके आश्रम में रह कर पढ़ाई करते थे। 6 महीने भी एक बार छुट्टी होती थी, 2 बार वहाँ पर बरसात की छुट्टी होती थी, क्योंकि वहाँ पर बारिश 2.5 महीने काफ़ी बारिश होते थे, गर्मी की छुट्टी वहाँ नहीं होती थी, और फिर जाड़े की छुट्टी होती थी। मेरे बाबूजी उसी विद्यालय में एज ए क्लर्क नौकरी किए, बाद में वो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत पा करके वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे 96 में, नवंबर 96 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था।
2: जी, ये आपने पिताजी के बारे बताया।
4: और माताजी हमारी हाउसवाइफ थी
2: जी,
4: और बेचारी वो पढ़ी तो नहीं थी मगर हमेशा ये कहती थी पैर हाथ धुल के शाम में, बाबू हमारे यहाँ लोग बच्चों को भैया नहीं बाबू कहते हैं, बाबू पैर हाथ को धुल करके पढ़ने कुर्सी टेबल पर बैठ जाओ। अपनी भाषा में भोजपुरी बोलते थे, वो ये नहीं जान पाती थी कि आप क्या पढ़ रहे हो कुर्सी टेबल पर उन्हें ये पता है कि हमारा बच्चा ये पढ़ रहा है। 8:30 बजे फिर खाने के लिए बुलाती थी, जो भी खाना बना होता था खाते थे, फिर कहती थी सो जाइए, फिर सुबह सुबह आपको स्कूल जाना होता है। तो ये हमारे माता पिताजी की बात हो गई। अब हमारे वर्तमान समय मेरी माताजी का भी स्वर्गवास हो चुका है 2015 में, वो भी हम सब जो भी भाई बहन है सबको छोड़ के चली गई। मैं 2 भाई हूँ, एक भैया हमसे काफ़ी बड़े हैं, करीब लगभग 20 साल बड़े हैं, वो 69 ईयर ओल्ड हैं और वो बनारस में रहते हैं। हमारी 3 बहनें हैं, 3 बहनें में एक बड़ी दीदी जो बनारस में रहती हैं, ये भी हाउसवाइफ है, शिक्षित हैं, मास्टर डिग्री किया हुआ है उन्होंने भी
2: जी,
4: मगर हाउसवाइफ है। 2 बहनें और भी हैं, एक रहती है झारखंड रांची में, जिसके हस्बैंड आर्मी में GCO पद पर हैं कार्यरत अभी वर्तमान में, और एक और जब सबसे छोटी बहन है वो भी रांची में ही रहती है और वहीं पर डोरंडा PG कॉलेज है, वहीं पर वो फैकल्टी मेंबर है। यही मेरे परिवार में है और मैं तो आपके सामने हूँ, बता ही रहा हूँ।
2: बेशक बेशक, तो क्या बात है, हमने फैमिली के बारे में पूछा और आपने विस्तार से बताया पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, भाई के बारे में, बहनों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं स्टडी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जैसा कि बाकी भी अपने गेस्ट से सेम सवाल करते हैं, क्योंकि ये सवाल ही इतना बड़ा और इतना अहम होता है कि हर बच्चे का अपना एक सपना होता है कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, क्या करेगा। आप भी जब 12th में रहे होंगे, 10th पास आउट किया होगा, उस दौरान बहुत सारे सपने आपने भी बुने होंगे। उन सपनों में क्या सपना था, एक टीचर बनने का ही सपना था, या एरोप्लेन उड़ाने का पायलट बन करके, या आर्मी में जाने का, या बिजनेसमैन बनने का, या मूवीज देख करके एक्टर बनने का, सपना क्या था आपका?
4: इंटर तक की जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण किया है वहां पर मास मीडिया का इतना प्रचार प्रसार नहीं था उस समय। मैंने 91 में इंटर की परीक्षा पास किया है
2: जी,
4: और उसी समय शायद हमारे घर में भी एक ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी TV लगी थी, बड़े एंटीना लगा होते थे, बूस्टर लगा होता था, जो DD1 जो नेशनल TV चैनल होते थे वो केवल आते थे। सपना था, ये जरूर सपना था कि कुछ अच्छा करें, परिवार का साथ साथ अपना सबका नाम रोशन करें। उस समय बस एक चीज ये लगता था, और भी लोग जो अगल बगल वाले जिसको मैं भैया के रूप में कहता था, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, IFS थे, कोई IPS था, कोई IAS था, ये लगता था कि मुझको भी UPSC संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी है और मुझे भी उसको क्वालिफाई करना है। ये पता था उस समय ही इंटर की परीक्षा देने के बाद कि इसमें 3 स्टेज के परीक्षाएं होती हैं, एक PT होता है, उसके बाद मेंस होगा और फिर इंटरव्यू फेस करने के बाद सिलेक्शन होता है। परीक्षा भी दिया ग्रेजुएशन के बाद, मगर उसमें सफलता मिल नहीं पाई, कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रही होगी, ढंग से उसकी तैयारी नहीं कर पाया होगा, जिसके कारण उसमें सफलता नहीं मिल पाई। और टीचर बनने का कोई सपना लेकर के पढ़ाई शुरू नहीं किया हुआ था, ये जरूर था कि मुझको जॉब करना है, नौकरी हमें सरकारी नौकरी जरूर करनी है। अब वर्तमान समय में अब वैसा चीज़ नहीं रहा, अब लोगों के पास बहुत से विकल्प हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, मगर मैं जब हाई स्कूल पास किया था 89 में, उस समय ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। एक मन में था कि मुझको सरकारी नौकरी करनी है, और पढ़ाई पढ़ता भी रहा और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसमें इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो बहुत जगह दौड़ना नहीं पड़ा, बहुत पापड़ तो नहीं मिलना पड़ा। तो मुझका और कोई मैं इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझको पढ़ाई के बाद बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ा हो, ऐसी स्थिति मेरे साथ नहीं आई थी।
2: ओके
4: हाँ, जैसे PhD सबमिट किया मेरा ये सिलेक्शन हो गया था उसके पहले ही
2: जी। तो आपने पहले सिविल सर्विसेज में आने का सोचा था, जो आपका ख्वाब था।
4: हाँ।
2: आपने अटेम्प्ट भी किया और आपने ये माना भी, एडमिट किया कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो रह गई।
4: हाँ, कमी रह गई होगी हमारे, मैंने जो रूपरेखा बनाया हुआ था तैयारी करने का, पढ़ने का, कुछ ना कुछ कमी थी
2: जी,
4: जिसके कारण सफलता नहीं मिल पाई
2: जी। तो चूंकि आपने तैयारी भी की और आप उसमें उस दौरान सफल भी नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में ही आए और टीचिंग का कार्य आपने किया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना वक्त दिया तैयारी की। अभी ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त सिविल सर्विसेज में आने की सोच रहे हैं, उनको भी आना है और उनका भी सपना है। उन बच्चों को देखते हुए आप अपने दौर में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उससे और आज के सिनारियों को मिला करके आप किन किन चीजों को आज भी मानते हैं कि अगर ये चीजें कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसको बताएं।
4: सबसे पहले कोई भी कंपटीशन हो, जो बुक्स होते हैं सबसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, अगर एनसीईआरटी को सबसे नीचे से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, जैसे क्लास सिक्स का पढ़ करके देखें समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज होते हैं जो लोग रियल में नहीं जानते, उसमें शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए कि अच्छा छः या सात का मुझको नहीं आता है
2: जी,
4: छः का पढ़े, सात पढ़े, आठ पढ़े, ऐसे हाई स्कूल लेवल तक जो 12 तक है अगर व्यक्ति पढ़ लेता है तो लगभग 50% तो तैयारी लगभग हो जाती है, पर उसको ढंग से पढ़ना होगा। एक बार पढ़े पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, फिर उसी चैप्टर को फिर दूसरी बार पढ़े, जितना अंडरलाइन किए हैं उसके अलावा भी फिर कुछ नई नई चीजें उसमें दिखेंगी। जब दो या तीन बार जब पढ़ते हैं चैप्टर को, हर एक बार पढ़ने में कुछ एक दो चीज नई मिलेगी
2: जी,
4: तो इससे क्या होगा पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा फिर। दूसरी चीज करंट इवेंट्स के लिए अब तो बहुत सी चीज उपलब्ध है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, मोबाइल है, सबके पास, सबको मिलते रहते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम भी हैं। आप किसी भी सरकारी ऑफिस या कहीं जाते हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये सब की जानकारी आसानी से सुलभ है। जैसे आपके यहाँ जैसे अभी FM चल रहा है, बीच बीच में ऐड आता रहता है, कुछ कुछ जानकारी दी जाती है, अब ये आसानी से सबको मिलता है। अगर तैयारी इस ढंग से किया जाए तो शायद निश्चित रूप से व्यक्ति सफल जरूर होगा। और रही बात इंटरव्यू देने की, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा कुछ सीकनेस होता है, क्योंकि बोर्ड में 4-5 मेंबर्स होते हैं और आप अकेले होते हो, सब लोग मिल करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग से कोई तैयारी कर लेना चाहिए कि वो सीकनेस या जो अंदर से एक डर बना रहे वो खत्म हो। और जिसकी तैयारी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो सब जगह जवाब अच्छे से दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी
2: जी। तो पहली चीज तो आपने कहा कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपका सिलेबस आपको उस पे पकड़ होगी
4: जी।
2: एंड इसके अलावा आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो एक इंटरव्यू की स्पेशली अगर बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा डर होता है
4: जी,
2: कि इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉक एक जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इससे पहले भी कई बार जो बच्चे क्रैक कर लेते हैं वो अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस किया और उस तरह से किया कि मानो वो चीज पहले ही वो फेस कर रहे हैं, दसियों बार कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो माइंड होता है, और सारा चीज हमको पता है कि ये माइंड का गेम होता है, तो ये डराता है, लेकिन उसी डर को खत्म करने के लिए आप 10 बार 20 बार जितनी बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस माहौल को बना करके क्रिएट करके, तो कहीं ना कहीं वो डर उस लेवल का नहीं होता है, खत्म हो जाता है,
4: खत्म हो जाएगा जी।
2: बेशक बिल्कुल बहुत सही आपने कहा, और ऑफ कोर्स आपने जो बात बताई है वो हमारे श्रोताओं के काम की बहुत ज्यादा है। अपने हम श्रोताओं से कहेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट से कहेंगे जो इस वक्त इस शो को सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आपकी दिनचर्या का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरी बात रिविजन होना चाहिए, और तीसरी बात प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेशक सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चूंकि आपने बताया कि भाई आपकी स्टडी कैसी रही, इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि जिस दौरान आप तैयारी कर रहे थे उस दौरान आप खुद को किस तरह से मोटिवेट रख पा रहे थे, क्योंकि आपकी भी एज उस वक्त ऐसी रही होगी कि बहुत सारी चीजें करने को मन करता है, बहुत ज्यादा आगे जाकर के दुनिया एक्सप्लोर करने का मन करता है, लेकिन साथ ही साथ उसी वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आप किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो उसको पाना भी होता है, और अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो चीजें फिर लाइफ टाइम के लिए शायद वो चीजें अचीव नहीं हो पाती है टाइम से। इसको लेकर के आप बताइए कि आपने खुद को कैसे मोटिवेट करे रखा।
4: मैंने तो पढ़ाई साथ साथ पढ़ाई करता रहा, केवल तैयारी के लिए मैं समय को बर्बाद नहीं, तैयारी कर मतलब कह करके कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स था, 92 में एडमिशन लिया था, 95 तक, 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 97 में मास्टर डिग्री किया वहाँ से। मैं उस बीच बीच और तैयारी पढ़ाई सब्जेक्ट्स के अलावा जो कोर्स में पढ़ाई करनी होती थी मैं अलग से पढ़ता रहता था, मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था, इतने देर क्लासेज करने हैं, उसके अलावा पर डे सेल्फ स्टडी, जिसको स्वाध्याय भी कहते हैं, हमें अलग से 3 से 4 घंटा पढ़ना है
2: जी।
4: और 24 घंटे में उसको मुझे निकालना है कि जैसे भी मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने बनारस में आने के बाद मैं हॉस्टल में रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ में अलग अलग प्रकार के दोस्त लड़के अगल बगल होते हैं, कोई कहता है देर तक सोने के लिए, कोई कहता है जल्दी। उस बीच में अपने अनुसार सेट किया हुआ था कि सुबह 3:30-4 में जाग जाएं, उस समय हमें कोई डिस्टर्ब ना करेगा, 6:30-6 तक मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। मैंने तो अपनी जो रूटीन दिनचर्या बना रखी थी वो सही थी, व्यवस्थित भी थे, मगर सफलता ना मिलना कहीं ना कहीं उस दिनचर्या में कुछ तो कमी रही होगी, मैं इस चीज को मानता हूँ।
2: बेशक, लेकिन ये कहते हैं ना कि एक्चुअल में जिंदगी का जो उद्देश्य है वो किसी एक चीज को ना पा के वहां रुक जाने में नहीं है,
4: नहीं।
2: आगे बढ़ जा करके दूसरी चीजों को तलाश करके उसको पाने में, जो कि आप बखूबी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये तो रही पढ़ाई की बात, इसके अलावा हर बच्चे की अपनी हॉबी होती है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा होता है, कोई हो सकता है एक्टिंग करता हो, कोई हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा होता हो, आपका अगर कुछ ऐसा रहा हो कोई एक्टिविटी?
4: मेरे साथ मेरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी, मैं खेल में मुझे ज्यादा मन लगता था
2: जी।
4: बारिश के दिनों में जुलाई महीने से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक फुटबॉल खेलता था।
2: ओके।
4: और इंडोर गेम्स में बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज, ये सब खेलना पसंद करता था, और इसमें पूरा टाइम मेरा इंगेज हो जाता था, जो मुझको इंटरटेनमेंट जितना गेम से मिलना चाहिए था वो मुझे मिल जाता। उसके अलावा और भी मेरे में कोई ये नहीं था, पेंटिंग के कोई शौक नहीं था, गाना नहीं गा सकता था, तो इस चीज़ को करके पूरा कर लेता था। पढ़ाई के अलावा खेलता था जरूर, नहीं खेलने पर लगता था कि आज कुछ हमारा छूट गया, कुछ कमी है हमारे में, तो शाम के समय खेलना बहुत जरूरी होता है, कोई काम नहीं खेलना जरूरी है 2 घंटे।
2: क्या बात है भाई, तो ये वैसे भी सही कहा गया है कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, तो नवाब बनना है तो पढ़ना भी पड़ेगा और खेलना भी पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जिस तरह से आपने कहा कि आप आउटडोर गेम्स भी खेलते थे और इंडोर भी गेम्स खेलते थे, तो एक तो मेंटल एक्सरसाइज होती थी आपकी, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, और एंटरटेन तो हर इंसान को वैसे होना ही होना होता है, ये बहुत अच्छी बात है। So, अब इसके बाद जो है भाई, वो हम ये आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपकी करियर की शुरुआत एक्चुअल में कहां से हुई, फर्स्ट ज्वाइनिंग कहां पे आपकी हुई, कैसा रहा अनुभव, ये सारी बातें करेंगे, एंड उसके बाद और भी बहुत अहम क्वेश्चंस हैं जो हमें आपसे करने हैं। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का। सो आइए श्रोताओं, ब्रेक के उस पार वापस से मिलते हैं, और आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: वन और 8840-098-123 मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज उत्तरौला रोड गोंडा की प्रिंसिपल डॉक्टर शिवानंद पांडे उर्फ नंदू जी। एक बार वापस से हम आपका वेलकम करते हैं। और जाने से पहले हमने आपसे सवाल किया था कि भाई आपसे ये पूछेंगे आने के बाद कि आपकी पहली जॉब कहाँ लगी, यानी आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई, प्लीज इसके बारे में बताइए।
1: मेरी करियर की शुरुआत सर्वप्रथम आज मैं जहाँ पर जिस पद पर कार्य कर रहा हूँ जिस कॉलेज में, यहीं पर एज ए लेक्चरर के रूप में यहीं से मैं प्रारंभ किया शिक्षा। जैसे पीएचडी मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैं लिखने का कार्य कर रहा था, उस बीच मेरा 2001 में यहाँ सिलेक्शन हो गया था। मैं ज्वाइन करने में थोड़ा देर किया, 2003 में आकर के यहाँ ज्वाइन किया। मेरी कैरियर की शुरुआत इसे इंटर कॉलेज के लेक्चर से शुरू होती है, इसके पहले मैंने कोई भी जॉब नहीं किया था।
0: ओके, यानी आपकी जो पहली जॉब की शुरुआत है वो इसी कॉलेज से हुई थी।
1: जी जी,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने तो काफी वक्त दे दिया इस कॉलेज को, ये कह सकते हैं।
1: जी जी, 21 लगभग 21 साल पूरा हो चुका है।
0: 21 साल पूरा हो चुका है। 21 साल का अगर कोई बच्चा होता है तो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है।
1: हो सकता है और एक जिले को संभालने की योग्यता रखता है,
0: बेशक
1: यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है 18 साल के बाद।
0: बेशक बेशक, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये जानकर कि एक सवाल और था कि ये स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ, कब बना ये स्कूल?
1: ये हमारा स्कूल 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1973 से इसको ग्रांट इन एड मिल गया था, मतलब पैसा सरकार देने लगी थी, सरकार ने अपने ले लिया था।
0: ओके,
1: उस समय से ये स्कूल चल रहा है। उस समय ये ग्रामीण सुदूर क्षेत्र था, वहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न था। आज भी शिक्षा का स्तर इतनी सब व्यवस्थाएं होने के बाद भी बहुत अच्छी नहीं है।
0: ओके,
1: ये 1967 एस्टेब्लिश है।
0: 1967 यानी 50 प्लस तो सीधे सीधे साल हो गए।
1: जी जी,
0: तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतना पुराना कॉलेज आप रन कर रहे हैं। इसके बाद चूंकि आपने बताया है कि भाई आपने इतना वक्त दिया है, आपने इतना टाइम दिया तो उस दौरान कुछ सीखा होगा, कुछ तो लर्निंग रही होगी।
1: जी,
0: तो अगर आप कोई एक दो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहे, कुछ सीख जो आपको मिली अब तक कार्य के दौरान।
1: मैंने एक एज ए लेक्चर जब यहाँ ज्वाइन किया तो मुझको सबसे जो सीख मिली है कि जो भी अध्यापक रूप में जो भी अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें सीमित होकर और नियमित कक्षाओं में जाना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे आपसे इंटरेक्ट हो जाएंगे तो आपको इंतजार करते हैं, मगर आपके सम्मान में वो आपको बोलने नहीं आ पाते हैं कि सर जल्दी आ जाइए। समय पर जाना चाहिए, और अगर क्लास में समय पर जाकर पढ़ाया जाता है खड़े होकर, इंट्रैक्शन बच्चों से, एक एक बच्चों से, किसी को आता है किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है, तो वैसे में क्या होता है कि बच्चे इंतजार करते हैं और जब घंटे लगती है तो अफसोस करते हैं कि अब सर चले जाएंगे और कुछ ही हमें बताते। एक तो ये चीज़ सीखा। दूसरी चीज़, कभी भी वर्क प्लेस पर लेट नहीं जाना चाहिए, समय पे जाना चाहिए। और अगर आवश्यकता है, संस्था में आपकी आवश्यकता है, समय पूरा होने के बाद भी अगर आवश्यकता है तो रुक करके उसको पूरा करना चाहिए। उस कहीं ना कहीं उस संस्था के जब जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अगर नाम होगा तो उसमें आपका भी नाम होगा, इस भावना से कार्य करना चाहिए।
0: बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है वो ये रही है कि कोई भी टीचर हो उसको संयमित और नियमित दोनों होना चाहिए, और कहीं जहां जरूरत है बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम की, एक्स्ट्रा केयर, तो वहां पे उनको थोड़ा सा समय और भी निकालना चाहिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण असल में ये पद होता है। एक टीचर कहते ना कि ये सुनार होता है, ये तो सारे सोनों को गढ़ता है, और ये बिल्कुल सच है कि एक टीचर किसी को कुछ भी बना सकता है। तो टीचर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी होने के साथ बहुत जिम्मेदारी की बात है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। अब आते हैं दरअसल एक्चुअल में आपके ही सवाल की तरफ, चूंकि अभी आप प्रिंसिपल हैं। एक जनरल मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल बनने के लिए क्या कुछ सालों का अनुभव चाहिए होता है?
1: जी, उसके लिए कुछ अनुभव आवश्यक होता है। ऐसे तो 4 साल लेक्चर का अनुभव होना ही आवश्यक है, मगर मेरा मानना है कि केवल 4 साल के लेक्चर के अनुभव से प्रिंसिपल कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण अनुभव वाला नहीं हो सकता है। इसमें 8

0: 10 साल अनुभव जरूरी होता है, अनुभव बहुत मायने रखता है प्रिंसिपलशिप को चलाने के लिए। तो ये 4 साल का हम लोग के जो आयोग बने हुए, आयोग का जो गठन है उसमें लेक्चरर के रूप में 4 साल का अनुभव होता है, ये आवश्यक किया गया, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं प्रधानाचार्य पद के लिए।
1: ओके, तो आपने कहा कि कम से कम यानी न्यूनतम 4 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए
0: जी।
1: ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके अलावा चूंकि अब आपने बताया कि आप प्रिंसिपल हैं और अभी आपने हाल ही में ज्वाइन किया हुआ है प्रिंसिपलशिप के लिए, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक प्रिंसिपल का इंटर कॉलेज के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या आपका दायित्व होता है?
0: सबसे पहला दायित्व तो हमारा ही है कि बच्चों का 100% नामांकन हो जाए, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि किसी धन के अभाव में या कॉम्बिनेशन गैप के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो, इसको जरूर ध्यान देना होता है। अगल बगल अगर कोई व्यक्ति बताते भी हैं कि ये बच्चा आना चाहता है, इसके पास पैसे का अभाव है, तो वैसे में उसके लिए पैसे फीस की व्यवस्था की जाती है। और 100% नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अपने आप से एक वचनबद्ध रहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर जो पढ़ना चाहता हो, अशिक्षित ना हो, शिक्षित हो जाए। दूसरी चीज, विद्यालय स्तर पर पठन पाठन मुख्य रूप से उपयोगी होता है। पठन पाठन जब तक नहीं होगा बच्चे विद्यालय में फिर करेंगे क्या? जो भी हमारे हैंड्स होते हैं अध्यापक के रूप में, फैकल्टीज के रूप में मीटिंग करके उनको ये बताया जाता है कि बच्चे को अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक बात ऐसे बताए जिससे उनका मन भी लगे और उसी बात बात में वो शिक्षित भी हो जाए, शिक्षा का स्तर भी उनका अच्छा हो जाए, पढ़ने के प्रति उनमें जागरूकता हो जाए। जब शिक्षण कार्य चलेगा तो आधी समस्या कॉलेज की सही होने लगती है। बाकी रही बात सूचनाओं का आदान प्रदान, वो ऑफिस स्तर से कार्यालय होता है, ऑफिस स्तर से होता है। हमारा मेन ये उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षित कर ले और गुणात्मक शिक्षा दिया जाए कि उनको फिर रोजगार मिलने में दिक्कत नहीं हो, रोजगार परक शिक्षा हो, उनको जानकारी दी जाती है, कोशिश किया जाता है। अब तो सप्ताह में एक दिन हम लोग ने बाल सभा का आयोजन कराया होता है शनिवार के दिन, उसे बच्चों से सभी क्षेत्र में बात की जाती है सामूहिक रूप से, माइक दे दिया जाता है, वो कुछ बताते हैं, कुछ इधर से पूछा जाता है, इससे एक दूसरे में थोड़ा सा जागरूकता भी आती है कि हमें भी बताना है। और बीच बीच में उन लोगों को पुरस्कार दे दिया जाता है, किसी को चॉकलेट दे दिए, टॉफी दे दिए, तो और बच्चों में ये उत्सुकता आती है कि नहीं अब हमें भी ये काम करना है, पढ़ना है, मैं भी अगर उत्तर दूंगा तो मुझको भी ये पुरस्कार मिलेगा। इस उद्देश्य से किया जाता है कि लोगों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ जाए। ये कर रहा हूँ, ये अभी सही लग रहा है मुझको
1: जी। तो बाल सभा, जैसा कि अभी आपने इस टर्म का इस्तेमाल किया है कि बाल सभा आपके यहाँ कराई जाती है, जिसमें शनिवार को बच्चों को एक कॉमन एरिया में बुला लिया जाता है, एक साथ सारे स्कूल के बच्चे होते हैं और अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। ये इनिशिएटिव सभी इंटर कॉलेजेस में मैंडेटरी होता है, करना ही होता है, या आप लोग का एक अलग एक पहल है?
0: लगभग इस बार एक आया हुआ है सरकार की तरफ से, एक शेड्यूल आया हुआ है इंटर कॉलेजेस के लिए, उसमें एक हुआ, एक पंख कार्यक्रम चला हुआ है। अभी गोंडा जनपद में मात्र 3 कॉलेज हैं जहां पर पंख कार्यक्रम, यह है हौसलों की उड़ान कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम चलाता है, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोग्राम है।
1: Okay.
0: सरकार ने इसे लागू किया है हमारे गोंडा जनपद में, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज में ये चलता है
1: जी,
0: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा में चलता है, और तीसरा मेरे कॉलेज स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में चलता है। इनका शनिवार का पूरे दिन का शेड्यूल बना हुआ है, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें 2 नोडल टीचर होते हैं हर एक संस्था में, वो उसको संपादन कराते हैं। तो बाकी बच्चों के लिए उस दिन बाल सभा इसलिए करा दिया जाता है, बाल सभा में थोड़ा उनको अलग लगेगा कि आज हमें लिखना पढ़ना है, वो बोझ नहीं है कि ये करो वो करो, स्वतंत्र रहेंगे और उसी एक साथ बैठे बैठे बहुत चीज सीखने का अवसर मिलेगा, कोई भी टॉपिक के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, कोई कहानी सुना रहा है, कोई कविता पाठ कर रहा है, कोई, इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो हिचक भी है वो भी खत्म हो जाएगी, साथ में थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो जाए करेगा, इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। अभी तो एक ही शनिवार मिल पाया है, जो पिछले शनिवार 7 तारीख को अपने यहाँ गोंडा जनपद में पूरे मतलब देश में सीटेट की परीक्षा थी, तो पिछले जो 6 तारीख को हुआ था उसमें नहीं हो पाया था, 6 जुलाई को ये संभव नहीं हो पाया था, मगर हर एक शनिवार को ये किया हुआ है, शेड्यूल टाइम टेबल में बनाया हुआ है
1: जी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बच्चे जब खुद से बोलेंगे, खुद एक दूसरे को उनसे बातचीत करेंगे या मौका देंगे तो उनकी लर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि वो ऑल टाइम तो ऐसे लेक्चर सुना ही करते हैं, वो क्लासेस लेते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जहाँ पे वो आगे आए, उनकी लीडरशिप हो, उनका अपना ओपिनियन हो, ये बहुत अच्छी बात है। पंख के बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि जो बता रहे हैं कि एक स्केड्यूल जारी किया गया है, यहाँ 3 इंटर कॉलेजेस में इसको फॉलो भी किया जा रहा है, तो पंख किन बच्चों के लिए है और उससे किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया?
0: पंख जो कार्यक्रम है ये केवल कैरियर गाइडेंस के लिए है और इसका मात्र उद्देश्य आगे की कैरियर का निर्धारण करना, क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हो। अभी वर्तमान में जब पिछले साल शुरू हुआ था, 3 कॉलेज को हमारे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुखिया होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक इसको DIS करते, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उनके द्वारा 3 विद्यालय का चयन किया गया था, मगर इस सत्र से ये आया हुआ है कि सभी विद्यालयों में पंख के कार्यक्रम लागू होंगे। इनके अपने हैंड्स होते हैं पंख के, वो बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से सूचना देते रहते हैं कि ये कार्यक्रम करा लीजिए। ये मात्र केवल कैरियर गाइडेंस के लिए है, इसको कहा गया हौसलों की उड़ान के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं पर हौसलों की उड़ान बच्चों में अगर भावना है, ये पंख ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा इसको पूरा किया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका है, अभी तो मात्र 1 साल ही शुरू हो पाया, 6-7 महीना चला है, इस सत्र में शायद ये और भी अच्छी तरह से कारगर सिद्ध हो।
1: तो आपको क्या लगता है, ये पंख कार्यक्रम सच में ये साबित होगा जिस उद्देश्य से आया है?
0: इसका मेन ये प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, इन्होंने सब जगह अपने हैंड्स लगा रखे हैं
1: जी,
0: अलग अलग पद के अनुसार वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि होमवर्क क्या किया दिखाओ हमें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजो, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति, जिस तरह इन्होंने मॉनिटरिंग करना शुरू किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर सभी क्षेत्रों में इस तरह का काम शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का, देखरेख का अभाव है, ढंग से वो नहीं हो पा रहा है, तभी वहाँ पर सफलता नहीं मिल पा रही।
1: मतलब आपके कहने का मतलब, अगर इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाया जाए तो बच्चों पे ना सही, एक साथ सारे बच्चों पे, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं असर दिखना शुरू हो जाएगा।
0: नहीं, ये बच्चों का जो ये कार्यक्रम हुआ था, इनकी जो मेन पूरे भारत की जो मेन डायरेक्टर है, कलकत्ता में इनका बना हुआ है, वहां से आई थी
1: जी।
0: मैंने हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम भी हुआ था फरवरी महीने में, फरवरी 24 में, तो उस कार्यक्रम के बाद जिन बच्चों को रखा गया था उन लोगों ने बैनर पोस्टर या जो भी चीज करना वो खुद बच्चे ने बनाया था। एक बच्चों में ये आया कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मुझको ये काम करना है, और जो उनके गेस्ट्स आए थे वो सबके सामने उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावना आई कि मुझको जो भी मैंने बोला, अगर कुछ मुझ में कमी भी है, कुछ गलती भी बोला, तो मुझको बकअप किया गया, इस कारण उसमें और भी मन लगा रही हैं। जैसे हम लोग तो एक अपने सिलेबस में बंधे हुए हैं, उस सिलेबस को फिलफिल करना है, उसको पूरा कराना है, परीक्षा होनी है, पर ये पंख प्रोग्राम जो है ये कहीं ना कहीं अच्छा सिद्ध हो रहा है लोगों के आगे विकास में, और भी प्रतिभा को चतुर्मुखी विकास में, प्रतिभा के ये अच्छा सिद्ध होगा
1: जी। तो जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं कि भाई चहुमुखी विकास
0: जी,
1: इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगला जो हमारा सवाल है वो आपसे ये है, क्योंकि इंटर कॉलेज है आपका, और जो एज होती है बच्चों की फर्स्ट ईयर इंटर में या ट्वेल्थ में, किशोरावस्था होती है, जिसे हम टीन एज कहते हैं, और कहते हैं बहुत सेंसिटिव एज होती है। होता क्या है कि बचपने से निकल करके जवानी की तरफ आना, उस बीच का जो ये एक फेज होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चों में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, तो इस तरह से इस सेंसिटिव एज को देखते हुए, चूंकि आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो किस तरह से आप उन बच्चों को स्पेशली गाइड करते हैं सामाजिक तानो बानो को समझाने के लिए, या उनके लिए बेहतर चीजें क्या है, किस तरह से मिसगाइडेड होने से आप और आपका स्टाफ उनको हेल्प करता है?
0: ये ऐसी टॉपिक है जिसमें कॉलेज के सभी एम्प्लॉईज, जितने भी एम्प्लॉई हैं, सभी लोगों को पूरे समय सक्रिय रहना पड़ता है, चारों तरफ नजर रखना पड़ता है, और कोशिश की जाती है बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से या जो प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर कोई टीचर के द्वारा बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह का कपड़ा ड्रेस में पहन के आना चाहिए, जो ड्रेस निर्धारित है उसको ही पहन के आना चाहिए, तरह तरह की बातें को शिक्षा प्रद शिक्षा के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ स्टाफ के करीब 5-6 अध्यापक कैंपस में इंटरवल में भी बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि चारों तरफ बच्चों पे नज़र रखना होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, जब इंटरवल है तो कुछ खाएंगे, कोई खेलेंगे, कोई उसमें बात करेंगे, तो नज़र रखने के उद्देश्य से कोशिश किया जाता है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई असहज स्थिति नहीं हो। और हमारे यहाँ एक महिला लेक्चरर भी है, उनको विशेष रूप से कहा गया है कि कुछ फीमेल्स की समस्याएं होती हैं
1: जी,
0: जो हमेशा आते रहती हैं, उनके लिए उनके पास सब चीज़ की जो भी आवश्यकता है सब रखा होता है, और किसी प्रकार का नहीं रजिस्टर है, वो बस रजिस्टर अपना एंट्री करेंगे, उनका जो भी समस्या हो वो फुलफिल कर दिया जाता है। अब प्लस फर्स्ट रेट भी रखा जाता है, कभी अगर गिर जाए, स्लिप हो जाए, तो अपने स्तर से तो शायद हमें लग रहा है कि इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती हैं, और पढ़ाई के माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि क्या है। और रही बात शासन स्तर के, बीच बीच में एंटी रोमियो टीम होती है सभी जिले में, इनको बुलाकर कार्यक्रम करवा दिया जाता है लड़कियों के बीच में कि आप किसी प्रकार का कोई हिचक मत कीजिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कोई सूचना देते हो, कहीं आपको समस्या होती है तो आपकी गोपनीय रखी जाएगी। उसके अलावा ये जो ह्यूमन ट्रैकिंग होता है, मानव तस्करी
1: जी,
0: इनकी भी टीम आती है कॉलेज में, इनका भी अभी मैं परसों कार्यक्रम कराया हूँ। उसके अलावा महिला कल्याण से संबंधित वो कार्यक्रम कराता रहता हूँ। इसका मेन उद्देश्य है उन बच्चों को, खास करके जो टीन एज के हैं, इन लोगों को जागरूक किया जाए, उन लोगों में जागरूकता है कि नहीं, मैं कहीं पर भी असहज स्थिति अगर होती है तो मेरे लिए बहुत से हैंड्स है, तुरंत हमारे पे हमें सहायता मिलेगी, इस उद्देश्य से काम कराया जाता है। और कुछ बातें महिला शिक्षिका को अलग से लगा दिया जाता है कि आप अलग से जाकर इस टॉपिक पे बात कीजिए, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, केवल आप अकेले रहोगे और लड़कियाँ रहेंगी, और लड़कों को भी बताया जाता है। तो अभी तक तो स्थिति ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों ने 9th क्लास से ही सेक्शन बदल देते हैं, एक सेक्शन लड़कियों का कर दिया जाता है, एक सेक्शन लड़कों का किया जाता है, जिससे क्लासेस सुचारू रूप से चले, कोई दिक्कत ना हो।
1: जी चलिए, ये तो बहुत अहम चूंकि सवाल था और उसका बखूबी आपने इसका आंसर दिया, और कहीं ना कहीं आपका विजन और आपके स्टाफ का पूरा विजन ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर है कि फीमेल्स के लिए स्पेशली जो फीमेल स्टाफ है वो गाइड कर रही हैं बच्चियों को, जो मंथली नीड होती है उन सारी चीजों को लेकर के भी आपके यहाँ इंतजाम है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने जैसे बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि भाई इंटरवल में भी कहीं ना कहीं 5-6 ऐसे शिक्षक होते हैं जो प्रॉपर बच्चों पे नजर रखने के लिए मौजूद होते हैं, और ये बहुत ज्यादा उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और इसको आप बखूबी कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब चूंकि इसके अलावा एक जो बहुत अहम सवाल है वो आपसे ये करना है कि भाई सारे स्कूल्स अपनी जब बात करते हैं तो हम बताते कि हमारे पास ये फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ ये है, तो हम जानना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में आखिर कौन कौन सी फैसिलिटी है जो 12th इंटर कॉलेज में होनी ही चाहिए, और वो आपके हैं ऑफ कोर्स, उस तरह से बच्चे उससे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, ये सारी जानकारी लेंगे। और उसके अलावा आप किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उस सब्जेक्ट में आखिर कौन कौन सी जो अहम चीजें होती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि वक्त हो गया है एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, सो ब्रेक के उस पार वापस से आएंगे और बहुत अहम सवाल है इस पे हम आपसे अपने एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे। सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो, ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: एक बार वापस से आप सब लोगों का ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपके अपने शाम के स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद हैं प्रिंसिपल डॉक्टर शिवानंद पांडे जी और स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज उतराला रोड गोंडा से। सर, जाने से पहले हमें आपसे ये सवाल करना था, चूंकि हमने बताया था कि हर जगह सारे जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो अपनी फैसिलिटीज को बताते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। हम जानना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट का एक इंटर कॉलेज है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी आपके यहाँ है कॉलेज में?
0: हमारे कॉलेज में मुख्य रूप से सबसे पहले तो प्रयोगशाला है, विज्ञान वर्ग के लिए जीव विज्ञान प्रयोगशाला है, भौतिक विज्ञान का प्रयोगशाला है, रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला है। जो मानविकी वर्ग में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भूगोल का प्रयोगशाला है, एक ये फैसिलिटी है। और हर एक दिन इनके एक प्रैक्टिकल क्लास लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला केवल दिखाने के लिए होता है, प्रयोगशाला में वो काम करते हैं, बच्चे सीखते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उसकी जानकारी होती है उनको। ये तो हो गई शिक्षा से फैसिलिटी, प्लस क्लासरूम्स व्यवस्थित हैं, सभी क्लासरूम में पंखे लगे हुए हैं, सीट सब साफ हैं, कमरे ये सब तो व्यवस्थित हैं हमारे। इसके अलावा लड़कियों के लिए और बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग वाशरूम है, दोनों दो तरफ हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये सब हमारी सुविधाएं अच्छी हैं। पीने के पानी के लिए समरसेबल एक लगा हुआ है, सोलर पैनल का समरसेबल लगा हुआ है। उसके अलावा एक मोटर है, टंकी में पानी जाती है, सब जगह सप्लाई वाटर है पानी पीने के लिए बच्चों के लिए। वाशरूम में सभी जगह पानी है। उसके अलावा चार पांच हैंड पाइप लगे हुए हैं, कुछ बच्चे हैंड पाइप का पानी पीना पसंद करते हैं। आरओ एक नहीं लगा है, मगर बाकी फैसिलिटीज में ये सब सुविधाएं हैं। क्लासेस रेगुलर होते हैं, ये हमारी फैसिलिटी है
1: जी। यानी ये सारी फैसिलिटी है, और चूंकि हम लोग को ऐसे भी इतना देखे हुए कॉलेज, तो खेल का मैदान भी पूरा प्रॉपर है।
0: हाँ, फैसिलिटी में हमारे यहाँ खेल का मैदान भी है और खेल के सामान भी है, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन है, यहाँ से कि इंडोर गेम्स में हम लोगों ने एक टेबल टेनिस भी रखा हुआ है, उसको मगर क्लासरूम में ही रखते हैं, बाद में फोल्ड कर देते हैं जब खेलने होते हैं लड़कियों को, तो उसको ओपन करके खेला जाता है। और स्काउटिंग हमारे यहाँ है, ये सब चीज़ इससे भी फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी में हमारे यहाँ थी, मगर मुझे ध्यान से ये उतर गया।
1: मतलब ये है कि सारी वो फैसिलिटी है जो एक बच्चे के कहते हैं कि डेवलपमेंट में बहुत सहायक है,
0: बच्चे के सर्वांगीण विकास में जो जो चीज आवश्यक है वो सब सुविधाएं हैं हमारे पास। कुछ और नई सुविधाएं की आवश्यकता है, वो करना चाह रहे हैं, वो शायद विगत दो साल में हो जाएगा
1: जी। तो ये तो फैसिलिटी के बारे में बताया, और हम इसी अगले सवाल पे आ भी रहे थे कि आने वाले समय को लेकर के आपका एज प्रिंसिपल क्या रोड मैप है, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया है बहुत हाल ही में, बहुत ही कम वक्त हुआ है, तो अभी आपको एक लंबा अरसा गुजारना है एज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के हाथ में कुछ पावर्स भी होती हैं जो कॉलेज को लेकर के होती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आप और आपकी टीम क्या चीजों को विजुलाइज कर पा रही है आने वाले समय में, आप किन किन और फैसिलिटीज को ऐड करना चाहते हैं जिसके लिए आप काम करेंगे।
0: सबसे पहले बच्चों को मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास हो जाए। स्मार्ट क्लास के माध्यम से निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे होंगे कहीं ना कहीं स्मार्ट बनने की श्रेणी में आएंगे, और उनको उनके लिए वो नई चीज होगी, उनको अच्छा भी लगेगा, कुछ रुचि भी जागेगी कि मुझको पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको अभी बताया कि बाल सभा का आयोजन किए हुए हैं, जो इंटर के बच्चे हैं खास करके उनको भी अधिक जागरूक किया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए अलग से कैरियर गाइडेंस सिख हमारे यहाँ कोर्स चल भी रहा है। और इन सब के अलावा मैं जो शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज हैं, SCPM कॉलेज, आप नाम सुने होंगे, ओएन पांडे जी के संचालन करते डायरेक्टर हैं, उनके कॉलेज के फैकल्टी मेंबर भी आके कैरियर गाइडेंस के संबंध में बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इन क्षेत्रों में भी आपका आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सब कराए रहते हैं। और पहला आगे के लिए ही सब सोचा हुआ है कि ये पहले करा लें, फिर धीरे धीरे और भी विचार किया जाएगा, जैसे जैसे पूरा काम होता जाएगा तो और विचार करके उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अनंत होते हैं जितनी आवश्यकताएं हैं, मगर एक एक होता जाए तभी आगे के लिए सोचा जा सकता है।
1: जी बेशक, आपने सही कहा, और आपका जो पहला ही विचार है बहुत ही क्रांतिकारी है, कहीं ना कहीं स्मार्ट होती दुनिया के बीच आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेस के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, विशेष भी हमारी आपके साथ है कि आप जो भी विजन्स बना रहे हैं आपके विजन्स जरूर आपके टेन्योर में ही पूरे हों और आप उन चीजों को पूरा होते हुए देखें भी। ये इसकी अपनी एक अलग खुशी
0: होती है। मैं भी चाहता हूं कि जो भी मैंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है
1: जी
0: उसको मैं जल्द से जल्द पूरा कर लूं और उसका रिजल्ट भी देखूं। अब ज्यादा खुशी होगी, अच्छा लगेगा और ये सपना पूरा भी होगा। सब लोग क्योंकि जितने भी हैंड्स हैं हमारे सब इसके पक्ष में हैं, साथ में हैं, सफलता जरूर मिल जाएगी इस काम को पूरा करने में।
1: बेशक जब टीम साथ होती है तो सारे काम अपने आप हो ही जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये तो रही बात आपके विजन की। अब एक और जो बहुत अहम सवाल है, चूंकि आपने बताया कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो एज लेक्चरर हुई थी, क्या आपका सब्जेक्ट रहा है?
0: मैं समाजशास्त्र प्रवक्ता के पद पर यहाँ पर ज्वाइन किया था।
1: समाजशास्त्र प्रवक्ता के तौर पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका सब्जेक्ट जो है वो समाज के बारे में ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बता दिए कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है।
0: ये समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे सामाजिक संबंध हुए, सामाजिक विधि विधान, इसी का ये अध्ययन होता है। जो चीज हम समाज में देख रहे हैं वो सब चीज आप किताब में पढ़ना है। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे समाज में परिवार है, परिवार का मुख्य भूमिका परिवार की होती है
1: जी,
0: फैमिली पढ़ने हैं, मैरिज पढ़ने हैं। मैरिज एक ऐसा चीज है लगभग सभी लोगों में एक संस्कार, हिंदू धर्म में एक संस्कार भी है ये, जबकि विवाह संस्कार सभी लोगों का होता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अविवाहित होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो
1: जी।
0: ये सब चीज का ही पढ़ना है, जो भी चीज इसमें पढ़ने का होता है, जैसे सोशल मूवमेंट हुआ कुछ, जितने भी चीज पढ़ने हैं कहीं ना कहीं समाज में वो सब चीज दिखता है हमें प्रत्यक्ष रूप से। इसको अध्ययन करने में आप कहीं ना कहीं समाज से कोरिलेट करके उसको देख सकते हैं, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आगे भी देखा जाता है जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं में समाजशास्त्र के लड़के अच्छा परफॉर्म किए हैं और सब जगह इनकी सिलेक्शन भी हुआ है। ये विषय रियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कोई कंपटीशन की तैयारी करना अगर चाहता है किसी भी स्ट्रीम का हो तो इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है, ये स्कोरिंग मार्क्स भी इसमें मिलते हैं
1: जी। बेशक, तो क्योंकि आपने जो कहा उस बात को हम भी बखूबी समझते हैं कि कहीं ना कहीं समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स हम समाज के बीच में रहते हैं, हमारा सामाजिक ताना बाना है, रिलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपने एग्जांपल दिया शादी का भी, और वो हर कम्युनिटी में, हर समुदाय में, हर रिलीजन में इसको फॉलो भी किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हम जानना ये चाहेंगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के नाम पे कई बार पीछे इसलिए थोड़ा सा कतराते हैं कि उनको जब पढ़ाया जाता है तो बहुत ज्यादा परिभाषा जो किताबी होती है उसके साथ बताया जाता है। मैं आपका एक वे ऑफ टीचिंग स्टाइल जानना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाते हैं तो कितना किताब से हट करके कितना सरल शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, कितना उन बच्चों से ही, उनके ही जिले से चीजों को जोड़ करके, उनके मोहल्ले से जोड़ करके, उनके घर से जोड़ करके बताने की कोशिश होती है, यानी उनको कितना इजी वे में और कितना इंटरेस्टिंग वे में आप कैसे समझाते हैं?
0: ये तो एक अध्यापक की कला होती है, को अपने बच्चों को किस तरह से बता रहा है, किस तरह से कन्विंस कर दे रहा है, समझा दे रहा है, जिससे बच्चे संतुष्ट हो जाए। हमारे पढ़ाने का ढंग कुछ अलग है। मैं कभी भी किताब से चैप्टर बताता हूँ, चैप्टर लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, उसका इंग्लिश में भी नाम इसलिए लिखता हूँ, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जब आपको हिंदी नहीं समझ पा रहा हो तो इंग्लिश अगर आप देखते हो तो आपको याद आ जाएगा ये मैंने पढ़ा हुआ है।
1: एग्जैक्टली
0: मगर ये जो परिभाषा की बात है, जो समाजशास्त्री हुए हैं पहले से, जिन्होंने किसी भी टॉपिक पर अपनी परिभाषा दिया है, उसको कोई चेंज कर नहीं सकता है।
1: बेशक
0: अगर उनकी परिभाषा लिखी जा रही है तो वो परिभाषा तो जो उन्होंने बताया है उसको तो याद करना ही करना है। रही बात उन परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं इस चीज को मैं बताता हूं।
1: एग्जैक्टली
0: कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते, अंधविश्वास अगर पढ़ना शुरू किए, अंधविश्वास रिलेटेड सब चीज को बताया जाता है, एक एक चीज से जो समाज में घटना परिवार में दिखती है उससे उसको रिलेट किया जाता है। तो रिलेट करने से क्या होता है कि बच्चे आसानी से समझ सकते हैं।
1: जैसे
0: सामाजिक विधान है, कौन कौन सी विधान बने हुए हैं। सबसे पहले सती प्रथा निषेध अधिनियम बना था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा सब लोग जानते हैं कि अपने पति के मरने के बाद विधवा स्त्री को उनके साथ जबरदस्ती, सती मतलब उनकी चिता पर उनको भी जला दिया जाता। इसको बताने के पहले केवल ये 1829 बताने से नहीं होता है, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, तो 1829 में हुआ, 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ, ये फिर सारडा एक्ट हुआ 1929 में, ये सब चीज मैं कोरिलेट करते हुए बताता हूँ याद करने के लिए, ये आप ईयर को याद रखोगे, जब भी आपकी सामाजिक विधान की बात आती है तो आप ऐसे ऐसे इसको याद करोगे तब आपको याद रहेगा, और किसने इसके लिए संघर्ष किया, किसके संघर्षों किसके प्रयत्न से ये प्रथा लागू की गई, वर्तमान में भी क्या क्या है, जैसे वर्तमान में भी लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष
1: विवाह के लिए,
0: विवाह की आयु। इसके लिए अधिकांश बच्चे जो गांवों में रहते हैं उनके यहाँ ये लोग फॉलो नहीं करते, 10th में पढ़ रही है लड़की, 9th में पढ़ रही है, शादी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं उनको ये तो नहीं कहता हूँ कि आपके घर वाले बहुत गलत कर रहे हैं, पर ये जरूर पढ़ाई के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, उनको किसी प्रकार का ठेस ना हो, कोई परिवार पे भी ना लगे कि हमारे मम्मी पापा के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ये जरूर बताने का प्रयास करते हैं पढ़ाई के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, कि ये आयु में अगर आप विवाह करते हैं तो ये समस्याएं नहीं हो सकती, इस तरह पढ़ाया जाता है समझाते हुए कि थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट जागे इस सब्जेक्ट में तभी वो पढ़ पाएंगे। और ये बार बार बताया जाता है कि किसी भी चीज को अपने से एक्सप्लेन करने की क्षमता को आप डेवलप करो, किताबी चीज को याद मत करो, ये क्लास 6-7 तक लोग याद करते हैं, ये क्वेश्चन है इसका उत्तर है, मैं ये बताता हूं कि आपको इसको याद नहीं करना है, केवल आपको सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आपको परिभाषा याद आगमन नियम का ये याद करो, मगर बाकी चीज को आप अपनी भाषा में अपने से एक्सप्लेन करने की आदत बनाओ। शुरू में आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा मुझको एक शब्द भी लिखने नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, मगर धीरे धीरे धीरे धीरे 1-2 महीने में आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आप ले लो, जो भी चीज आपको दिख रहा हो उसी टॉपिक को लेके लिखने की आदत बनाओ। ये मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रिजल्ट के रूप में दिखता है, 100% अगर रिजल्ट हो रहा है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि सब्जेक्ट के रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज को, रिजल्ट ही हमें सत्यापित करता है कि हमारे बच्चे का जो शैक्षणिक स्तर है वो किस लेवल का है, इसलिए ये खुशी होती है, अच्छा भी लगता है।
1: बिल्कुल, बेशक सही कहा आपने, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि कहीं ना कहीं जो थ्योरीज होती हैं, चूंकि सबके अपने विचार हुए हैं, तो उन विचारों को भी समझाना होता है, और इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर फिर उतने एंगल्स आते हैं, यानी इसको किस तरह से किसकी सोच से कैसे देखा जा सकता है, तो और आयाम खुलते हैं सोचने के, और बुद्धि का विकास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड अगला चूंकि सवाल अभी तो ये बच्चों से संबंधित था, आप खुद इस एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के और 20 साल से ज्यादा का आपको अनुभव है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज का परिदृश्य भी आप देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से आज का जो समाज है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, पहले के वक्त से आज बहुत बदलाव है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ कुरीतियां नई भी आई हैं जो पहले नहीं थी, तो उनको देखते हुए आपकी समझ के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा, एक आदर्श समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, हालांकि आदर्श जैसा कुछ होता कभी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही हैं, लेकिन फिर भी बेहतर बनाने की दिशा में जो हमारा भारतीय समाज है आज के सिनारियों में, उसमें हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं जिससे कि ये और बेहतरी की तरफ जाए।
0: सबसे पहली चीज है, अगर आज के समाज को हमें बेहतर बनाना है, सभी समाजों में शिक्षा के स्तर को उच्च किया जाए, उच्च करने का प्रयास किया जाए। आज भी देखा जाता है जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर इस तरह की समस्याएं या कॉन्फ्लिक्ट देखने को कम मिलती हैं, क्योंकि सभी लोग की एक जो IQ लेवल होता है, जो समझने का होता है, वो लोग में वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं ना कहीं ये शिक्षा सबके लिए लागू किया गया, सरकार ने ये भी लगा RTE राइट टू एजुकेशन 2009 से लागू किया हुआ है, उसके बावजूद भी आज भी बहुत क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमेशा डाटा आता है, ईयर बुक में आता है, उसके बावजूद भी ईयर बुक में डाटा आता है कि इतने परसेंट लोग शिक्षित हैं, जो गजेटियर होते हैं, सब जगह मिलता रहते हैं डाटा, पर वर्तमान समय में ये स्तर आज भी निम्न है, कुछ स्टेट में तो काफी कम है। तो हमारा ये मानना है कि अगर शिक्षा के स्तर को जो लागू किया गया सरकार के द्वारा, उसको पूर्ण रूपेण जमीन पर सब लोग की इसमें
1: भागीदारी
0: भागीदारी होगी, तब जाकर कि ये पूरा हो सकता है। और ये जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर से एक स्वस्थ और सही समाज का निर्माण हो जाएगा और ये समस्याएं कम हो जाएंगी, ये हमें देखने को फिर नहीं मिलेगा।
1: ओके, तो ये आपकी अपनी ओपिनियन है, ये आपकी अपनी राय है। इतने साल के अनुभव से आपने ये बताया कि अगर जहां शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, जहां शिक्षित लोग होते हैं, वहां पे सामाजिक जो बुराइयां हैं वो कम ही देखने को मिलती हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम दुनिया का किसी भी देश को उठा करके देख ले, भारत में उन राज्यों को उठा करके देख ले जहां पे शिक्षा का स्तर अच्छा है, और जहां नहीं है उन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क सिर्फ शिक्षा से ही हमको नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। क्योंकि अब हमारा चलने का भी वक्त हो गया है और आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में उत्तर दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन फिर भी जाने से पहले एक सवाल जो है मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की वैल्यूज क्या है? लोग अपनी जिंदगी के कुछ मूल्य बनाते हैं, आप किन मूल्यों को लेकर के चले हैं हमेशा से, और उन मूल्यों के साथ कभी आप समझौता नहीं करने वाले, वो कौन से मूल्य हैं, या कोई एक अगर आप बताना चाहें तो?
0: सबसे पहला, मैं संयमित रूप से नियमित ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। कभी भी जहाँ पर भी जाना होता है, लेट लतीफी वाली मेरे साथ वो स्थिति नहीं है। अगर 8 बजे मतलब 8 बजे मुझको पहुँचना है, उसके लिए अगर नाश्ता भी रखा हो, लेट हो रहा है तो मैं नाश्ता छोड़ सकता हूँ। समय से कभी समझौता नहीं किया हूँ, टाइम से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से सहयोग, इस मामले में मैं बताना चाह रहा हूँ कि रियल में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिस जो अभावग्रस्त हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हों किसी भी रूप में, तो मैं उनकी समस्या का निराकरण जरूर करता हूँ। अगर मैं कहीं जर्नी कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ खा रहा हूँ, बाहर घर के बाहर कोई ऐसा मिल जाता है, तो इस उद्देश्य के साथ मैं चलता हूँ कि अगर मैं मानव हूँ, अगर किसी मानव को मैं काम आ सकता हूँ तो उनको मैं जरूर सहयोग करूँ, उसमें किसी प्रकार का इब्बत मैं नहीं लेता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ आगे का जीवन पूरा कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, यानी मानवता की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने समय की बात कही, समय पर बहुत सारे थॉट्स हैं कि जो समय बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद करके छोड़ता है, या समय वापस कभी नहीं आता, या सबसे कीमती समय होता है। और ये बातें बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सही है। समय का कोई मूल्य ही नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, और हमारी जिंदगी समय से ही बनी है। सच तो यही है। बेशक आपने अपने जिंदगी के मूल्यों को बताया, और शायद मैं पहला ऐसा शख्स हो सकता हूं जो आपने आपसे ये जानने की मैंने कोशिश की और आपने बताया भी उस चीज को।
0: जी जी, अभी तक तो कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर देने का अवसर नहीं मिला था,
1: मिला ही कोई नहीं पूछने वाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चूंकि आज के इस पूरे टॉक शो के दौरान एकदम लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और पूरे गोंडा का पहला एफएम है। तो एफएम के आने के बाद से मैं जस्ट एक जनरल वे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पर्सनली क्या लगता है आने वाले समय में ये और क्या बदलाव लेकर आ रहा होगा गोंडा के लिए, और इसको दूर दूर से जहां से भी इसको सुनने वाले हैं अलग अलग जगह से, उन लोगों के लिए?
0: आपका जो एफएम 89.6 जब से शुरू हुआ है, मैं तो शायद जब भी अपने कार पर जाता हूँ तो एफएम 89.6 रात 11 बजे तक सुनता हूँ। इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप बीच बीच में कुछ कुछ कहानी के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, बहुत सी जो लोकल्स बातें हैं उसको ये बताते हैं, अच्छा लगता है। और बदलाव आप लोग काफ़ी प्रयासरत रहे हैं और इसको और भी सुधारने के लिए मैं जैसा देखता आ रहा हूँ, क्योंकि प्रतिदिन लगभग आधे घंटे 45 मिनट मैं गाड़ी में रहता ही हूँ और उतने देर में एफएम ही सुनता हूँ, तो हमें लगता है कि आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे और भी इसमें अच्छा कार्यक्रम होगा, सुधार तो नहीं अच्छा कार्यक्रम आपका होगा। कार्यक्रम आप लोग के बहुत ही अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं, और जब से शुरू हुआ मैं तो बहुत खुश हुआ कि अब मैं गाड़ी में एफएम सुनूंगा, इसे पेन ड्राइव या कोई मोबाइल से कनेक्ट करके गाना नहीं सुनूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप एक गुरु हैं, न जाने कितनों की जिंदगियों को आपने बनाया है, और एक गुरु का आशीर्वाद होना जिस चीज पे भी होता है वो चीजें चमक जाती हैं। सो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और हाँ बिल्कुल, हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, दिन ब दिन हम बेहतर चीजों को करेंगे। गोंडा के लिए या इसको सुनने वालों के लिए, समाज के लिए जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो हम एक बार वापस से अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे बीच में इस टॉक शो में हमारे स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर शिवानंद पांडे, जो कि स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज उत्तरौला रोड गोंडा के प्रिंसिपल है। सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया।
0: ठीक, नमस्कार।
1: नमस्कार। अपने श्रोताओं से कहेंगे सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, चूंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: रामचंद्र कह गए सिया से, कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा रेडियो पर मौजूद हर एक लिसनर अपनी आवाज़ में गाना गाएगा। फिलहाल इन पंक्तियों को मैंने मॉडिफाई कर दिया है और मॉडिफाई करने के साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये पंक्तियाँ आज की मतलब इवनिंग के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं। सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसी चल रही है जिंदगानी? ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों आप सभी के। और इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आज की शाम का। तो देखिए, जुलाई का महीना शुरू हो गया है एंड यस, इट्स द मोस्ट हैक्टिक मंथ। बहुत सारे काम होते हैं सबके पास और कहने के लिए
12: एक तरह से एक ब्रेक के बाद फिर नया स्टार्ट है, पर अगर हम देखें तो स्टार्ट के साथ साथ एनर्जी का भी ये मंथ है, बहुत हाई एनर्जी वाला मंथ मानते हैं हम लोग जुलाई को, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी हम इसी मंथ में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, एंड यस आज की इवनिंग विल बी योर्स अगर आप अपनी आवाज़ में सुनाएंगे बहुत कुछ। तो फिलहाल मेरे सारे लिसनर्स का मैं स्वागत करते हुए ये कह दूं कि भाई आसपास के शहरों में जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जो मौसम बदला हुआ है कि क्या कहने, लेकिन हमारे यहाँ भी मौसम बदलने के आसार अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में ज़रूर दिखेंगे, तो इंतज़ार का फल अच्छा ही होगा। मतलब तो कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन वाला होगा, तो हम लोग थोड़ा देर में आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज है भारत का सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस, और आपको पता है कि इसमें नई दिल्ली में जो भारत मंडपम में डेयरी के जो सहकारी समितियां हैं और उसके उप विधियां हैं उनका लोकार्पण हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है, ठीक है, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़ास भी है, ख़ास होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की बात भी होगी आज। और आपको बता दूं कि मेरे लिए जो सबसे ख़ास दिन होता है पूरे हफ्ते का वो मंडे होता है या सैटरडे होता है। आप पूछेंगे मंडे क्यों, क्योंकि मंडे छुट्टी के बाद का दिन होता है, संडे के बाद का दिन होता है, और एक एनर्जी भरी पड़ी होती है, कैसे ना कि खा पी के आओ तो एनर्जी मतलब फुल रहती है, तो वही वाला हाल रहता है। और सैटरडे क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, तो मेरे लिए सबसे खास फेवरेट वाले डे मेरे मानूँ तो दो ही दिन है मेरे लिए खास। संडे तो संडे यार, संडे वाले दिन अगले दिन की चिंता लगी रहती है, यार अगले दिन ये करना है, अरे यार पूरा हफ्ता बीत गया, मतलब संडे एक टेंशन का मतलब मुझे लगता है कि दिन हो जाता है। सो कैसे हैं मेरे सारे लिसनर्स और कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, फटाफट से आ जाइए और अपनी प्रेजेंस से मुझे बता दीजिए कि कौन कौन कहाँ है। फिलहाल के लिए आप सभी का स्वागत है, एंड एवरीवन इज़ हेयर, एंड आई नो एवरीवन हैज़ एनर्जी टू सेलिब्रेट द इवनिंग विद एनर्जी वाली वाइब। तो एनर्जी वाली वाइब के साथ मेरे एक श्रोता का आज बर्थडे भी है, तो आपके मतलब हमारे श्रोता के लिए, एक हमारे श्रोता हैं सरोज, तो उनके बर्थडे पे हम लोग गाना सुनते हैं, और गाना बड़ा ही प्यारा सा है, एनर्जेटिक सा है, तो उन्हीं के लिए गाना सुनते पहले तो शुरुआत, क्योंकि उन्होंने कॉल करके पहले ही फरमाइश कर दी, और मैं किसी की फरमाइश, बर्थडे वाली फरमाइश तो कभी भी निगलेक्ट नहीं करती। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। Let's enjoy this beautiful song for the birthday of Saroj.

जी हाँ, इस अदा को महसूस कर सकते हैं आप बहुत सारी सिचुएशंस में, क्योंकि कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमें किसी की नज़र से खफा की खुशबू आती है। बहुत सारी जगह है, चाहे वो घर में बैठा कोई दोस्त हो या भाई हो या और भी कोई इंसान हो। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। एंड यस, सुरीली सी शाम में सबका स्वागत करते हुए मैं आपको आज बता दूं कि आज ना सिर्फ हमारे एक श्रोता यानी कि लिसनर का बर्थडे है, बल्कि हमारे एक धुरंधर कलाकार का भी बर्थडे है। सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू द वन ऑफ द धुरंधर कलाकार, यस रणबीर जी। हाँ, आपके और हमारे चहेते और ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाले धुरंधर कलाकार यानी कि रणबीर का भी बर्थडे है। सो रणबीर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वो रणबीर का बर्थडे भी इतना ख़ास है। तो सबसे पहले तो वेलकम, एंड कौन कौन कहाँ कहाँ सो रहा है, जल्दी जल्दी से उठ जाओ। और नींद से उठ के जागने वालों को कहते हैं ना कि वो मसीहा बन जाते हैं सबके लिए, तो जल्दी से एक दूसरे का मसीहा बनेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, आज 6 जुलाई है, 6 जुलाई 1985 में पैदा हुए आपके और हमारे फेवरेट कलाकार रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ने शुरू से ही, मतलब मैं इनका कहूँगी कि लक काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने जितनी भी मूवीज़ अभी तक बनाई हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ ने हम सबके दिलों पे राज किया है, किया कि नहीं किया आप लोग बताइए। नॉट अ सिंगल मूवी, बहुत सारी मूवीज़। तो बॉलीवुड अभिनेता जिनका आज बर्थडे है वो है रणवीर सिंह, और उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कैसे इन्होंने अपनी शुरुआत की और कैसे ये धुरंधर कलाकार बन गए। तो सबसे पहले तो इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में बहुत सारे फिल्म फेयर भी जीत लिए हैं, और भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी जो सूची बनती है उसमें जो 100 मतलब सेलिब्रिटीज़ थे उसमें इनका नाम था। और मैं बता दूँ कि ये रहने वाले मुंबई के ही हैं, और अभी भी मतलब इनकी पढ़ाई वगैरह जो भी हुई वहीं से हुई। इसके अलावा शुरुआत इन्होंने मॉडलिंग से की, मॉडलिंग के बाद इन्होंने फिर अपना मतलब एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया। और कब से काम शुरू किया, 2010 से अभी तक पूरा मतलब चल रहा है। और शादी तो आपको पता ही है, हमारी फेवरेट कलाकार यानी कि दीपिका पादुकोण से इन्होंने की है। एक बच्चा है इनका, और जैसा कि परिवार की बात करें तो परिवार में भी इनकी अच्छी खासी मतलब पूरी अच्छी फैमिली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी पढ़ाई की। तो इन्होंने पढ़ाई की इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से, और वहीं से स्नातक पूरा किया इन्होंने। और फिर उन्होंने यशराज फिल्म्स में एक सबसे पहली मूवी में डेब्यू किया। मूवी का नाम था बैंड बाजा बारात, अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे, याद आ गया ना? हाँ, बस उसी में अनुष्का शर्मा के साथ इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म में, और काफ़ी अच्छी रही फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आई। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू के रूप में इन्होंने फिल्म फेयर जीत लिया, मतलब आते ही पहले चक्का जड़ दिया। और ड्रामा फिल्म की बात करें तो लिटेरिया में आए, हवा के झोंके आज मौसमों से लूट गए, फिर इन्होंने शुरुआत की आगे लुटेरा बनने के बाद। एक मतलब मूवी की अगर बात करूँ तो मूवी में इन्होंने बड़ी अच्छी है, मतलब अभिनय इनका बड़ा अच्छा है। एक मासूम सा चोर बनके फाइनली अपनी जान दे देना, क्या मतलब मस्त सी कहानी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी लुटेरा। मतलब है जैसे एपिक टाइप की है, थोड़ा सा अंत थोड़ा सा दर्दनाक टाइप का है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, ड्रामा अच्छा था। फिर इसके बाद सुपर डुपर हिट आई मूवी जिसका नाम है गोलियों की रासलीला रामलीला, 2013 में, जिसमें इन्होंने दीपिका के साथ काम किया, और शायद प्यार की कहानी भी वहीं शुरू हो गई। फिर बैक टू बैक एक और बढ़िया दबंग मूवी आई जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी, 2015 में, फिर इन्होंने कमाई की धुआंधार। फिर आई पद्मावत जिसमें 2018 में ये शामिल थे, बहुत अच्छी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदारों में अगर इनकी बात करें तो सबसे बढ़िया काम इनका था, और इसी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी, मतलब नेगेटिव रोल भी बंदा इतना सही कर गया। क्या अलाउद्दीन खिलजी का इन्होंने रोल किया था, मतलब
यू कांट इमेजिन, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब जहाँ एक तरफ वो पेशवा बाजीराव बन के एक पॉजिटिव रोल में एक बढ़िया सा देश को बचाने का काम करे, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में एक व्यापक रूटनेस, मतलब एकदम खूंखार रूप दिखाया। तो दोनों ही फिल्मों में इन्होंने अपना, मतलब जो कहते हैं ना कि कैसे कोई इतनी जल्दी अपने रोल को इतना मॉडिफाई कर सकता है, तो बहुत अच्छी इनकी मोल्डिंग मतलब कैपेसिटी। आपके दिमाग में फिल्में चल रही होंगी, हम सभी ने ये सारी फिल्में देखी हैं, कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसने इन मूवीज़ में नज़र न डाली। उसके बाद आ गई सिम्बा 2018 में, फिर इसने व्यापक मतलब सफलता हासिल की, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली फिल्में ऐसी बनाई इन्होंने। फिर गली बॉय आ गई 2019 में, फिर आई खेल फिल्म 83 2021 में, और फिर उन्होंने लगातार दो फिल्म फेयर जीत लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। फिर करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, मतलब बीच बीच में ब्रेक लगा, साल में ब्रेक लगा, लेकिन इनकी जो मूवीज़ आई बैक टू बैक उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। फिर एक रोमांटिक कॉमेडी आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने देखी होगी, मज़ा आया होगा, ठीक है। स्पेशली इनका वाला पार्ट बहुत ही गजब का है, ठीक है। फिर आई दो भागों वाली जासूसी थ्रिलर धुरंधर, धुरंधर 1 धुरंधर 2, यानी कि 2025 वाली ने भी अपना रंग जमा दिया और आज वाली ने भी रंग जमा दिया। तो चलिए हम सुनते हैं रणवीर सिंह के लिए, मतलब जिसने इतना अच्छा काम किया उसकी बात करना तो बनता ही है। तो रणवीर सिंह की पहली मूवी बैंड बाजा बारात से एक गाना और एक धुरंधर से गाना। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी है। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप, और आपकी आवाज़ सुनने की मतलब उम्मीद रहेगी, इंतज़ार रहेगा। और गुड इवनिंग सब लोग कैसे हैं, मुंबई का मौसम तो बड़ा ख़राब चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग हो चुकी है, सब लोग बोल रहे हैं रेलवे लाइन जो है ट्रैक पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए हैं फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत पानी आप भेज सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी बारिश उतनी नहीं हुई है, और हम लोग जैसे कहते हैं ना हमारा यूपी जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ बारिश की ज़्यादा ज़रूरत है, आप यहाँ भेज सकते हो। तो चलिए हम सुनते हैं बैंड बाजा बारात से गाना रणवीर के लिए, और इसके पहले हमने अपने लिसनर के लिए गाना सुना, अब अपने कलाकार के लिए सुनते हैं।

दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है कि हम ऑन एयर आप लोगों से बात कर रहे हैं और आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। सो वेलकम बैक। और भाई रणबीर के बारे में बहुत कुछ जान लिया हम लोगों ने। भाई सिनेमा पे अपनी मतलब पहचान खुद बनाई, और ना सिर्फ बनाई बल्कि लोगों के दिलों पे छाने वाले एक सेलिब्रिटी बन के वो रहे। और फिल्मों के अलावा कई ब्रांड और कई सारे ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन के रहे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो इन्होंने म्यूज़िक देने का भी काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। गली बॉय में इन्होंने साउंड ट्रैक भी दिए मूवी में। और उनकी शादी की बात करें तो उनकी शादी भी बड़ी फेमस हुई है, और ख़ास तौर पे उनकी और दीपिका की। और दीपिका और रणवीर की शादी की ख़ास बात यह है कि इन लोगों ने बहुत ऑनेस्टली अपनी शादी को निभाया भी है, कमिटेड रहे और फिर फाइनली शादी की। दैट्स अ गुड थिंग। एंड शी हैज़ मतलब दोनों के पास एक बेटी भी है जिसका नाम इन्होंने दुआ रखा है। बहुत अच्छा सा नाम है ना। फिलहाल आगे बात करेंगे। और हमेशा से हमारे और आप लोग के लिए कुछ नई चीज़ें लाने वाले बन के रहे हैं, और इनके बर्थडे पे हम लोग फिर से इनको शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल आप लोग की बारी है, अब आप लोग क्या सुनाने वाले हैं आज ये बताइए। और मैंने तो भाई शुरुआत कर दी इतनी म्यूज़िकल सी मतलब कहानी की, और इतनी अच्छी सी जर्नी शुरू हुई आज की कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। फिलहाल मैं अगर आज सुनाना चाहूँ तो आज मैं क्या सुनाऊँगी, मेरे पास तो सुनाने के लिए आज कुछ ऐसा खास नहीं है। पर सोचा है कि कुछ अलग सा ही सुनाऊं, तो दिमाग में कुछ है जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको सुन के। स्पेशली बहुत प्यारा सा मतलब एक कविता है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सबकी मतलब फीलिंग्स को एलैबोरेट करती है कविता, ध्यान से सुनिएगा। अगर मौका मिला कभी तो, अगर मौका मिला तो कभी कागज पर अपनी थकान लिखूंगी, मजबूत कंधों के पीछे छुपी एक छोटे से इंसान की बात लिखूंगी, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा के कहता है ठीक है, सब ठीक है, उस एक झूठ के पीछे जब दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगी। अगर मौका मिला तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी, नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में, मैं तो हार का भी जिक्र मुस्कुरा कर करूंगी, वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगी, अगर मौका मिला तो कभी कागज पर अपनी थकान लिखूंगी। लिखूंगी वो रातें जब तकिया गवाह था मेरा, लिखूंगी वो रातें जब तकिया गवाह था मेरी उन सिसकियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इंसान का रूप लिखूंगी। मैं लिख पाऊं तो कुछ तो मैं खुद को लिखूंगी, अपनी राह के हर जख्म को, अपने हर सम्मान को लिखूंगी, अगर मौका मिला तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी, अगर मौका मिला तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी। तो बताइए आप लोग को ये प्यारी सी कविता कैसी लगी, जो मतलब मैंने काफ़ी दिनों पहले पढ़ी थी तो सोचा आज आप लोगों से साझा करूं। आप लोग के पास भी कुछ ऐसा होगा ना, कभी कभी मन करता होगा यार कि एक किताब तो अपने ऊपर भी लिखनी चाहिए। क्यों, क्या बोलते हैं, हर किसी का मन करता है ना कि अपने बारे में कुछ लिखें, अपने शहर के बारे में लिखें।
शहर से तो मुझे फिर याद आ जाती गोंडा की वही पंक्तियाँ जो मैंने एक बार आपको सुनाई थी। एक शिवांकु वंश में गुनार था, ऋषि मुनियों का विहार था, वरिष्ठ का आश्रम था यहीं, नंदिनी सेवा भी हुई थी यहीं, नंदिनी सेवा भी हुई थी यहीं, और बख्श साहब भी जन्मे थे यहीं, पराधीनता में सांस ली नहीं और भी प्राण दूंगा अभी, मैं पावन गोंडा हूँ ये सुनो अभी। चाचा जी ने गोंडा नरेश, सरयू तीरे गंगा नरेश, आटा वासी अधम गोंडवी, ये सब हस्तियाँ ये सब सभी, हाँ और प्रणाम दूंगा अभी, मैं पावन गोंडा हूँ सुनो अभी। रामचरित लिखने वाले तुलसी भी हैं पले बढ़े, प्रदेश मैं सबसे उपजाऊ हूँ, सरयू और घाघरा बहाऊ हूँ, सो मेरी धूमिल तस्वीर ना होने देना, ध्यान दीजिए कि मेरी धूमिल तस्वीर होने ना देना, मैं पावन गोंडा हूँ, ज़रा इतिहासों में पढ़ लेना। फिलहाल मतलब मैं तो आप लोगों से बोलूँगी, अगर लिखना शुरू करिए तो अपने बारे में और अपने शहर के बारे में ज़रूर लिखिए, जहाँ भी आप रहते हो अपने परिवेश के बारे में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम रहे या ना रहें लेकिन हमारी विचारधारा से हमने किस चीज़ को कैसे देखा वो ज़रूर पता चलना चाहिए। तो मेरे लेखक कवि गाने वाले दोस्त सारे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, फटाफट से लाइव हो जाइए, क्योंकि लास्ट में आप लोग के एक साथ जब कॉल आते हैं ना तो मेरा मन करता है ना कि ऑन एयर सबको एक साथ कर दूँ और सब लोग एक साथ अपना गाना गा ले हैं, और वो अलग गाना है यूनिटी सॉन्ग जो नहीं होता है, कम्युनिटी सॉन्ग स्कूल में हम लोग गाते थे, हिंद देश के निवासी हम सभी एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, और ऐसे भूल गई यार मुझे गाना ही नहीं याद आ रहा है। फिलहाल स्कूल टाइम के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हुआ करते थे जिनको सुन के, वो अलग कौन सा गाना था एक। अच्छा आप लोग आज मुझे चैट रूम में और कॉल भी करिएगा तो बताइएगा आपके स्कूल टाइम की सबसे फेवरेट प्रेयर कौन सी थी। मेरी तो भाई बहुत सारी थी, मैं तो मतलब प्रेयर की बात करूँ तो मुझे प्रेयर पूरी पूरी याद भी रहती थी, और मुझे प्रेयर खास तौर पे मतलब जो प्रेयर गाने वाली होती थी ना, वैसे तो इंग्लिश वाली प्रेयर और हिंदी वाली प्रेयर तो होती है आराम दे, लेकिन मुझे प्रेयर गाने वाली बड़ी अच्छी लगती थी, और स्पेशली कुछ अच्छी अच्छी जैसे ये वाला हो गई, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, एक ये थी, और एक थी ये वाली कौन सी थी यार, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, इसके अलावा ये थी, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा रूप अनेक तू एक ही है, अच्छा ये हो गई तीन हो गई, अच्छा इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, अच्छा ये हो गया, एक और सोचती हूँ, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। अच्छा जितनी मैं प्रेयर गा रही हूँ ना ये सारी मुझे याद है, आप लोग मुझे चैलेंज मत कर लेना, मुझे सारी प्रेयर याद है। आप लोग बताइए आपके स्कूल टाइम में आपके स्कूल में कौन सी प्रेयर गाई जाती थी और कौन सी आपकी फेवरेट थी और आपको भी याद थी बहुत मन से आती, और कौन कौन सी प्रेयर थी यार मुझे याद क्यों नहीं आ रही। मुझे मेरे स्कूल में तो बहुत सारी प्रेयर होती थी तो आधा टाइम तो याद करने में बीत जाता, और ख़ास तौर पर हमारे मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पर अलग अलग भाषाओं में भी प्रेयर होती थी, तो एक दो तो ऐसे थी, एक ये वाली थी, ये थी शायद असमी भाषा में थी वाली, ए माती रे मोरो मोते माती के सो मिलो, ए माती ते जीवन सो भी आकी आकी मोसीलो, ये असमी भाषा की प्रेयर थी। और यार और कौन कौन सी भाषा की मैंने याद ही नहीं आ रही अभी, मुझे मतलब सोचना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तक के लिए आप लोग भी दिमाग लगा के भेजिए आपके समाधि में कौन सी ऐसी प्रेयर थी जो आपको बड़ी पसंद थी, मतलब घर में खाना बनाते थे गुनगुनाया करते थे, मैं तो ये वाली तो ज़रूर गाती थी घर में, मतलब यूजुअली मेरा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग गाने गाते हैं लेकिन मेरे मुँह से प्रेयर निकलती थी वाली, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो मेरे घर में सब लोग कहते थे अभी सुबह नहीं हुई रात हो रही है, भगवान को भी सोने दो, तुम लोग तो हरदम जगाते रहते हो

हा सबलू जी मैंने गेस कर लिया। देखिए मुझे याद हो जाता है। और कुछ दिनों तक मैं पंजाब में भी रही, तो मुझे पंजाबी में भी प्रेयर याद है। तो डाइवर्सिटी की बात मत करिए, मुझे मतलब प्रेयर के मामले में बड़ी सारी प्रेयर स्कूलों में भैया सुनाई जाती थी, सिखाई जाती थी। तो ख़ास तौर पर मतलब लोग कहते हैं कि अब स्कूल मतलब आने वाले समय बंद हो जाएंगे, फिज़िकल क्लास बंद है। मुझे लगता है ये माहौल अगर नहीं मिलेगा तो एक इंसान का बचपन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रेयर वाला टाइम, प्रेयर में चक्कर आना गर्मियों में, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, एक अलग दुनिया है वो। उस दुनिया को जीना चाहिए, हम सभी को जीना चाहिए। और जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप लोग बहुत महंगी और बहुत कीमती चीज़ मिस कर रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगी, बहुत रेयर है। और देखिए कितनी अच्छी सी प्रेयर बताई सबलू जी ने, बड़ी अच्छी प्रेयर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सबलू जी ये प्रेयर मुझे याद दिलाने के लिए। और एक बड़ी अच्छी सी प्रेयर थी, मुझे याद नहीं आ रही है कैसी थी। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की कामना करूं। ये कैसी प्रेयर थी, जब स्कूल में गाई जाती थी ना तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते थे, एंड आई फील इट। और जब ये प्रेयर होती थी, कोई टीचर चाहे प्रपंच कितना भी कर रहा हो, यूजुअली प्रेयर टाइम में टीचर लोग पंचायत करने लगते थे, इधर उधर बातें, मतलब कोई भी है करेगा, यार हमारा कोई काम नहीं है तो हम लोग थोड़ी बहुत चाहे लेसन प्लान ही डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो टीचर्स तो। लेकिन ये जब प्रेयर शुरू होती थी, कोई भी शायद ही कोई ऐसा हो मतलब ग्राउंड में जो प्रेयर ना करे, सबके आपस में मतलब हाथ जुड़ जाते थे और सब गुनगुनाने लगते थे। बहुत प्यारी प्रेयर थी, मुझे पूरी याद तो अभी होगी शायद। चलिए इस स्टैंजा सुनाती हूँ एक दो आपको, अगर आप लोग के स्कूल में होती थी यस टाइप करके, मैं जानूँगी आप क्या बड़ी गजब की प्रेयर होती थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, प्रेयर के मामले में जब भी प्रेयर हो ना, आप लगता है कि हाँ कोई पॉजिटिव शुरुआत होती है। हम लोग घर में कभी कभी बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी सी प्रेयर हमारे पूरे दिन को बहुत ही बढ़िया बना देती है, बेहतरीन बनाती है, बेहतरीन बनाती है। हाँ सबलू जी ने लिख के गायब कर दिया, मुझे लगता है फिर से एक ठू प्रेयर लिख के भेजने वाले हैं। ऐसे थी,

लाइन भूल गई। सृष्टि के तार भेजे झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। और ऐसे करके बड़ी अच्छी सी प्रेयर है, जिसको भी याद हो मुझे ज़रा लिख के भेजना, मुझे ये प्रेयर भूल रही है। बहुत बढ़िया सी प्रेयर थी, सो वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर, मतलब जो मैंने, वैसे सारी प्रेयर अच्छी होती है यार, सच्ची बताऊँ ना, जब गाने लगो तो सारी प्रेयर अच्छी लगती है। तो चलिए आप लोगों से आज मैं आपकी प्रेयर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रेयर सुनाती हूँ मैं आपको। प्रेयर से मुझे याद है, अभी लेटेस्ट एक क्या कहते हैं वेब सीरीज़ आई है, जिसमें बहुत बढ़िया सी प्रेयर बच्चों ने गाई है, सुनाती हूँ मैं आपको।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों की हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
8: दोस्तों वेलकम बैक। वापस से शुरुआत करते हैं उसी सुरीली शाम की जिसका आगाज काफी देर पहले हो चुका है। हाँ तो सुरीली शाम हो, साथ आप हो और क्या चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरी मतलब मैंने अपनी जो डायरी के पन्ने हैं उनको खोला और आप लोगों को बहुत कुछ सुनाया। और सुनाने से याद आया यार, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे सुनाते हैं ना कि सुनाने के बाद उनके सुनने की मन ही नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं जिनको सुन के इंस्पायर्ड फील होता है। तो आज मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कौन कैसी पर्सनैलिटी का होता है। अगर आपको पता करना हो कि भाई किसी की पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहचानते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज को। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है इंसान जाना पहचाना तो वो कैसा मतलब क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आप किसी की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उसके बात करने के तरीके से समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है इंसान को ही पहचानना। तो सबसे पहला जो है बात करने की जो एनर्जी है, तो पहले तो बात करने की एनर्जी दो तरह की लोगों में दिखती है। एक तो होते हैं बहुत सारे मतलब ऐसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और दूसरे होते हैं इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट वही बहिर्मुखी बोलते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा सोशल रहते हैं, मतलब मिलना पार्टी करना बहुत पसंद होता है। और दूसरे होते हैं अंतर्मुखी जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, गहराई से रिश्ते समझते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा आपसे बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा सामने वाला बहुत ही अच्छा है। हो सकता है जो बहुत कम मिल रहा है या बहुत कम बोल रहा है या बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अगला है बिहेवियरल कैटेगरीज। पूरी तीन तरह की होती है इसमें बिहेवियरल कैटेगरीज के, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो तीनों टाइप के बारे में बताती हूँ। पहली टाइप जो है वो होती है बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप के होते हैं, हर जगह उनका कॉम्पिटिशन टाइप का लगा रहता है। मतलब सामने वाले ने कहा कि मैंने इसकी क्या कहते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ यार मैंने भी तो उसकी क्या कहते हैं डार्क फैंटेसी खाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उनके दिमाग में कोई एक अलग सी सोच आ जाएगी। तो ये समय के बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी हैं तो पाबंद भी होंगे, हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। तो ये टाइप ए है जो कि महत्वाकांक्षी लोगों की होती है, कॉम्पिटिटिव थोड़े से होते हैं ये। टाइप बी जो है ये काफ़ी शांत रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं भाई, बड़े रिलैक्स, चलो ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं दूसरी मिल जाएगी, हर परिस्थिति में अपने आप को ऑल इज़ वेल टाइप के। कोई भी दबाव नहीं लेते, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं लेंगे। मतलब कोई सामने वाला जो बॉस ने कहा भाई तुमको नौकरी से निकाल दें, ठीक है भाई निकाल दो दूसरे ढूंढ लूँगा, इस टाइप के। टाइप सी जो है वो बड़े मज़ेदार हैं, एनालिटिकल होते हैं ये, बहुत मतलब विश्लेषण करते रहेंगे, विस्तार से काम करेंगे, ये अपनी जो भावनाएं हैं वो जल्दी किसी से जाहिर नहीं करेंगे। सामने लगा है मतलब इनको कोई जल्दी भी नहीं होती और कोई मतलब ये भी नहीं है कि मतलब रिलैक्स हैं, इनके दिमाग में चलता रहेगा, दिखाएंगे नहीं। अगला है वर्किंग स्टाइल। किसी को पहचानना है तो उसके वर्किंग स्टाइल से भी आप पहचान सकते हैं कि बंदा कैसा है। पहला होता है डायरेक्टर टाइप का या डोमिनेंट टाइप का। ये जनजान लीडर होते हैं और ये नियंत्रण रखना जानते हैं, फैसले लेना जानते हैं, परिणाम इनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट को लेके परेशान रहते हैं। तो ये लीडरशिप इनकी रहेगी, कोई भी काम हो रहा हो, मान लो कि घर में आपके सब्जी बन रही है, ठीक है चार लोगों ने सोचा कि ये बनाना है, वो तुरंत लीडरशिप, क्या बनाना है लाओ मैं बनाता हूँ, क्या बनाना है इसकी सब्जी है, ठीक है क्या क्या है, अच्छा ये नहीं है लाओ मैं दूसरी सब्जी बना दूँ। मतलब अवेलेबिलिटी और रिजल्ट ये दो चीज़ों में बड़ा विश्वास रखते हैं, मतलब जो है उसको तुरंत करके किनारे करना है। दूसरा है मिलनसार, सोशलाइजर टाइप के इनका वर्किंग स्टाइल है। ये मिलनसार होते हैं, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं ये लोग जो होते हैं, ये लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं और टीम में तालमेल बिठाने में बड़े माहिर होते हैं। कोई काम करना है तो वही सबको साथ लेके चलते हैं, यानी कि मैं ये अकेले जाके कर लूँ। तीसरे हैं थिंकर्स, ये बहुत ज़्यादा तार्किक यानी कि लॉजिकल बातें करते हैं, ये लॉजिक देखेंगे, मतलब यहाँ काम करने से कोई फ़ायदा है नहीं है, रहने दो यार मैं क्यों करूँ। कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी मतलब जानकारी ले लेंगे, आंकड़े बिठा लेंगे, हाँ मामला सेट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करेंगे। चौथा टाइप जो है इसमें सपोर्टर वाला है, ये बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं, शांत होते हैं, मददगार होते हैं, ये दूसरों के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, ये विश्वास रखते हैं, टकराव से बचते हैं, इधर उधर मतलब उलझनों में बचेंगे। और चौथा जो एक तरीका है जिससे आप पता करें कि सामने वाले का स्टाइल कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ 6393316429 पे ही आपको कॉल करना है। और आपके 3-4 कॉल मैंने मतलब मिस किए जो कि आपके मतलब गाने के टाइम थे, तो मैं चाहूँगी गाने के टाइम जिनका भी कॉल आया था वो अभी कर सकते हैं। तो लास्ट जो टाइप है वो है बॉडी लैंग्वेज देख के, बॉडी लैंग्वेज अक्सर कहते हैं ना इनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो कैसे अच्छी नहीं लग रही, तीन ही तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपको सबसे पहले जो दिखेंगे वो वैरायटी जो है और वो है सीधे खड़े होकर आंखें मिलाकर बात करने वाले लोग। मतलब सामने वाला इंसान अगर आपको देख के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा असर्टिव है, पॉजिटिव है, बंदा आत्मविश्वासी है, स्पष्ट है, जो भी कहेगा क्लियर टू कट कहेगा। जो आपको देख के डायरेक्ट बातें करते हैं, आपको देख के बातें करते हैं, कॉन्फिडेंटली बातें करते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते। दूसरा टाइप आता है बातें करते करते हाथों के हाव भाव, मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साही, जिनके हाथ अक्सर देखा होगा ना, देखिए अभी आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हाथ हिला हिला के बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते, उत्साह उनके अंदर कूट कूट के भरा होता, भी कह दो तो पहाड़ ढकेल देंगे, तो बहुत ज़्यादा मिलनसार है। आप एक बार मिलोगे तो दूसरी बार मिलने के लिए वो खुद ही कह देंगे भाई मिलते हैं चलो, ठीक है। तीसरे जो होते हैं वो नज़रें चुराना और हाथों को बांध कर रखते हैं, वो घबराए हुए थोड़े से शर्मीले होते हैं, ठीक है। जो कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं वो बेसिकली सबसे बेस्ट हैं, बीच वाले भी ठीक हैं, लास्ट वाले जो हैं जो शर्मीले हैं तो उनकी बातों को मन मतलब आप समझ नहीं सकते। कंचन रावत हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सखी, ओके मैं सुकूल पुरवा से, आज मैं बहुत दिन से के बाद आपको सुन रही हूँ, ओके क्या बात है कंचन, कैसी हैं आप, आपका तो नाम ही बड़ा प्यारा सा है कंचन, कंचन जानती हैं किसे बोलते हैं, बहुत ही कीमती आपका नाम है और उससे भी ज़्यादा कीमती आप खुद होंगी। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और सुन के बताते हैं कि कौन किसका फ़ैन है, और ये गाना सुन के बताइए कि आपकी लाइफ पे ये सेट है कि नहीं, आप किसी के फ़ैन हुए हैं या नहीं हुए हैं।

आप भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना के रखिए कि दुनिया आपकी फैन हो जाए। और देखिए कंचन, मैंने आपको बहुत सारे क्राइटेरिया बताए, आप देखिए आप कौन से वाले क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं, या फिर अपने घर में कोई हो तो उससे पूछो कि मैं यार ये वाला क्राइटेरिया को फॉलो करती हूँ कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप सामने वाले से आंखों में आंखें डाल बात के बात करती हैं, या हाथ हिला हिला के बात करती हैं, या फिर मतलब एकदम हाथ पीछे करके स्टूडेंट की तरह शर्माते हुए बात करती हैं?

0: तो चलिए फैन आप बनते रहेंगे एक दूसरे के। चलिए पहला कॉल देखते हैं किसका है, आवाज सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: अनिल।
0: अनिल जी कैसे हैं, क्या हाल है?
1: गर्मी से बहुत बुरा हाल है।
0: हाँ, अपने यूपी में ही बारिश नहीं हो रही, हर जगह हो रही है लगभग। दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश इधर हो रही है और मुंबई तो भाई जलमग्न है पूरा।
1: तो क्या आज का प्रोग्राम है, कुछ गाने होने का?
0: बिल्कुल प्रोग्राम तो है ही, वो तो आप लोग का मंडे आप ही लोग का रहता है, मैं तो बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करती। तो सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे करूंगी, आपके बताइए स्कूल जाते समय आपकी पसंदीदा प्रेयर कौन सी थी, मतलब कौन सी प्रार्थना आपको बहुत ज्यादा पसंद थी? अक्सर हम लोग के यहाँ मतलब इंडिया में गाने वाली प्रार्थनाएं होती हैं।
1: हम लोग के तो पहले होता था वंदे भारत से ही, मतलब होता था जो हम लोग छोटे थे, मतलब स्कूलों में पढ़ते थे यार, वहां तो था। आपसे पूरा याद तो नहीं आ रहा है। जय हो करके था
0: ये वाला तो नहीं था, भारत जय जय, भारत जय जय, जागृत भारत, जय जय जय, कुछ ऐसे करके? मुझे प्रेयर के मामले में बहुत सारी प्रेयर्स याद हैं।
1: हमको लग रहा है कि टीचिंग वीचिंग करती हैं आप भी।
0: टीचिंग तो नहीं करती हूँ फिलहाल, कर रही थी लेकिन अभी इधर तो काफी दिनों से नहीं कर रही हूँ। नहीं, मेरी ज्यादातर मतलब मेरी जो प्रेयर्स की या कोई भी चीज है तो वो मेरे स्कूल से, मतलब स्कूल टाइम में बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी हमेशा से, तो जब भी कोई नई चीज सिखाई जाती थी तो बहुत रुझान से सीखती थी, चाहे वो प्रेयर ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करिए, कौन सा गाना सुनाएंगे आप?
1: मैं आज रफी साहब का और ये किशोर देश दादी ने इसको गाया है, तुम बिन जाओ
0: स्वागत है।
1: तो अगर कहें तो मैं शुरू करूं।
0: बिल्कुल।

तुम बे जाओ कहा, तुम बे जाओ कहा के दुनिया में आके कुछ न पे चाहे सनम तुमको चाहे के तुम बे देखो मुझे तेरे कदम तक सिर्फ प्यार में जल से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं तुम क्या जानो कि भटकता तेरा किस किस गली तुमको चाह के तुम जान कहा तुम जाओ कहा के दुनिया में आगे कुछ न पे चाह तुमको चाह के तुम अब है सनम हर माँ।

0: क्या बात है, इतना सुरीला और ऊपर से, मतलब सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, आप लोग को गाना कैसे याद रहता है? बहुत बेहतरीन, बहुत।
1: देखिए नहीं, मैं याद ही तो नहीं, अब बताया बस उसका जो सॉन्ग है, गाना है, शब्द भूल जाते हैं तो लिख लिया जाता है,
0: क्या
1: बाकी याद नहीं है। हाँ बाकी तो याद है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए एक बार देख लिया।
0: क्या बात है, पर बहुत सुरीला गाया आपने, और जैसा कि ठहराव हमेशा से आपका रहता है, रफी साहब के गाने जब भी आप गाते हैं तो वही ठहराव सुनने को मिलता है, मजा आ गया। क्या बात है, बहुत
1: खूबसूरत
0: अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: तो लिसनर्स, अभी आपने सुना अनिल जी की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना, और मतलब मज़ा आ गया, शाम की शुरुआत इतनी सुरीली हुई। और अगले कॉल की और भी हम लोग रुक करेंगे, लेकिन अभी कॉल्स आ नहीं रहे, तो अगले कॉल का इंतज़ार ही करेंगे। तब तक के लिए आप एक और सुपर फास्ट गाना, रणबीर वाला गाना सुन लीजिए और बताइए कैसा है। फ़िलहाल रणबीर कौन से रणबीर है ये तो आप गाना सुन के बाद ही गेस करेंगे। तो सुनिए ये प्यारा सा गाना और फिर वापस से ऑन एयर होते हैं आपके साथ।

0: सो वापस से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसी मसाला आरजे बिना वाला एंड यस आप सबकी आवाज़ सुनने को बेताब, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए आप लोग आज परेशान रहते हैं। आज मंडे भी है और मंडे यानी कि आपका डे रहता है, लेकिन आवाज़ें हमें उतनी सुनने को नहीं मिलती जितनी चाहिए। आज आप लोग ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, लेकिन हाँ सच कहें तो गर्मी का जो कहते हैं ना, जैसा कि अनिल जी ने भी कहा कि गोरखपुर में भी बहुत गर्मी है, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हाँ देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, मानसून आएंगे। फिलहाल तो दिल्ली मुंबई सब जलमग्न है, काफ़ी बारिश हो रही है हर जगह, बस हम ही लोग थोड़ा सा लेट हैं। कोई बात नहीं, जिसके यहाँ लेट में बारिश आएगी तो ज़्यादा दिन तक रहेगी और आगे भी बातें करेंगे। फिलहाल अभी हमारे एक लिसनर, प्यारी सी लिसनर का कॉल आया था श्रद्धा का, जो कि अक्सर आती है तो वो कुछ अपनी आवाज़ में लिख के लाती है, तो उनके कॉल का भी इंतज़ार है। पिछले काफ़ी देर से उनके दो कॉल आए, लेकिन म्यूज़िकल ब्रेक के कारण हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन देखते हैं कौन आ रहा है। जुगल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? अनिल जी कैसे हैं आप? और कंचन ने आते ही पहले गाने की फरमाइश की है, तो कंचन जाने से पहले मैं आपका गाना प्ले करके जाऊंगी, डोंट वरी। और शाम है धुआं धुआं, तो चलिए अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या मैम।
0: नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हैं सबलू जी?
1: बस फर्स्ट क्लास है, और मुंबई का कहा जाए तो यहाँ तो दिन रात बारिश है।
0: और मैं तो कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ भी ट्रांसफर कर दीजिए।
1: अब यहाँ से ट्रांसफर तो लग रहा है कि बिहार में सावन भादो में तो काफी बारिश होता ही है।
0: हाँ, लेकिन इधर मतलब सुनने में आ रहा है मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हो रही, काफी ज्यादा
1: एकदम, काफी जलमाव, रेलवे पटरी तो दिख ही नहीं रही है, और उसके बाद रोड पे जब गाड़ियाँ चलती है तो उसका आधा चक्का तक दिखने को नहीं मिल रहा है।
0: क्या कहने, चलिए आप सेफ्टी से रहिए वहाँ पे, क्योंकि बारिश है तो परेशानियाँ भी लाती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बारिश एक सुहाना मौसम मात्र है, लेकिन जो इंसान रोज घर से बाहर निकल रहा है, घर में आ रहा है, तो उसके लिए एक परेशानी का मंजर भी है बारिश।
1: यहाँ कितनी भी बारिश हो फिर भी इंसान अपना काम में लगा ही रहता है,
0: क्योंकि बारिश वहाँ की एक कहते ना आदत बन गया है, जैसे कहते ना कि सुबह होना शाम होना, तो वहाँ बारिश का मौसम ऐसा है कि हर साल इतनी होनी ही है, तो क्या करें। तो क्या सुनाइएगा आज सबलू जी?
1: क्या सुनेंगे आज, आप ही बता दें।
0: आप अपनी आवाज में देखिए, आप कविताएं भी बहुत बेहतरीन लिखते हैं और गाना भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो जो भी सुना देंगे काफी होगा।
1: चलिए आज कविता का ही लाइन लेकर आए हैं।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: जो कविता का लाइन है, मैं फूल बनूं, अगले जन्म में फूल बनूं मैं, इसी उपवन की शान बनूं मैं, पवन के संग लहराऊं मुस्कुरा कर, माटी राहों की पहचान बनूं मैं, ना मांगूंगा कुछ धारा से ना अंबर से, बस देता रहूंगा खुशबू हर डगर पे, राही थके हो मन हो उदास जिनका, सुकून की सांस बनू उस पे पहर बन के, भौरों की अपनी मधुरिमा दे जाऊं, तितलियों के संग नाच गुनगुनाऊ, रंगों से सींचूंगा इस जग की धरती को, सबके आंगन में बहार बन के लहराऊ, जब झुलसे धूप की थकी मादी आंखें और ना सुना लगे चहुओर की आकाश, तब किसी कली से खिल के मुस्कुराऊ, दिलों की उम्मीद का उजास बनूंगा मैं, और जब आए अंत का यह पावन क्षण, जब बिछड़ूंगा मुझे इस मिट्टी की चमन से, तब चाहूंगा यही मांगूंगा ईश्वर से, इसी की काम आ जाओ जाते इस जीवन में, उस वीर की पथ सजाओ जो लौट के घर, जिसने माँ की माटी को चुमकर माथ पर लगाए, उस अंतिम यात्रा की दिश जाओ फूल बनकर, शहीद बनकर सिंगार बनूंगा मैं जाकर, या उस मूर्ति के चरणों में चढ़ जाओ जो जग का उधार करे, जगदम्बा हो या शिव हो, प्रभु की चरणों में अप्रीत हो जाओ, देव पूजन की सुबह अभियान बनू, जीव तो खुशबू बनकर, मरु तो अर्ध्य बनकर, जन्म का सार्थक ना रहू व्यस्त बनकर, यही है अभिलाषा मेरी, यही है प्रार्थना, फूल बनकर जन्मो, मैं फूल बनकर जन्मो।
0: क्या बात है, एक तो मैंने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी थी, अब दूसरी मैं जो फूल की परिभाषा या कहूँ अभिलाषा पढ़ रही हूँ, बहुत ही सुन रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन। क्या बात है, तो सबलू जी आप ही ने लिखी है?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बेहद उम्दा लिखा आपने, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लिखते रहें और एक दिन ऐसा आए कि मुझे आपकी एक पुस्तक पढ़ने को मिले।
1: एक लंबा समय के बाद समय, अब आजकल जो हमारी जॉब जो बोरीवली से ट्रांसफर होकर सांता क्रूज में हुआ है, इसके वजह से समय नहीं दे पाते थे कविता लिख पाऊँ। अब जब भी आते थे तो थोड़ा समय निकाल के ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ते थे रेडियो ज्ञान स्क्रीन से। कहीं ना कहीं हमें मुंबई में रहकर इतना समय व्यस्त रह कर भी हम आपको ज्ञान स्थली का समय देना, ये हमारे लिए बहुत एक आभारी है।
0: और मैं ये कहूँगी कि आपने अपने रूटीन में हमें सेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ऐसे फ्री भी एकदम रहते हैं लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते हैं, और मुझे लगता है रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी मतलब अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो आप अपने मतलब अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र में है कि आपको कोई फोन चलाने से मना ना करे तो आप आराम से सुन सकते हैं।
1: एक बात और आपको हम बता दें कि शायद आपको पता नहीं होगा, हम कुछ दिन पहले नेपाल की धरती पे राजदेवी एफएम में हम आरजेवी थे, वहाँ पे प्रोग्राम राजदेवी सदाबहार भी हम चला चुके हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत आपने मतलब अपनी जो कहते हैं ना कि जर्नी है वो बहुत ही रंगीन बनाई है, जैसे रंगीन फूलों की तरह, बहुत कुछ सीखते सिखाते और फिलहाल आज आप सुनाते भी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सबलू जी, थैंक यू
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार। तो चलिए, सबलू जी ने बहुत प्यारी सी कविता सुनाई, एक फूल की मतलब क्या डिज़ायर है, वो क्या करना चाहता है, फूल एक्चुअली में किसी की मतलब मुस्कान बनना चाहता है या किसी के लिए क्या करना चाहता है, ये सारी चीज़ें कविता में समाहित थी। अगले कॉल को ऑन एयर करना चाहती हूँ, देखते हैं किसकी आवाज़ है। एक कॉल जो कि ऑन एयर होते होते डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम।
0: शुभ संध्या श्रद्धा। ओके श्रद्धा, आपका कॉल वापस से आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका कॉल लग गया वापस से। तो आज क्या सुनाने वाली हैं श्रद्धा आप?
2: जी, अपने पापा के
0: फेवरेट सॉन्ग सुनाएंगे आपको। ओके ओके, थैंक यू, स्टार्ट करें क्योंकि टाइम कम है, तो मैं चाहूंगी कि और भी कॉलर्स को टाइम मिले, और आप ही की तरह बहुत सारे लोग लाइन में हैं।
2: बिल्कुल
0: मैम, स्वागत है।

0: थैंक यू सो मच श्रद्धा। और बहुत प्यारा गाना आपने पापा का फेवरेट सुना है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, सुन के मजा आ गया, क्या बात है। थैंक यू सो मच, हमेशा से आप सुरीला गाती हैं और आज भी आपने बेहद सुरीला गाया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं। एक और कॉल हमारे साथ ही था, मुझे लग रहा है वो होल्ड पे था, अब उनको ऑन एयर करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार विना मैम।
0: नमस्कार, और आपका कॉल मुझे लगता है होल्ड पे चल रहा था और तब से आप इंतजार कर रहे थे।
1: ओके, कोई बात नहीं सर।
0: कैसे हैं? शुभ संध्या रेस जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपकी आवाज का। और देखिए
1: मैं एकदम ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हो?
0: जी बिल्कुल। और आप लोग कुछ सुन के मैं मंडे के दिन मतलब मैं और भी ज्यादा ठीक ठाक हो जाती हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते तो मैं ही बोलती हूँ लेकिन मंडे को आप लोग बोलते हैं, आप लोग को सुनती हूँ मैं। तो आज आप क्या सुनाएंगे? वैसे
1: चाय पी लीजिए आकर।
0: हाँ, अब ऑन एयर चाय तो पिलाएंगे ही। हाँ बिल्कुल, मैं आपने पूछा मतलब मुझे इतना ही बहुत ज्यादा काफी है, मतलब मुझे लगा कि मैंने पी लिया। और आप लोग हंसते मुस्कुराते हैं ना, तो जैसे लगता है कि हम लोग को एनर्जी मिल रही है। तो आज आपकी आवाज़ में क्या सुनने को मिलेगा?
1: आप हंसते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलती है।
0: चलिए ठीक है, मैं कल से आके 10-15 मिनट पहले हंसूंगी, आप लोग की एनर्जी आ जाए, फिर मैं आगे बोलूंगी। जी जी स्वागत है।
1: महबूब मेरे, तू ही तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, तू है तो डर जाती है कीमत ना समती, जाने तीन लाख है सोने सबनम की, यही भी मानी है मरना भी यही है। महबूब मेरे, बस इतना सुनाना था सर आपको।
0: क्या बात है, इतना अच्छा गाना शुरू किया आपने और अधूरे में छोड़ दिया, लेकिन मजा आ गया, क्या बात है। ये बात तो सही है कि जब आपको मतलब किसी भी जगह हो आप और आपको गाने को कह दिया जाए तो गाना याद ही नहीं आता कौन,
1: पूरा लिखना पड़ेगा।
0: क्या बात है, लेकिन गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा था, ये बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे लगता है कि जितने भी लिसनर सुन रहे होंगे उन सबका फेवरेट होगा, तो सबसे पसंदीदा। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत गाना, और थैंक यू फॉर डेडिकेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, रईस जी ने शाम की शान बढ़ा दी और बहुत प्यारा सा गाना गाया, महबूब मेरे महबूब बरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं, क्या बात है। तो चलिए, एक बढ़िया सा गाना हम लोग सुन रहे थे और एक और गाने की शुरुआत करते हैं, एनर्जी वाले गाने जिनको सुनने का मन करता है। लेकिन उससे पहले कॉल आ गया, मैं चाहती हूँ सारे ही कॉल मैं ऑन एयर लूँ, तो नेक्स्ट कॉल देखते हैं किसका है। हेलो,
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्कार, कैसे हैं? चंद्रभान जी, आपकी आवाज को तो मैंने पहचान लिया।
1: हम भी आपकी आवाज को पहचानते हैं।
0: मतलब दोस्ती आप निभाते हैं खूब लग रहा है, जब दोस्त कॉल करते हैं तो आपका भी कॉल आ ही जाता है।
1: जी जी, और आप अच्छी हैं? हाँ, ठीक है
0: बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप क्या सुनाने वाले हैं? वैसे आपकी आवाज में तो जो भी आप सुना दें चुन के बहुत खूबसूरत होता है, क्या सुनाइएगा?
1: मुकेश जी की आवाज में गाना सुनाना चाहते हैं आपको।
0: जी जी जी, स्वागत है स्वागत है।
1: मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। कितनी सदियां बीत गई है आए तुझे समझाने में, मेरे दोस्ता धीरज वाला है कोई और जमाने में, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरी खातिर मैं सरसा जूं, सर से धरती सावन को राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: है, हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा के नहीं बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल। थैंक यू, धन्यवाद।
1: क्या बात है, मतलब प्रोग्राम की क्लोजिंग इतनी सुरीली होगी मुझे नहीं पता था, और इतना खूबसूरत सा गाना आपने इतने खूबसूरत अंदाज में सुनाया, क्या बात है, क्या बात है।
0: हम तो जब भी गीत गाते हैं आपकी आवाज को सुन करके और आप को समर्पित करके मैं गाता हूँ।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: अब बाकी मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज कैसी होगी, हम कोई एक्टर कलाकार तो है नहीं, आप मेरी तारीफ करती हैं बस।
1: क्या बात है, लेकिन जो तारीफ के काबिल होता है लोग उसी को सुनते हैं और उसी की तारीफ करते हैं, और हमेशा से जैसे आप गाते हैं आपका अंदाज वही रहता है, वही ठहराव, वही पकड़। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए, चंद्रभान जी ने कॉल किया और प्रोग्राम भी अब ओवर होने को है, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, और आपकी आरजे सिंपल भी आपके गानों की लिस्ट लेके साथ में बैठी हुई हैं, वो भी सोच रही हैं कि आज मैं कौन कौन सा गाना सबसे पहले प्ले करूँगी, ये तो आरजे सिंपल ही डिसाइड करेंगी, क्योंकि गीत आपके नाम से होते हैं लेकिन बजते उनके हाथ से हैं। तो अपने गीत अपने नाम से सुनने के लिए तैयार रहिए, आपका अगला प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहा है गीत आपके नाम से। अभी तक आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला द सुरीला शो ऑन मंडे, यानी कि आपकी आवाज़ में गूंजता है गोंडा, गाता है गोंडा, गुनगुनाता है, लिखता है, मुस्कुराता है गोंडा, क्योंकि ऑन एयर 89.6 FM पे आता है गोंडा। तो अगले मंडे फिर गोंडा के साथ, यानी कि गोंडा वालों के साथ, आसपास 89.6 FM के लिसनर के साथ हम लाइव होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। तो कल के लिए मैं बता देती हूँ, कल की लव स्टोरी आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा शाम के शो गोंडा मैसे मसाला में, आरजे बीना वाला में। अभी आप सुन रहे थे अपनी आरजे बीना के साथ शो, कुछ ही देर में आप लाइव होंगे अपने फेवरेट शो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बजाते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

है आप सभी का आपके अपने फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुनहरा सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपकी और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कंचन रावत आपका स्वागत है, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सावंत मुंबई से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, रामकृष्ण नंदन मिश्रा, अशोक मिस्त्री आपका भी स्वागत है, दरक्षा अंसारी सुरेश कुमार जी चौक से, निभर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है कंचन राउत की, उनको सुनना है गाना राजा कैसे बैठू तोहरी मोटरिया में, शायद ऐसे ही कुछ लिरिक्स हैं। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट जीवन युद्ध का नगमा हमारी कंचन राउत की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हमने एंजॉय किया है ये नगमा किसकी फरमाइश पर? कंचन राउत की फरमाइश पर। पढ़ेंगे हमारी आज की दी फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। संतोष कुमार जी गिलौली से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, गोंडा का आज का मौसम तो इतना खास है, इतना स्पेशल है, इतना मजेदार है कि मुझे तो बहुत ही मजा आया आज के मौसम को देख के। हाँ, भले ही थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था दिन में, भले ही थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी दिन में, लेकिन अभी इस टाइम का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते वही है, शहर वही है, लेकिन नजरिया बदल रहा है। सो दोस्तों, आज के शो में मैं आपकी वो आवाज बनूंगी जिसे आप अक्सर खामोशियों में दबा देते हैं। तो अगर आप कहीं भी हैं, दुकान पर, ऑफिस में, या अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग थामे हुए हैं, या फिर अपने घर में बस एक कोने में सोफे पर बैठे हुए हैं, या फिर आप अपने किचन में काम कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कहीं भी बिजी हैं और आपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM ट्यून कर रखा है, तो कान लगा लीजिए और वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि यह है गोंडा शहर की धड़कन और यहाँ दिल की बात बिना पर्दे के रखी जाती है। सो हमने एंजॉय तो कर लिया है पहली फरमाइश, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट यूपी बिहार में फेमस वाला नगमा मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी का सबीहा की फरमाइश पर। आई लव दिस सॉन्ग।
1: दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग दग

ओहो, I love this song. I really, really, really love this song. हमने enjoy किया मेरे ब्रदर की तुलहन का ये वाला नगमा, super duper duper hit नगमा हमारी सभी की परमाइश पे जो की है गोंडा से. Now let's go to अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ते हमारी आज की अगली परमाइश की तरफ. और अगली परमाइश हमारे पास में है दोस्तों हमारे जग्गू दादा की और हमारे ज्ञान स्थल 89.6 FM के जुगल किशोर वर्मा मींस जग्गू दादा को एमपी से सुनना है अवतार मूवी का गाना दिन महीने साल गुजर जाएंगे. सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा किशोर कुमार लता जी की आवाज में हमारे जग्गू दादा की परमाइश पर. हाँ जग्गू दादा बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है. सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा. और आज आपकी दिलों की जज्बात उमड़ उमड़ के क्या कह रहे हैं, आज आप लोग के इमोशंस कैसे हैं, आज आप लोग की फीलिंग कैसी वाली है, सैड वाली है, एक्साइटमेंट वाली है, दुखी वाली है, खुशी वाली है, और सस्पेंस वाली है, या फिर सरप्राइजिंग वाली है, या फिर उलझन वाली है, जैसी भी है मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना. फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला गाना.

महीना दिन महीने साल किशोर कुमार लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पे बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले सबलू सावंत जी का मुंबई से कहना है कि तेरी यादों को कैसे मिटाऊं मैं, जो मेरी आंखों से बहते हैं वो आंसू कैसे छुपाऊं मैं। तुम तो बहुत दूर चले गए हो मुझसे, अब इस तन्हाई में कैसे जी पाऊं मैं। हम बस यूं ही रोते रहे, वो यूं ही किसी और के होते रहे। आय हाय, इतना दर्द भरा लाइन, इतना दर्द भरा मैसेज था सबलू सावंत जी की तरफ से। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों चांदनी की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना पिया ओरे पिया। सो इंजॉय करते हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा हमारी चांदनी की फरमाइश पर।

दोस्तों शाम की महफिल में जब ये धुन बजी तो जैसे वक्त ही ठहर गया। पिया ओरे पिया, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, एक इमोशन है जो सीधे दिल को छू जाता है। सो आप लोगों को भी ये गाना उतना ही ज्यादा पसंद आया है जितना आपकी आरजे सिंपल को? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से आपका भी स्वागत है, और अनिल वर्मा जी सादापुर से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। इनका कहना है कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब आपकी बात होती है, लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब आपकी बात होती है, आप बोलती हैं तो लगता है जैसे बरसात होती है। सो थैंक यू सो मच, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ओ माय गॉड, मैंने इस खूबसूरत से नगमे को एंजॉय कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बार फरमाइशी की महफिल में ये गाना बजाए। क्यों गीता जी, सही कहा ना मैंने? सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है ओल्ड इज गोल्ड वाले नगमे की। एंजॉय करते हैं ये नगमा मोहम्मद अजीज की आवाज में, हमारे मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर, जो की है बाराबंकी से। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, अगर यही सब समझने लगे ना दोस्तों, तो सबको अपना गम कम लगने लगे और सब खुशी खुशी रहने

दोस्त, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला दर्द भरा नगमा मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। और गीता श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा और बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया चुलबुली कहने के लिए, क्योंकि आप ही ने मुझे चुलबुली कहा है और तो मुझे चुलबुली कोई नहीं कहता, नकचड़ी तो सब कह देते हैं। सो थैंक यू सो मच। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुनीता मौर्य की गुड़वा घाट गोंडा से, और गुड़वा घाट से सुनीता मौर्य जी को सुनना है गाना नवराई माँ जी। सो इंजॉय करते हैं इंग्लिश विंग्लिश का सुनिधि चौहान की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आज की प्लेलिस्ट तो आप लोगों ने चुन चुन के बनाई है दोस्तों। लव यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइशी गीत को सुनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया जरूर करेंगे सबलू सावंत का। और सबलू सावंत है मुंबई से। जी हाँ दोस्तों, सबलू सावंत जी को बोरीवली मुंबई से सुनना है गाना दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। ओ हो हो, ओ माय गॉड, अरे पीछे तो देखो, रोको राजू रोको। इंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक वाला नगमा सबलू सावंत की फरमाइश पर जो कि है मुंबई से। स्टे ट्यून्ड। क्यों मजा आया ना? अभी और मजा आएगा, पूरा गाना सुनो तो सही दोस्तों। आहा, परम आनंद, अति आनंद, आनंदम आनंदम आनंद।

So, दोस्तों उदित नारायण जी की आवाज और ये सदा बहार धुन दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता ने, तो आज रेडियो ज्ञानस्थली की शाम की महफिल में चार चांद नहीं हजार चांद लगा दिए हैं, लाखों चांद लगा दिए हैं। 90s के दशक का ये प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट गाना इतना रिफ्रेशिंग है, ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता है। इस गाने को आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार तरोताजा महसूस करोगे। क्या आप लोग को भी ये गाना पुरानी यादों में ले गया है? हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दीवानगी को मेरे तू पहचान जाएगी। सो इंजॉय करते हैं गैम्बलर मूवी का ये गाना विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, उषा कश्यप आपका स्वागत है और प्रमुख कुमार जी लुधियाना से स्टे ट्यून्ड। और आपकी फीमेल जी ने तो कोई रिप्लाई दिया ही नहीं।

जीवन पे तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया हमने। एंजॉय किया है गैम्बलर का ये नगमा। बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है संतोष कुमार की गिलौली से। संतोष कुमार को गिलौली से सुनना है गाना प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। सो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये नगमा संतोष कुमार की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो रोशनी रावत।

नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। लता जी की शब्बीर कुमार की आवाज़ में वो सात दिन का ये नगमा हमने इंजॉय किया है संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। गीता श्रीवास्तव को सुनना है सिम्बा का गाना तेरे बिन, सो इंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, हाउ रोमांटिक वाला नगमा रणवीर सिंह सारा अली खान का गाना गीता श्रीवास्तव की फरमाइश पर।

सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये वाव वाली फरमाइश थी सिम्बा मूवी की गीता श्रीवास्तव जी की तरफ से। गीता श्रीवास्तव जी हैं गोंडा से और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्त सौरभ मौर्य की गोंडा से। और सौरभ मौर्य को सुनना है गाना जग घूमिया। सो एंजॉय करते हैं फिर से बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेकिन इस बार सुल्तान मूवी का है गाना और एंजॉय करेंगे ये नगमा हम सिर्फ और सिर्फ सौरभ की फरमाइश पर।

जग घूमया थारे जैसा न कोई। सुल्तान का ये नगमा हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही प्यारे से नगमे की। जी हाँ, रब्बा मैं तो मर गया हुए। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा। इस नगमे की फरमाइश हमारे पास में आई हुई है के दुबे की तरफ से, और के दुबे को माधोपुर से सुनना है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा भी इतनी देर में कर लेना और फिर से अपने एंटरटेनमेंट की महफिल में आ जाना। Stay tuned, everyone.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
7: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
8: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो क्या हाल चाल है गोंडा, सब बढ़िया ना? एकदम वेल वेल वेल डन, एकदम चकाचक ना? सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, इट्स कुमार एमपी रीवा से आपका भी स्वागत है, और नीना वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गोरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गोरा चौकी से सुनना है गाना गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया। तो पिया मिलन मूवी का ये गाना फाइनली हम इंजॉय कर लेते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी फ्रॉम सऊदी, स्टे ट्यून्ड।

था गुलाबी चुनरिया, हमने एंजॉय किया है ये नगमा सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की और उनको सुनना है गाना चुरा के दिल मेरा। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये हार्ट टचिंग सोलफुल सॉन्ग सदा बहार नगमा सिर्फ और सिर्फ उषा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। टिंग टिंग

के दिल में रहा। So, उषा कश्यप की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना जिंदगी बन गए हो तुम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। और ये नगमा है कसूर मूवी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल। स्टे ट्यून्ड।

मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से और के गुप्ता की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। के गुप्ता को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से और निबर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है गाना हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा और लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, बहुत ही प्यारा सा गाना, हाउ रोमांटिक वाला नगमा, सबके दिल पर राज करने वाला गाना, जान तेरे नाम का, कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हमने एंजॉय किया है ये सदाबहार नगमा, इसी के साथ में दोस्तों अब हम एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश, जिसके साथ में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है रोशनी रावत की, उनको सुनना है गाना मखना। सो एंजॉय करेंगे बड़े मियां छोटे मियां का ये गाना, और इसी के साथ में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना।

सो कल तक के लिए, तब तक के लिए अलविदा ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा बहुत ज्यादा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट वाला छोटे मियां और बड़े मियां वाला नगमा, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं कल।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी

0: के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टर स्किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टी स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टी स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। और भाई आप हमारे साथ होते हैं, हमारे श्रोता हमारे साथ होते हैं, तो कार्यक्रम की रौनक बढ़ जाती है। कहा जाता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी हाँ, एक इकाई हम हैं यहाँ पर बैठकर, और एक इकाई आप हैं जो सुनते हैं प्यारी सी गज़लों को, हमारी बातों को, और हमारे चैट बॉक्स की शोभा को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आइए हम बात करते हैं फनकारों की, दानिश्वरों की, ऐसे कलमकारों की जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी गज़लें लिखीं जो सदा के लिए अमर हो गईं। कल हमने जावेद अख्तर साहब का जिक्र किया था, और आज हम आपको ले चलते हैं कलम के एक ऐसी ही बादशाह की दुनिया में, जिन्हें लोग कलम का पुजारी भी कहते थे। वो कौन है, उनका नाम क्या है, इन सारे विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे फिलहाल, लेकिन एक प्यारी सी गज़ल के बाद। आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के पश्चात, और फिर बताते हैं नाम उस कलमकार का जिस पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं मखमली आवाज़। और जब कभी भी मैं मखमली आवाज़ बोलूँ तो सिर्फ एक नाम होता है, और वो होता है जगजीत सिंह साहब का। अगर हम कहते हैं कायनाती गला, तो इसका मतलब वो मोहम्मद रफ़ी होते हैं, और अगर हम कहें कि साक्षात माँ शारदे जिनके कंठ में विराजमान हैं, तो वो नाम लता मंगेशकर का होता है। तो जी हाँ, ये मखमली आवाज़ के मालिक जगजीत सिंह साहब की एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, और फिर आते हैं उन पर जिन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखीं। आज की दुनिया में, आज के समय में, न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म हैं, जो उनकी लिखी हुई गज़लों पर शोध करते हैं, उनको PhD की डिग्री प्राप्त होती है, और नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा वकार उर्दू अदब की दुनिया का, जिसने अपनी एक अलग पहचान दुनिया की भीड़ से हटकर बनाई। बात करेंगे उनकी फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल, और बाद में इस गज़ल के बाद उस कलमकार का नाम। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेश की 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास, और ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: मिल गया तुम्हारी घबराहट।

0: जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का इस्तकबाल आपके ही शो बहारे गजल में। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। ये बात जिस शख्स ने कही, वो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है, एक व्यक्तित्व है, और उर्दू दुनिया में उनका नाम बड़े ही अदबो एहतराम के साथ लिया जाता है, और हम सब उन्हें प्रोफेसर वसीम बरेलवी के नाम से जानते हैं, जिनकी लिखी हुई गजलों पर बच्चे PhD करते हैं, और उनका नाम आज के समय उर्दू अदब की दुनिया में अगर मैं कहूं कि सबसे ऊंचे मकाम पर है तो शायद कुछ गलत ना होगा। जिंदगी के ऐसे पहलू को छूते हुए उनकी गजलें निकलती हैं। वो घर आंगन की बात करते हैं, चार दीवारी की बात करते हैं, घर के मुखिया के दर्द की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि मोहब्बत इब्तदा मेरी, मतलब शुरुआत, मोहब्बत इब्तदा मेरी, मोहब्बत इम्तिहा मेरी, हजारों बोलियों से बिल मिल के बनती है सदा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी। जी हाँ, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान मोहब्बत की सरजमी है, जो ये कहते हैं कि तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे, और जब वो मोहब्बत पर लिखते हैं तो कहते हैं कि मैं, अब देखिए इंसान अपनी प्रेम कहानी कैसे लिखता है, कागज पर, कलम से, पेंसिल से, जैसा भी लोग, कुछ लोग गए पेड़ पर नाम लिखा है कि नाम अमर रहेगा, और ये कहते हैं कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ न पाए, मैं उनको इसलिए आंसुओं से लिख रहा हूँ कि हमारे बाद कोई न जान पाए, ताकि वो भरी महफिल में रुसवा न हो। जो बात करते हैं तो कहते हैं कि हजार कांटों से दामन छुड़ा लिया मैंने, हजार कांटों से दामन छुड़ा लिया मैंने, अना को मार कर सब कुछ बचा लिया मैंने। अना मतलब घमंड। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ज्यादातर समस्याओं के कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि हम बात को अपने हृदय पर लेते हैं, और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं अना। और यही शायर है जो कहते हैं, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो शायद ये बात कह रहे हैं वही कहते हैं कि हजार कांटों से दामन छोड़ा लिया मैंने, अना को मार कर सब कुछ बचा लिया मैंने। अब बात समझ में नहीं आती है कि एक ही व्यक्ति दो प्रकार की बात कैसे कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब उसूलों की बात गैरों के साथ हो, आपको रिश्ते महत्वपूर्ण लगते हों, तो उसूलों पर आ जाइए, और अगर आपको उसूल महत्वपूर्ण लगते हैं तो रिश्तों को इम्पोर्टेंस, महत्व देना, उनको तरजीह देना छोड़ दीजिए। हजार कांटों से दामन छोड़ा लिया मैंने, अना को मार कर सब कुछ बचा लिया मैंने, कहीं भी जाऊं नजर में हूं मैं जमाने की, कहीं भी जाऊं नजर में हूं मैं जमाने की, ये कैसा खुद को तमाशा बना लिया मैंने, अब पंक्ति देखिएगा कि अजीम थे ये दुआओं में उठने वाले हाथ। ये हमारे हाथ जब ऊपर उठते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, परवरदिगार से मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो ये हाथ इसलिए थे कि आप इनसे ऊपर वाले को सलाम कर पाओ। मतलब ये कितने पाकीज़ा, कितने पवित्र हाथ थे। अजीम थे ये दुआओं में उठने वाले हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को। ईश्वर ने हाथ दिया था कि जाओ हाथ को ऊपर रखना, हमने हाथ नीचे कर दिया। अजीम थे ये दुआओं में उठने वाले हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही, अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही, दिया तुम्हारे दिए से जला लिया मैंने। अंधेरा ना होने पाए, मेरे पास एक दिया है और आपका दिया जलता हुआ है, मेरा बुझा हुआ है भी, हमने भी जलाया नहीं तो ठीक है। और आपने गीत भी सुना होगा, ज्योति से ज्योति जग जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही, दिया तुम्हारे दिए से जला लिया मैंने। मुझे जुनून था हीरा तराशने का तो फिर। अब पंक्ति सुनिएगा, और ये पंक्ति अध्यापकों पर बहुत सटीक बैठती है। शिक्षिकाएं हैं हमारे, अध्यापक वृंद हैं। मुझे जुनून था हीरा तराशने का तो फिर, कोई भी राह का पत्थर उठा लिया मैंने। अगर आप तराशना जानते हैं साहब, तो असली कारीगरी तो हीरे को तराशने में होती है। जैसे चाणक्य ने तराश दिया चंद्रगुप्त को, एक 13 साल का बच्चा जो चरवाहा था उसको उठा करके मगध का साम्राज्य बना दिया। और उसी चाणक्य ने लिखा था कि सृजन और विनाश दोनों अध्यापक की गोद में पलते हैं। तो अगर अध्यापक चाहे कि हमको इसको हीरा बना देना है, तो कोई भी रास्ते का पत्थर उठा ले, और कह अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो बिल्कुल तराश के बना देगा। मुझे जुनून था हीरा तराशने का तो फिर, कोई भी राह का पत्थर उठा लिया मैंने। जले तो हाथ मगर हाँ हवा के हमलों से, जले तो हाथ मगर हाँ हवा के हमलों से। अरे किसी चराग की लौ को बचा लिया मैंने। आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, और दिए की लौ को बचाने के लिए मैंने अपना हाथ लगाया। भले मेरे हाथ जल गए, लेकिन दिया सलामत रहा, दीपक सलामत रही, उसकी ज्योति सलामत रही, उसका प्रकाश सलामत रहा। मेरे हाथ अगर जल भी जाते हैं तो मुझे इस बात का कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है। ये है प्रोफेसर वसीम बरेलवी की अदा। जी हमारे साथ मुकेश यादव जी हैं भाई, गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू। भाई मुकेश यादव जी कैसे हैं आप? और एच कुमार जी हैं, हेलो सर, आज कौन सा टॉपिक है? जी हाँ आज बिल्कुल, क्या बात है, आज तो हमारे बहुत ही पसंदीदा शायर वसीम बरेलवी हैं। नेम ही अटपटा है, सिर्फ हमारे बोलते ही ना आता। जी हाँ, प्रोफेसर वसीम बरेलवी। अब आइए आपको साधना सरगम की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल सुनवाते हैं। थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आप आवाज़ को देखेंगे तो आवाज़ की मधुरता में आप कहीं खो से जाएंगे। जी हाँ, फिर आइए सुनाते हैं आपको प्यारी सी गज़ल, सुनते रहिए। और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: सुनाई दे रही है दिल में क्यों, क्या मोहब्बत से बहुत खाली ये घर।

तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। जी, कभी कभी इंसान बेहतर पाने की दुनिया में बेहतरीन खो देता है, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी उंगलियों के बीच में जगह दी है ताकि किसी और की उंगलियां इस उंगलियों में फिट हो जाए। अच्छे इंसान की अगर हम तलाश करते रहेंगे तो इस दुनिया का हर इंसान तलाश ही करता रहेगा साहब। अच्छे इंसान की तलाश करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को अच्छा बनाएं। हो सकता है हमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर सभी लोग अच्छा ढूंढते ही रह गए तो फिर किसी की तलाश खत्म कहाँ होगी। तो चलिए, ढूंढते नहीं हैं, किसी की तलाश नहीं करते हैं, आइए कोशिश करते हैं कि किसी की तलाश हम पर आकर समाप्त हो जाए। जी हाँ, अनिल शास्त्री जी हमारे साथ हैं दादा चरण स्पर्श। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जी आशु मिश्रा, बहुत दिन कदम को दिखाई पड़ रहे हैं, बहन जी प्रणाम आपको। और शुभ संध्या भी। गीता श्रीवास्तव जी, बहन जी प्रणाम, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और गज़ल अच्छी लगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पंक्तियाँ आ गई हैं भाई, आज बहुत दिन के बाद आशु मिश्रा जी ने कुछ लिखा कि जो मेरा था ही नहीं उसी को खोने का गम सबसे ज्यादा हुआ। क्या बात है, जो मेरा था ही नहीं उसी को खोने का गम सबसे ज्यादा हुआ। दिल टूटा तो समझ आया आवाज हमेशा कांच नहीं करता। अब किसी से दिल नहीं लगाते, दिल का किराया बहुत महंगा पड़ता है। उसने पूछा कैसी हो, हमने हंसकर अपना दर्द छुपा लिया। मेरी खामोशी का मतलब मत पूछ, इसमें कई अधूरी कहानियां दफन हैं। वो बदल गया ये उसका हक था, हम टूट गए ये हमारा इश्क था। आज भी नाम सुनते ही मुस्कुरा देता हूँ, लोग समझते हैं भूल गया हूँ। साथ छोड़ने वाले बहुत मिले, साथ निभाने वाला कोई न मिला। जी मतलब चलिए हम मिलकर कोशिश करते हैं कि हमको कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो साथ निभाए, हम साथ निभाए। रामकृष्ण जी हैं भाई, रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं, बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका नाम पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। कायनात जी हैं जी, सलाम करते हैं आपको, आदाब आपको, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कायनात जी बहुत अच्छी होंगी। और जी नीना जी भी आ चुकी है हमारे साथ, जी आदाब आपको भी। और गुरु आ चुके हैं तो हमको लगता है कि शिष्य भी आ जाएंगे। वसीम बरेलवी साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा जिंदगी में एक चीज देखी मैंने कि जो इंसान के बुरे तजुर्बात होते हैं, जो हमको जिंदगी में संघर्ष मिलता है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। गजल है कि उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले, उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले, मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले। अब देखिएगा कौन चाहता है आजकल के ज़माने में, लेकिन नहीं, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मतलब मैं दावे के साथ तो नहीं कहता, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, दिल टूटने का अनुभव, तो शायद ज़िंदगी का एक महान अनुभव आपने खो दिया। उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले, मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले। किताबें माजी की औराक उलट कर देख ज़रा, माजी मतलब बीता हुआ कल, न जाने कौन सा सफहा मुड़ा हुआ निकले। सफा मतलब पन्ना, आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं लोग पन्ने मोड़ देते हैं। मैं तुझसे मिलता तो तफसील में नहीं जाता, तफसील कहते हैं किसी के बारे में एनालिसिस करने के लिए। अगर आपसे मिलते तो शायद
एनालिसिस नहीं करते, जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती। मैं तुझसे मिलता तो तफसील में नहीं जाता, मेरी तरफ से तेरे दिल में जाने क्या निकले। आहा, अब कुछ भी निकले। मैंने कल कहा था सुख की इच्छा करना ही दुख है, एक लाइन की बात। और अगर आप इससे अनजान हैं, आप सुख की इच्छा नहीं करते, तो मैं दावा करता हूं आप कभी दुखी नहीं हो सकते। सुख की इच्छा ही दुख है और कुछ दुख नहीं है। कहता है कि जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, अच्छी पंक्ति आ रही है, जो देखने में बहुत ही करीब लगता है उसी के बारे में सोचो तो फासला निकले। जो इंसान आपके बहुत करीब है वो बहुत दूर है। तमाम शहर की आंखों में सुर्ख शोले हैं, वसीम घर से अब ऐसे में कोई क्या निकले। मतलब शोलों का मतलब यहां पर नफरत से है। वो कहते हैं कि एक पंक्ति कहीं पड़ी थी कि मैंने कि रहते हैं मेरे साथ ही पर पास नहीं होते, कुछ लोग जलते हैं मुझसे बस खाक नहीं होते। तो जिंदगी है साहब, आपके जो सबसे करीब का इंसान है, सगा भाई, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं। अगर दो भाई हैं और अगर एक भाई ने, दोनों के पास फोर व्हीलर नहीं है, बाइक है, चल रहे हैं, और अगर किसी भाई ने चारपहिया खरीद ली, फोर व्हीलर आ गई, तो दूसरे वाले भाई को दिल से अच्छा कम लगेगा। ये जमाना है। हमारा दुख ये नहीं है कि हमारे पास बाइक है, हमारा दुख ये बन चुका है कि हमारे सगे भाई के पास कार है। तो ऐसी स्थिति में जहां मोहब्बत होनी चाहिए जिन रिश्तों में, उन रिश्तों में कड़वाहटें हैं। उन्होंने कहा कि नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की, अमन की, तन्हा हूं और जिंदा हूं, हैरत की बात है। तीन पंक्तियों में कितनी बड़ी बात। और इंसान चाहे तो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख सकता है। एक बहुत महान उपन्यासकार है, उन्होंने कुछ पंक्तियों का उपन्यास लिखा। उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी माँ थी, विधवा माँ थी, उसके दो बेटे थे। एक बेटा ऊपर के मंजिले पर रहता था, एक बेटा नीचे के मंजिले पर रहता था। बुढ़िया माँ 15 दिन अपने बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती थी और 15 दिन अपने छोटे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। मगर उस माँ की तकलीफ ये थी कि वर्ष के जो महीने 31 के पड़ते थे, उस दिन उस बुढ़िया माँ को भूखा रहना पड़ता था। बच्चे कहते थे कि 15 दिन हमारे यहाँ, 15 दिन उनके यहाँ, अगले दिन हम नहीं खिला सकते। जब 9 महीने अपने गर्भ में शिशु को पालने के बाद माँ की ये स्थिति पहुँचती है, तो शायरी होती है, गजल होती है, दर्द होती है। और इस शायरी पर लोग कहते हैं कि बहुत दर्द अगर हमने अपनी शायरी में समोया और लोग वाह वाह करते हैं, तो जैसे लगता है अंगारे लौट गए।
जी हाँ हमारे साथ तो भाई चलिए बात बहुत सारी होगी। गुड इवनिंग रूहानी जी हमारे साथ हैं। जी हाँ शुभ संध्या आपको भी रूहानी जी, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और असम शायद लिखते हैं, कदम साथ थे दिल में जज्बात थे, वो पागल था उड़ता हुआ बादल था, किसी की तलाश में मैं भटक रहा था, तन्हाइयों से दूर उसे कहीं जाना था। जी हाँ अरे बहुत दिनों के बाद आई रूहानी, सब ठीक ठाक है भाई? अशु मिश्रा जी बताइए, बिल्कुल ठीक ठाक है। मनीष शर्मा जी हैं, हेलो जी हाँ हाय कैसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और भाई मनी तो मनी है। और आज जी अमन भी आ चुके हैं रेडियो हॉट स्टार से, हेलो एवरीवन। जी हाँ आपको भी हेलो, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज जी अमन जी, आज ये सोनी जी हैं गोपालगंज से, गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या आपको भी। और भाई लवली सिंह भी आ गई हैं, मनु सर गुड इवनिंग, बाहर एक गज़ल में आपका स्वागत है, क्या बात है भाई, वाह कम से कम चलो हमारा इस्तकबाल किसी ने किया, बहुत अच्छा लगा भाई लवली सिंह जी आपको देखकर। और महक भी आ चुकी हैं भाई, गुड इवनिंग सर जी हाँ शुभ संध्या आपको भी। तो बात कुछ पंक्तियों का उपन्यास आपको सुनाया मैंने, और तब जब 9 महीने जिस शिशु को अपने माँ अपने गर्भ में रखती है, जब उन 2 बच्चों के लिए ये महंगा हो जाता है कि 31वें दिन खाना कौन देगा, तो वहाँ पर जो उस माँ का दर्द है वो उभरता है। और ऐसे ही शायद लोग गीतकार बनते होंगे, दानिश्वर बनते होंगे, कलमकार बनते होंगे, क्योंकि हिंदी कविता भी कहती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी हाँ दर्द जिंदगी की हकीकत है, जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और फिलहाल चलते हैं भाई, बहुत सारी आवाज़ सुने, लेकिन जब तक पंकज उदास की आवाज़ ना हो तब तक लगता है कि गजल अधूरी है। आइए इस अधूरेपन को करते हैं पूरा, और आपको सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल, और आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणसली 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए।

जी हाँ भाई मनीष शर्मा जी, आपका अभिनंदन है, लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, आप ही के कार्यक्रम बाहर गज़ल में ठीक 9:30 बजे, तब तक सुनते रहिए और रेडियो गन स्लीट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, रब ने बना दी जोड़ी। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ संभव, लेकिन तुम कल जरूर आना, प्रॉमिस किया है तुमने। पिछली बार जो किया था वैसा मत करना। हाँ माँ, अब बता दिया है ना। अच्छा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, बाद में फोन करता हूँ। फोन रखते ही संभव के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा। हालांकि वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर का एक भी सदस्य उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। माँ की बढ़ती बीमारी के कारण वो उनकी इच्छा नकार नहीं सकता था, इसीलिए अपनी इच्छा के विपरीत जाकर वो लड़कियां देखने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही घड़ी की ओर उसका ध्यान गया, जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर ऑफिस के लिए चल पड़ा। शाम वापस आते ही संभव ने पुणे के ट्रैवल का समय देखा और स्टॉप पर जाकर खड़ा रहा। ट्रैवल वैसे ही लेट थी और तो और उसका स्टॉप भी आखिरी था, इसलिए गाड़ी पूरी पैक्ड थी। केवल एक लड़की के बाजू वाली जगह खाली थी। उसने उसका बैग धीरे से उठाकर नीचे रख दिया और वहां बैठ गया। संभव ने देखा कि वो लड़की सोई हुई थी और उसका पूरा चेहरा रूमाल से ढका था। संभव की नजर ट्रैवल की खिड़की से बाहर गई। पूनम का चांद दिख रहा था। उस धीमी रोशनी में उस लड़की के घने लंबे बाल चमक रहे थे। बाहर की ठंडी हवा से उसके बाल रुमाल का बंधन तोड़ संभव के चेहरे को छू रहे थे। पल भर संभव उस स्पर्श से रोमांचित हुआ, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण वो भी जल्दी ही सो गया, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। तब सब मुसाफिर घबरा कर उठ गए। पूछने पर पता चला कि आगे कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, इसलिए गाड़ी रुक गई और 5-6 घंटे यातायात शुरू नहीं हो पाएगा। अरे यार, किसा भाची होना था, कल सुबह पुणे नहीं पहुंची तो मौत जरूर मुझे डांटेगी। अब क्या करूं, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। संभव बगल में बैठी लड़की की बकबक सुन रहा था। उसके चेहरे से अब रुमाल हट चुका था। उसके हल्के से हिल रहे गुलाबी होंठ, लंबे बालों की एक तरफ से डाली हुई चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, नैनों का काजल, चांद की रोशनी में उसकी गोरी काया काफी निखरी दिख रही थी। कितनी सरल और सुंदर नजर आ रही थी वो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना संभव अपनी माँ के बुलाने पर शादी के लिए लड़की देखने पुणे जा रहा था। सफर के दौरान उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनके सफर में रुकावट आ गई क्योंकि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और पूरी तरह ट्रैफिक जैम हो चुका था। अब आगे उस लड़की का ध्यान संभव की ओर गया। वो लगातार उसे देखे जा रहा था। ये जानने के बाद वो थोड़ा संभल गई। संभव भी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर दी लेकिन उसकी चुलबुलाहट कम नहीं हो रही थी। ये देखकर संभव ने उससे कहा, मैडम आप चिंता ना करें, जल्दी ही ये प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे और सफर शुरू हो जाएगा। आपको फोन करना है तो आप मेरे फोन का यूज कर सकती हैं, मेरे फोन में नेटवर्क है। उस लड़की ने संभव की ओर देखा। उसके व्यक्तित्व से वो एक सभ्य आदमी लग रहा था और उसे इस वक्त उसके फोन की जरूरत भी थी। संभव से फोन मांगकर उसने घर पर फोन घुमाया। हेलो माँ, मैं सुरभि बोल रही हूँ। उधर से आवाज आई, ये किसका नंबर है, इतनी रात गए फोन क्यों किया, तुम आ रही हो ना कल? सुरभि बोली, हाँ हाँ मेरा कहा सुन तो लो, मैं पुणे के लिए निकल चुकी हूँ लेकिन यहाँ आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक में फंस गए हैं हम लोग। मैं किसी दूसरे के फोन से आपसे बात कर रही हूँ, आप चिंता नहीं करना, मैं आ जाऊंगी सुबह तक। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हाँ सुबह वो लोग तुम्हें देखने आएंगे, जल्दी पहुंचने की कोशिश करना बेटा, माँ ने बोला। सुरभि ने गुस्से में फोन काट दिया। मैं यहाँ उलझन में हूँ और इन्हें उन मेहमानों की पड़ी है। संभव उसकी ओर देख रहा था। गुस्से में वो निहायत खूबसूरत लग रही थी। नाम भी कितना खूबसूरत था, सुरभि। सॉरी मैंने अपना गुस्सा आपके फोन पर निकाल दिया, सुरभि की आवाज से संभव ने अपना होश संभाला। इट्स ओके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक आप पुणे पहुंच जाएंगी। सॉरी मैंने आपकी बातें सुन ली, बाय द वे मैं संभव, मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ। मैं सुरभि, थैंक यू सो मच, आपके फोन की वजह से मैं घर पर फोन कर पाई। तभी बस में से लड़कों का एक ग्रुप सामान लेकर नीचे उतर रहा था। संभव ने उनसे पूछा, ये क्या, कहाँ जा रहे हैं आप सब? देखो भैया, हम हरदम इसी रास्ते में सफर करते हैं, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ 2-3 किलोमीटर पर एक पगडंडी का रास्ता है, आगे छोटी छोटी गाड़ियां मिल जाती हैं पुणे जाने के लिए, हम तो उधर ही जा रहे हैं, उनमें से एक लड़का बोला। लेकिन इतने अंधेरे में रास्ता सेफ है क्या? संभव बोला, हाँ हम कई बार जाते हैं इस रास्ते से और हमारे पास टॉर्च भी है, वो लोग बोले।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना संभव और सुरभि पुणे जा रहे थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रुक गई। उन दोनों को ही अपने अपने घर पहुंचना बहुत अर्जेंट था। कुछ लड़के लड़कियों ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर पैदल जंगल के रास्ते से अगर जाएं तो आगे वाले रास्ते से पुणे जाने के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं। अब आगे संभव ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि सोच में पड़ी थी। उस ग्रुप में दो तीन लड़कियां भी थी। माना कि वो किसी को पहचानती नहीं थी, फिर भी कराटे चैंपियन होने के कारण कुछ हुआ तो वो खुद को संभाल सकती थी। वहीं संभव का बर्ताव उसे काफी विश्वास भरा लग रहा था, इसलिए संभव और सुरभि के बीच में सहमति हो गई। वो दोनों उस ग्रुप के साथ नीचे उतरकर पगडंडी के रास्ते पर चलने लगे। वो लड़के लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उनसे दोस्ती करके वो दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। मोबाइल पर सुरीले गीत चल रहे थे। रास्ता घने जंगल का था, मगर पूनम का चांद उसकी शीतल छाया का अस्तित्व महसूस करा रहा था, इसीलिए रात इतनी कठिन नहीं लग रही थी। चलते चलते अचानक सुरभि का पैर एक पत्थर से फिसल गया। वो लुढ़क रही थी कि संभव ने उसे सहारा देकर बचा लिया। पल भर उन दोनों को संभलने में लगा, तब तक उन लड़कों की हंसी फूट पड़ी। सुरभि शर्मा कर संभव से दूर हो गई। संभव भी अपनी नजरें चुराने लगा। इट्स ओके यार, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन संभल कर चलो अब, संभव बोला। सुरभि को चलने में दिक्कत हो रही थी। पत्थर से फिसलने से शायद उसके पाँव में मोच आ गई थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी। संभव ने पूछा, सुरभि तुम्हारे पैर में ज्यादा लगी है क्या? तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? अभी अभी घटी घटना से सुरभि संभव की नजर से नजर मिलाना टाल रही थी। वो संभव के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसका स्पर्श और आंखों की चिंता देखकर वो उसमें उलझती जा रही थी। वो घर क्यों जा रही थी ये उसे याद आया। वो आज तक पढ़ाई का कारण बताकर शादी की बात टालती आ रही थी, मगर अब पढ़ाई पूरी होने के बाद वो ये बात टाल नहीं सकती थी। कल उसे इसी कारण घर जाना था। सुरभि, क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा रुकना चाहती हो क्या? संभव बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, पाँव में थोड़ी मोच है लेकिन मैं चल सकती हूँ, सुरभि बोली। फिर भी संभव ने उसे सहारा दिया। देखो सुरभि, हमारी पहचान बस कुछ घंटों पहले ही हुई है, लेकिन तुम्हें पुणे तक महफूज ले जाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, चलो। संभव का हाथ उसके हाथ में था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरचे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना सुरभि और संभव, एक ही ट्रैवल में साथ सफर करके पुणे जा रहे थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक हो गई तो उन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहे एक कॉलेज ग्रुप के लड़के लड़कियों के साथ कुछ दूर पैदल चल के दूसरी गाड़ी करने के इरादे से वो लोग साथ चल पड़े। रास्ते में सुरभि का पैर फिसला तो संभव ने उसे सहारा दिया। इस छोटे से सफर में ही उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या था उस स्पर्श में? विश्वास, दोस्ती, चिंता? सुरभि उसे ना नहीं कह सकी। हालांकि संभव पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन सुरभि के बारे में उसे क्या महसूस हो रहा था ये वो नहीं जानता था। उसकी हर अदा, बोलने का स्टाइल, उसके हाथ का कोमल स्पर्श और सबसे अहम उसका संभव के प्रति विश्वास, इन सब के बारे में वो सोच रहा था। संभव, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ रहा है ना, सुरभि बोली। सुरभि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा सोचो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। संभव मुस्कुराया। तुम्हारी ये मुस्कुराहट किलर है, सुरभि बोली। क्या? वो क्या बोल गई ये उसके ध्यान में आते ही उसने अपनी जबान दांतों तले दबाई। फिर संभव ने हंसकर उसकी ओर देखा। कॉलेज के ग्रुप के साथ बातें करते करते सफर कब पूरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो जंगल से बाहर आकर एक छोटे से रास्ते पर पहुंच गए। वहां एक छोटा सा रोड साइड होटल था। संभव और सुरभि ने अपना अपना ऑर्डर दिया। सुरभि हाथ मुंह धोकर आ गई। पानी की हल्की बूंदें अभी भी उसके बालों से लिपटी थीं। कितनी खूबसूरत दिखती है यार, इसका हर रूप मुझे दीवाना बना रहा है, लेकिन क्या फायदा, इस मुलाकात के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, सोचते हुए संभव के चेहरे पर मायूसी छा गई। संभव, क्या हुआ? इस चांदनी रात में गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? सुरभि ने उसे छेड़ते हुए कहा। सुरभि के चेहरे के शरारती भाव देखकर संभव के मन से तन्हाई के ख्याल कहीं गुम हो गए। नहीं, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आओ खाना खाते हैं। हालांकि ये जान सुरभि मन ही मन खुश हुई थी। उसने उसी खुशी में खाना खत्म किया। तब तक लड़कों ने गाड़ी बुक कर ली थी। गाड़ी में भी सुरभि संभव के पास ही बैठी थी। ये इस सफर का आखिरी दौर था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना सुरभि और संभव ने एक साथ पुणे तक का सफर पूरा किया। रास्ते में कुछ दिक्कतें भी आई लेकिन उसने उन दोनों को और करीब लाया। अब आगे गाड़ी शुरू होते ही थकान से सुरभि की गर्दन हल्के से संभव के कंधे पर झुक गई। संभव भी थका हुआ था। वो ये खूबसूरत पल अपने मन के किसी कोने में स्टोर कर लेना चाहता था। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगाया वैसे ही सुरभि जाग गई। उसका स्टॉप आ गया था। सुरभि ने जाते जाते फिर एक बार संभव का हाथ थामा। संभव, ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये हमेशा मेरी खूबसूरत यादों में रहेगा। वो काफी कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। शब्द कब आंसू बनकर आंखों से छलके वो नहीं जान पाई। संभव भी इसी कश्मकश से गुजर रहा था। उसने उसे धीरे से सहलाया और भविष्य के सफर के लिए शुभकामनाएं देकर गाड़ी में बैठ गया। संभव घर पहुंचा। वो माँ से कुछ नहीं बोलते हुए जाने की तैयारी करने लगा। माँ ने सोचा थका होगा। तय वक्त पर वो लड़की के घर पहुंचे। संभव का किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसकी नजर से सुरभि का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो सोचने लगा, माँ को तो मेरी शादी होने से मतलब है, फिर मैं कहीं से भी सुरभि को ढूंढ लाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया और गर्दन ऊपर करके कहा, बंद करो ये सब, मुझे शादीवादी नहीं करनी। लेकिन आगे के शब्द वैसे ही होठों पर रुक गए क्योंकि सामने चाय की ट्रे लेकर सुरभि खड़ी थी। वो जान गया कि इस घर की शुरू उसकी सुरभि ही थी। क्या हुआ संभव, कुछ कहना है तुम्हें? माँ की आवाज से उसने अपने होश संभाले। वो नीचे बैठ गया और बोला, मुझे शादी करनी है, लड़की मुझे पसंद है। उसकी इस बात से सब हैरान रह गए लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा खुशी हुई। सुरभि की रात भर की थकी आंखों में खुशी के आंसू थे लेकिन केवल संभव ही ये देख रहा था। सबकी नजर से छिपकर इन दो प्रेमी दिलों का मिलन शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी रब ने बना दी जोड़ी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी

बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाली नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी। इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसासात इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

श्रोताओं, अब मैं जिस नगमे को आपके साथ साझा करने वाली हूँ वो आपकी आरजे अनोखी का सबसे पसंदीदा नगमा है। नगमा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं

जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाई, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं,

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है, और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

बना नहीं। जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे, हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपनी लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।